FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज है बृहस्पतिवार, शक सम्मत 1948, भाद्रपद माह 19वीं तिथि, तदनुसार 10 सितंबर सन 2026, 5:58 हो चुके हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। अपने सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 6 बजने को है, अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 अधिक यात्री भार वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
2: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। टीम सिकल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है।

0: नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का वापसी भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। दिल्ली नगर निगम MCD ने खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान तथा भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। यह अभियान निगम के सभी 12 जोन में चलाया जा रहा है। MCD ने कल 34 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसके अलावा 17 संपत्तियां सील की गई, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 4 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने पिछले 10 दिनों में देश भर में विभिन्न स्थानों पर 6 बड़े अभियान चलाए हैं। निदेशालय ने 2 तेंदुए की खाल, 180 जीवित भारतीय तारा कछुए, 12 जीवित टोकेगेको, लगभग 24 किलोग्राम पेंगोलिन के शल्क और लगभग 500 ग्राम बाघ की हड्डियां बरामद की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन मामलों में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। अमेरिका ओपन में अमेरिका की बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। महिला सिंगल सेमीफाइनल में कल मौजूदा चैंपियन एरिना सबालेंका का मुकाबला तीसरी सीड जेसिफा पेगुला से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन स्वामी विवेकानंद का कथन है, ज्ञान स्वयं के भीतर है, इंसान केवल उसका आविष्कार करता है। ये था आज का चिंतन। वंदनवार में लीजिए, सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। झरोखा में अब आज के कार्यक्रमों का लेखा जोखा, उन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे जो कार्यक्रम आकाशवाणी चंडीगढ़ से दिन भर आपके लिए प्रसारित किए जाएंगे।

सुबह 8 बजे समाचार प्रभात हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 9:30 पर आज का अखबार प्रोग्राम में अखबारों से ली गई जानकारी, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स हम आपके लिए प्ले करेंगे। 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। 10:05 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम सफर सुरीला सा, कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं गीतों का ये कार्यक्रम।

दिन में 11 बजे लक्ष्य कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर सुनैना जैन से, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंग्लिश विषय के। फरमाइश आपकी कार्यक्रम में आपकी फरमाइश पर फिल्मी गाने सुनवाए जाएंगे दिन में 11:30 पर। 12 बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। स्पॉन्सर प्रोग्राम

लम्हे आप सुनेंगे शाम 5:20 पर और 5:30 स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग। शाम 6:30 पर हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार दर्शन आप सुनेंगे और इसके बाद आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे। शाम 7:45 पर मुख्य प्रादेशिक समाचार सुनिए, उसके बाद कुछ पंजाबी गाने। रात 10:30 पर मुख्य प्रादेशिक समाचार।

पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे। शाम 7:45 पर मुख्य प्रादेशिक समाचार सुनिए, उसके बाद कुछ पंजाबी गाने। 10:30 पर मुख्य प्रादेशिक समाचार और उसके बाद सुरसांझ कार्यक्रम में आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप हमारे केंद्र से सुनेंगे। दोपहर 1:05 पर पहले हिंदी में और उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम 6:10 पर पहले हिंदी में, उसके बाद 6:20 पर पंजाबी में। हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे दोपहर 2:15 पर, शाम 5 बजे, शाम 6 बजे, रात 8:45 पर समाचार संध्या और रात 11 बजे। झरोखा में ये थी जानकारी। हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अगला प्रोग्राम है श्री रामचरितमानस। इसके लिए हम आपको लिए चलेंगे विविध भारती मुंबई बस कुछ ही पलों में।

कर्ण फूल के कटकर गिरने से मंदोदरी सोच में पड़ गई थी। वो श्री राम के व्यापक स्वरूप और पराक्रम की कल्पना भली भांति कर सकती थी। शिव जिनके मान, ब्रह्मा बुद्धि, चंद्रमा मन और विष्णु चित्त हैं, उन्हीं जगदीश्वर ने मनुष्य रूप धारण किया है। वो पति को ये सब कुछ समझाने की भरसक चेष्टा करती है, किंतु रावण उसकी बात हंसकर ये कहते हुए टाल देता है, सच ही कहते हैं कि नारी के हृदय में छल, भय, चंचलता, झूठ, अविवेक, अपवित्रता तथा निर्दयता का निवास होता है। मंदोदरी द्वारा वर्णित भगवान के विश्वरूप के तत्व तो स्वयं उसका आधिपत्य स्वीकार करते हैं, अतः उनसे भय कैसा? हो न हो, अपने कथन से वो उसकी प्रभुता की ही महिमा बखान रही है। रानी की गूढ़ बातें रावण के लिए विनोद का हेतु बन गईं। आमोद प्रमोद के क्षण बीत जाते हैं, सवेरा होता है। जिस प्रकार बादलों द्वारा बरसाया गया जीवनदायी जल पाकर भी बेंत फल फूल नहीं सकता, उसी प्रकार मंदोदरी समझ लेती है कि उसका पति काल के वश में हो गया है, उसकी मति मारी गई है। ऐसे में तो ब्रह्मा जैसा गुरु भी उन्हें ज्ञान नहीं दे सकता। इधर श्रीराम की सभा में वृद्ध जांबवान ये परामर्श देते हैं कि अंगद को दूत के रूप में रावण की सभा में भेजा जाए।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला की इस कड़ी में। डॉक्टर शकुंतला भरणे हमारे साथ हैं। शकुंतला जी,
2: हाँ जी।
1: किराना घराने की राग प्रस्तुति का जो एक तरीका है जिसे भावपूर्ण प्रस्तुति कहते हैं, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी?
2: कल ही हमने इसके बारे में थोड़ा सा
1: आलाप की चर्चा हुई थी। जी जी।
2: जब हम आलाप करते हैं
1: जी,
2: राग का जो प्राण है वो आलाप है, और इसमें स्वर में भी भाव रहता है।
1: जी,
2: ऐसा नहीं है कि सिर्फ शब्द में भाव रहता है, स्वर का भी एक स्वभाव रहता है और हर एक राग के स्वर का एक अलग स्वभाव रहता है।
1: हाँ।
2: राग भाव को सर्वोच्च स्थान इधर शास्त्रीय संगीत में है, और किराना घराने में केवल राग गाना ही इसका उद्देश्य नहीं है, तो उसका भाव, उसका रस और उसका वातावरण, ये सब को श्रोता तक पहुंचाना यहाँ पे मुख्य लक्ष्य होता है। स्वर के माध्यम से हम हमारी भावाभिव्यक्ति
1: जी
2: दिखाते हैं, शब्दों से अधिक स्वरों के माध्यम से ये की जाती है। शब्द तो जरूरी है इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं।
1: हाँ।
2: लेकिन स्वर जो है, स्वर में जो प्राण है, स्वर में जो भाव है, वो भाव प्रत्येक स्वर में संवेदनशीलता और माधुर्य यहाँ पे झलकता रहता है। विलंबित लय का सहारा हम लेते हैं इसीलिए।
1: अच्छा।
2: क्योंकि एक एक विस्तार होने से प्रत्येक स्वर को हम ठहराव करते हैं। वो ठहराव मिलने से क्या होता है, राग का भाव एकदम स्वाभाविक रूप से उभर कर आता है।
1: अच्छा।
2: और एक गाना जो है उसकी गहराई समझ में आती है क्या है।
1: तो किस राग की बंदिश से आप इसे स्पष्ट करना चाहेंगी?
2: हम तो गोरख कल्याण

0: सुनाएंगे आपको।
1: क्या बात है,
0: लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा और कुछ बोलना है इसके बारे में।
1: जी जी जी बिल्कुल।
0: स्वरों के बीच कोमल मींड तथा श्रुतियों का सूक्ष्म प्रयोग इस भावपूर्ण अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावशाली बनाता है। राग का विस्तार धीरे धीरे और संतुलित ऐसे गाके किया जाता है जिससे श्रोता राग के भाव में सहज रूप से डूब सके। किराना घराने की गायकी श्रोता के मन को सीधे स्पर्श करती है। इसकी प्रस्तुति केवल सुनाई नहीं देती बल्कि महसूस होती है। तानों से अधिक स्वर सौंदर्य पर बल, जहां अनेक घरानों में जटिल जटिल तानों का अधिक महत्व होता है,
1: जी
0: वही किराना घराने में जो स्वर है उसकी शुद्धता है, मधुरता है और भाव अभिव्यक्ति है, उसे प्राथमिकता दी जाती है।
1: अच्छा।
0: एकदम छोटे छोटे आलाप, एकदम सिंपल आलाप, लेकिन उससे इतना स्वर का गुंजन होता है, इतना उसको हम गा गा के उसकी गोलाई इतनी अच्छी करती है कि एक गान सुनने को मन करता है।
1: क्या बात।
0: चलो
1: तो हमारे श्रोताओं को इंतजार है राग गोरख कल्याण की बंदिश का।

0: वाह वाह, बहुत ही सुंदर।
1: अभी तो गोरख कल्याण आपने सुना
0: जी,
1: लेकिन हमेशा बोलती हूँ मुझे ऐसा कंप्लीट नहीं लगता है, क्योंकि हमें भी कुछ रह गया है क्या, ऐसा लगता है कलाकार के नाते। अगर आप सुनते हैं माणिक वर्मा का स्वर
0: जी,
1: भावनिक स्पर्श अथवा भावपूर्ण गाना, परिपूर्ण गायिका इसे हम कहते हैं।
0: अच्छा,
1: ये माणिक वर्मा है, एकदम घरंदाज मुलायम स्वर लगाने वाली, अत्यंत सौंदर्यपूर्ण गायकी दिखाने वाली गायिका। उन्होंने गाया हुआ एक सुंदर राग है श्याम कल्याण
0: जी,
1: और ये राग सुनकर ही आपको पता चलेगा कि आलाप चीज क्या होती है, राग को कैसा आगे लेके जाना है।

0: श्याम कल्याण तो आपने सुन लिया
1: जी बिल्कुल। लॉर्ड रे से सुनते हुए एक गीत जो मन में गूंज रहा था वो बहुत ही लोकप्रिय गीत है मुगले आजम फिल्म से, मोहे पनघट पे नंदलाल।
0: अरे वाह, लेकिन डायरेक्ट इसमें श्याम कल्याण नहीं मिलेगा हमको, श्याम कल्याण की कुछ छटा हमें ये गाने में मिलती है। वैसे तो फिल्मी गीत ऐसे ही रहते हैं, प्योरिटी नहीं रहती है, फिर भी राग की छटा रहती है।
1: तो सुनते हैं ये गीत।
0: हाँ।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: एफएमएक्स 7.2 मेगाहर्ट्ज पर ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आते सारी नहीं झुमके
3: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या,
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

मुकेश की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे बादल फिल्म से, हसरत जयपुरी ने से लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज। वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूले बिसरे गीत।

0: उस्ताद आमिर खान की आवाज में ये पेशकश अभी आप सुन रहे थे बेजू बावरा फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा, नौशाद का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे प्रोग्राम भूले बिसरे गीत।

0: एसडी बर्मन की तर्ज।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: यह है विविध भारती प्रोग्राम। हम है राही प्यार के लेकर हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में।

लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से संतोष आनंद ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम है राही प्यार के।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे हाथ की सफाई फिल्म से। गुलशन बावरा ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे आपकी कसम फिल्म से। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, संगीत दिया आर डी बर्मन ने।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे प्रोग्राम हम है राही प्यार के विविध भारती से।

0: आशा भोसले और मनहर उदास की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे कागज की नाव फिल्म से। इस गीत के साथ ही आज का ये प्रोग्राम हम है राही प्यार के संपन्न होता है।
1: एफएमएक्स 107.2 मेगाहर्ट्ज पर हम विविध भारती की चंडीगढ़ केंद्र से बोल रही हैं। श्रोताओं, 8 बजने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली से अब हम आपके लिए समाचार प्रभात रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु नियमों का पालन न करने को लेकर ईरान का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में अमरीका के दोनों खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं से लगभग 52 लाख की आबादी वाले लगभग 2100 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सबसे व्यस्त सभी 7 रेलवे कॉरिडोर को 4 लाइन का बनाने का फैसला किया है। इनमें दिल्ली हावड़ा, मुंबई हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई और मुंबई चेन्नई शामिल है। इनमें से करीब 2000 किलोमीटर रेल मार्ग को पहले ही 4 लाइन का बनाया जा चुका है।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि ये सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य प्रगति पर है और सूरत से वापी तक प्रारंभिक 100 किलोमीटर का खंड जल्द ही खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल

0: के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से विरासत और वन्य जीव पर्यटन को विशेष बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लॉजिस्टिक लागत कम करने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभा सकें। श्री गोयल ने बताया कि भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं।
4: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
0: लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक प्रगति में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। ब्रिक्स देशों के बीच संवाद और सहयोग से सदस्य देशों, साझेदार देशों और पूरी दुनिया के लिए अधिक समृद्ध भविष्य का रास्ता तैयार होगा। श्री गोयल ने बताया कि भारत ने 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को मौजूदा $4 trillion से बढ़ाकर $30 trillion करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूर्या से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर हरिणी अमरसूर्या को श्रीलंका और भारत दोनों में महिलाओं के लिए एक आदर्श और महिला सशक्तिकरण तथा नारी शक्ति का प्रतीक बताया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 35 सदस्यीय बोर्ड ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के पक्ष में 23 वोट पड़े, 5 विरोध में और 8 सदस्य मतदान से दूर रहे। ये प्रस्ताव अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पेश किया था। रूस, चीन और नाइजर ने इसके खिलाफ वोट किया। ये कदम अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से जारी सैन्य टकराव और बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है।

0: अच्छी बारिश, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है 11 से 15 सितंबर तक चलेगा नया दौर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमियों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए, राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। और मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 8:15 हुए हैं श्रोताओं, अब आप सुनेंगे मुंबई केंद्र से कार्यक्रम त्रिवेणी।
3: आइए सुने त्रिवेणी।

दोस्तों नमस्कार। जीवन एक निरंतर यात्रा है, इसमें हमें किसी एक उपलब्धि पर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि हर बात से सीखते हुए आगे बढ़ते हुए और खुद को बेहतर बनाते हुए जीवन का सफर तय करना है। जो व्यक्ति रुक जाता है उसकी प्रगति भी रुक जाती है, जबकि जो निरंतर प्रयास करता रहता है वो नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। जीवन में निरंतरता ही सफलता, आत्मविश्वास और विकास की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। कोई भी बड़ा लक्ष्य एक दिन में पूरा नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों को लगातार दोहराने से हासिल होता है। निरंतर और नियमित मेहनत से कठिन लक्ष्य भी आसान हो जाते हैं।

उसे लगातार प्रयास करने से हमारा अपनी क्षमता पर विश्वास बढ़ता है, समय का सही उपयोग होता है। नियमित काम करने से टाल मटोल की आदत भी कम हो जाती है। हम चुनौतियों का सामना करना सीख जाते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहने की शक्ति हमें मिलती रहती है। हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है और इसमें निखार भी आता है। निरंतर सीखने और सुधार करने से हम मानसिक, सामाजिक और व्यवसायिक रूप से भी आगे बढ़ पाते हैं।

निरंतरता वो शक्ति है जो साधारण प्रयासों को असाधारण परिणामों में बदल देती है। यदि हम प्रतिदिन ईमानदारी और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते रहें, तो सफलता निश्चित रूप से हमें मिलती है। प्रकृति भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। नदियाँ कभी बहना नहीं छोड़ती, सूर्य हर रोज उदित होता है और ऋतुएं निरंतर बदलती रहती हैं। कभी सोचा है यदि कोई नदी बहना छोड़ दे तो उसका पानी ठहर कर दूषित हो जाएगा? बिल्कुल इसी तरह यदि मनुष्य प्रयास करना छोड़ दे तो उसके ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास का विकास रुक जाएगा। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, असफलताएं और निराशाएं हमेशा ही नया कुछ सिखा कर जाती हैं, भविष्य में बेहतर बनने का अवसर भी देती हैं। इसीलिए इसे अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत मानना चाहिए। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, वही वास्तव में प्रगति कर पाता है।

0: की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
1: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट के वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गाँव की कहानी अपनी जुबानी। Gems of India Challenge।
2: लोग लेकर हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा साड़ीज ने रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632224।
6: चमड़ी पर फीका, लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की किसी नस का मोटा हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 2 सितंबर से 15 सितंबर तक हरियाणा के गुरुग्राम, पानीपत जिलों में मकानों, झोंपड़ियों, फैक्ट्रियों और घर घर जाकर कुष्ठ के मरीजों को ढूंढने के लिए जांच की जाएगी। घबराए नहीं, कुष्ठ छोत का रोग नहीं है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी

शेखर रावजियानी, सलीम मर्चेंट और नीति मोहन की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से। अन्विता दत्त ने इसे लिखा, विशाल शेखर का म्यूजिक।

जसलीन कौर रॉयल की आवाजों में, माफ कीजिए, जसलीन कौर रॉयल की आवाज में खूबसूरत फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अमिताभ वर्मा ने इसे लिखा।

0: चित्रलोक प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TNT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TNT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, ये था फिल्म का नाम। रोमी और तनिष्क भागची की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, नीरज राजावत ने इसे लिखा।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे प्रोग्राम चित्रलोक विविध भारती से। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। इसे हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों के बीच बिना किसी डर के खुलकर अपनी बात रखने और एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करना, समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना।
3: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: किल दिल फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और नीरा जोशी देशपांडे की आवाजों में, शाद अली ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: थ्री इडियट्स इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे सूरज जगन शर्मन जोशी की आवाजों में स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा शांतनु मैत्रेय का संगीत।
1: धीमे इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 MBPS प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
2: अरोड़ा प्लाईवुड
3: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
2: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड @SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।

0: कॉकटेल फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाजों में। इरशाद कामिल ने इसे लिखा, प्रीतम का म्यूजिक।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: Rica starari da cucaru.

गुलराज सिंह की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था उंगली। मनोज यादव ने इसे लिखा, गुलराज सिंह का म्यूजिक। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
1: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
0: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
1: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
2: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
4: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
5: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 9:31 हुए हैं। अगला प्रोग्राम आज का अखबार।
1: आज का अखबार।

0: ये जवानी है दीवानी, ये था फिल्म का नाम। श्रीराम और शिल्पा राव की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। प्रीतम ने संगीत दिया, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा। इस गीत के साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं समाप्त होता है।
1: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
2: लोक परंपराओं में।

गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का अखबार प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे लेकर 10 बजे तक इस प्रोग्राम में आपके साथ हैं और मैं आपके साथ हूं, आपका साथी अनिल पुंच। इस प्रोग्राम में अखबारों से ली गई जानकारी जितनी संभव हो सकती है हम शामिल करते हैं और साथ में कुछ म्यूज़िकल नंबर्स प्ले करते जाते हैं। तो आज की तमाम खबरों में जो खबरें हैं वो आपको एक डाक विभाग के बारे में, जो नया सिस्टम शुरू हुआ है उसके बारे में बताएंगे, स्वदेशी युद्धपोत के बारे में बताएंगे, उपलब्धि के बारे में बताएंगे और खेलों की दुनिया में भी हमारी जो जूनियर हॉकी टीम है उसने ताइवान को हराया है 15-0 से। ऐसी तमाम खबरें आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, लेकिन पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और कारोबार जगत से जुड़ी ये हेडलाइंस हैं, साथ में खेल हेडलाइंस। तो आज की हेडलाइंस में सबसे पहले ब्रिक्स इंडिया जो सम्मेलन होने जा रहा है 12 से 13 सितंबर को देश की राजधानी नई दिल्ली में, जिसकी तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में बताएं आपको। ब्रिक्स देशों के डिजिटल सेवाओं के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 48%, दुनिया में 5वां स्थान है। इस सम्मेलन में अगर साझा सिद्धांतों पर अमल हुआ तो भारत को मिल जाएंगे ब्रिक्स के 10 नए बाजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन को चिन्हित करने के लिए 17 सितंबर से महीने भर का सेवा संकल्प अभियान चलाएगी भाजपा। इसमें जेन जी के लिए यात्राएं, 25 विषयों पर 25 मिनट श्रमदान और 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान शामिल है। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री ईरानी मुखर्जी को राज कपूर स्पेशल अवार्ड। और कैबिनेट ने 8 रेल प्रोजेक्ट्स मंजूर किए, 1196 किलोमीटर रूट पर नई लाइनें जुड़ेंगी और सबसे बड़ी बात है कि 9 राज्यों में 3-4 लाइन बिछेंगी, यानी तीसरी और चौथी लाइन बिछेंगी। आधार से पहचान आसान बनाने का एक नया सॉफ्टवेयर

अब बैंकों से जुड़ी एक खबर है। अखबार लिखती है कि बैंकों की हड़ताल कल, SBI ने जारी की एडवाइजरी। बैंक ने ग्राहकों से अपील की है कि हड़ताल से पहले जरूरी बैंक

से ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग की अनुमति देने की तैयारी कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, अमेरिका ने ईरान के 5 तेल टैंकर तबाह किए। जवाब में ईरान ने 20 मिसाइलें दागी। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर दागी 20 मिसाइलें। एआई से जुड़ी खबर है दोस्तों, मैन वर्सेस मशीन के इस दौर में एंथ्रोपिक के 3 शोधकर्ताओं ने चेताया है कि एआई की और साथ में एआई की चिंताओं पर एक ने पद भी छोड़ दिया है और कहा है कि बेकाबू एआई सुपर ह्यूमन बनेगा, खुद फैसले लेगा, 10 साल में मानवता के वजूद को खतरा बताया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, सिंगापुर के प्रधानमंत्री की सैलरी 64% बढ़ी, दुनिया में सबसे अधिक। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति से 7 गुना ज्यादा सैलरी है सिंगापुर के प्रधानमंत्री की। तो ये तो थी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस, और अब आपको ले चलते हैं कारोबार जगत में, उसके बाद खेल से जुड़ी खबरें आपसे शेयर करेंगे। खेल जगत में बहुत सारी उपलब्धियां हमारे नाम हैं, उसके बारे में बात करेंगे। कारोबार जगत से जुड़ी खबरों में, सेंसेक्स 813 अंक टूटा, आईटी इंडेक्स 3% गिरा। मनी लॉन्ड्रिंग पर अब सख्ती, 15 क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बंद किए गए। खेलों की दुनिया में सबसे पहले यूएस ओपन टेनिस की बात करें, देर रात 3:30 जीते शेल्टन, अल्कारेज बाहर हो गए। महिला सिंगल्स में नंबर 1 संभालेंगा 6 बार सेमीफाइनल में। और घरेलू क्रिकेट में दुलीप ट्रॉफी, ईस्ट जोन को 584 रन की बढ़त, तीसरा खिताब तय। महिला एशिया कप सेमीफाइनल आज है, भारत की नजर लगातार 10वें फाइनल पर है, बांग्लादेश से ये मैच है। और अब करते हैं उपलब्धियों की बात खेल के मैदान में। तीरंदाजी, नंबर 1 शीतल देवी ने पहली बार वर्ल्ड पैरा सीरीज में गोल्ड मेडल जीता। इसके साथ साथ शीतल और हरविंदर भावना का गोल्डन डबल, भारत ने 2 स्वर्ण के साथ 6 पदक जीते तीरंदाजी में। तो शीतल देवी और भावना, हरविंदर भावना को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और एशिया हॉकी जूनियर कप की बात करें तो हमारी टीम ने ताइवान को 15-0 से रौंद दिया है, अंतिम 4 में भारत पहुंच गया है। हमारे कैप्टन अनमोल इक्का ने पेनल्टी कॉर्नर से 6 गोल दागे, बहुत खूब। तो हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं जूनियर हॉकी टीम को। तो ये थी उपलब्धियां खेल के मैदान में हमारे खिलाड़ियों की। तो इन सब के लिए एक गीत। जय हो।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज़ ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। प्रोग्राम के शुरू में हमने बात की थी भारतीय डाक का जो नया सिस्टम शुरू हुआ है उसके बारे में। जी, भारतीय डाक विभाग लगातार बदलते दौर के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है और सेवाओं में नयापन ला रहा है। और इसी सिलसिले में भारतीय डाक नया सिस्टम लाया है, डिजिपिन शुरू किया है, जो मौजूदा पिन कोड की जगह नहीं लेगा। अब तक हम किसी घर या ऑफिस की स्थिति बताने के लिए 6 अंकों के पिन पोस्ट इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आप सबको मालूम है भारतीय डाक ने अब सटीक डिजिटल पहचान के लिए डिजिपिन यानी डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर एड्रेसिंग प्रणाली शुरू की है। इसमें 10 अक्षरों और अंकों का कोड मिलेगा। इससे किसी जगह की पहचान पिन कोड से ज्यादा सटीक तरीके से की जा सकेगी। खास बात यह है कि डिजिपिन मौजूदा पिन कोड की जगह नहीं लेगा, इसे पुराने पते और पिन कोड के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सवाल यह आता है कि अपने पते का डिजिपिन कैसे पता लगाएं? बिल्कुल सही है, तो इसके बारे में हम आपको बताएं कि भारतीय डाक की वेबसाइट जो है dac.indiapost.gov.in/my/digipin/ होम पर जाएं, मैप पर अपनी लोकेशन चुनें या सर्च करें। स्क्रीन पर 10 अंकों का डिजिपिन दिखाई देगा। जब आप सर्च करेंगे तो 10 अंकों का डिजिपिन दिखाई देगा। नो योर डिजिपिन यानी अपने डिजिपिन को जानिए। ये ऐप डाउनलोड करके भी पते का डिजिपिन जनरेट किया जा सकता है। कोड जनरेट करने के लिए अकाउंट बनाने या लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरह से ये स्टेप फॉलो करने के बाद आप अपने पते का डिजिपिन पता लगा सकते हैं। तो है 10 अंक

का डीजी पिन, लेकिन ये मौजूदा पिन कोड की जगह नहीं लेगा। लेकिन सिस्टम नया अब इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी 10 अंकों का डीजी पिन। तो ये है नई व्यवस्था भारतीय डाक की, डाक सेवाओं को और आसान बनाने की।

0: निकल जाओ इस घर से, तुम्हें कुष्ठ रोग है। अगर तुम इस घर में रही तो हम सबको भी कुष्ठ रोग हो जाएगा।
1: अरे भैया, आप भाभी को घर से क्यों निकाल रहे हैं? इससे तो आपका परिवार टूट जाएगा। क्या आपको पता नहीं है कि कुष्ठ रोग अन्य बीमारियों की तरह ही है? इसका इलाज MDT से संभव है। भाभी को आज ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं और वहां उनका इलाज करवाएं।
2: स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं। और प्रोग्राम के शुरू में हमने आपसे कहा था कि भारत के पहले स्वदेशी आधुनिक अनुसंधान पोत जो लॉन्च हुआ उसके बारे में भी बताएंगे। तो भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित अत्याधुनिक महासागरीय अनुसंधान पोत समुद्र मंथन कल कोलकाता के ऋषि बंकिम शिपयार्ड में लॉन्च किया गया। ये 840 करोड़ की लागत से तैयार है। 5,900 टन वजनी ऑल वेदर यानी हर मौसम में काम करने वाला ये पोत है जो दक्षिणी महासागर के चुनौतीपूर्ण और अत्यधिक कठिन क्षेत्रों में भी काम करने में सक्षम है। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग गहरे समुद्र में सर्वेक्षण, भूभौतिकीय प्रोफाइलिंग, सुनामी की भविष्यवाणी, जलवायु अध्ययन और मौसम संबंधी डाटा जुटाने में किया जाएगा। ये पोत पुराने हो चुके ORV सागर कन्या का स्थान लेगा। तो ये है आधुनिक अनुसंधान पोत समुद्र मंथन, ये है उपलब्धि।

भारत की ऑल वेदर पोत है ये, हर मौसम में काम करने वाला है। तो अब आपको जानकारी देते हैं, प्रधानमंत्री के अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, उत्थान के लिए जो कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, उन कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम उस्ताद योजना है। उस्ताद योजना, ये जो योजना है दोस्तों, इस योजना में कारीगरों, कलाकारों के डिजाइन, उत्पादन श्रेणी, विकास, पैकेजिंग, प्रदर्शनी जैसी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID और भारतीय पैकेजिंग संस्थान की सहायता ली जा रही है। और इन कलाकारों को, इन कारीगरों को नए जो तरीके हैं उनके हुनर को आगे बढ़ाने के लिए, उनके साथ जोड़ा जाएगा, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें यूपी की चिनकारी है और ग्लासवेयर है, जम्मू कश्मीर की पेपर मौशी है, पंजाब की फुलकारी है, राजस्थान का लहरिया है और गुजरात का भी जो खास होता है वो इसमें शामिल है। उस्ताद योजना के तहत ऐसे कारीगरों को उनके काम को और ज़्यादा अच्छे तरीके से करने की ट्रेनिंग दी जा रही है और समय समय पर नई जानकारी दी जा रही है। इस योजना के माध्यम से कारीगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी कला का प्रदर्शन कर सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कारीगरों, कलाकारों की धमक हो, चमक हो, एक पहचान बने, उसके लिए सरकार ने ई वाणिज्य पोर्टल की शुरुआत की, ताकि इन बुनकरों, हस्तशिल्पकारों द्वारा बनाए जा रहे विभिन्न प्रोडक्ट्स को बेचा जा सके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये है उस्ताद योजना, भारत सरकार की, प्रधानमंत्री के अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, विकास के लिए, उत्थान के लिए जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उन प्रोग्रामों में ये है एक योजना, उस्ताद योजना। और इस योजना की अधिक जानकारी आपको मिल सकती है www.minorityaffairs.gov.in पर। और अब इस जानकारी के बाद एक म्यूजिकल नंबर।

जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योरिटी।

0: एमटी बार मजबूत लचीला भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़ सेल सिक्योर टीएमटी बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में अब बारी है रीजनल हेडलाइंस की, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की।

0: ओरिजिनल हेडलाइंस में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी हेडलाइंस में पंजाब के कर्मचारियों की पेन डाउन हड़ताल खत्म। पंजाब सरकार ने भवन नियमों में किया बदलाव। पंजाब में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों की अनदेखी पर जुर्माना, जुर्माना नहीं भरा तो सड़क पर लगानी पड़ेगी झाड़ू। पराली प्रबंधन से उद्योग तक CII के साथ मिलकर काम करेगी पंजाब सरकार। और हरियाणा से जुड़ी खबरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष सार्वजनिक जीवन को याद करते हुए सेवा संकल्प अभियान में 20 लाख दीयों से प्रधानमंत्री मोदी को देंगे आशीर्वाद। ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से प्रदेश सरकार युवाओं को देगी नए मौके। मुख्यमंत्री के फैसले अब फाइलों में नहीं रहेंगे, हर काम का तय होगा समय। और हिमाचल से जुड़ी खबरों में कुल्लू दशहरा, इस बार 347 देवी देवताओं को न्योता, पिछले साल से 15 ज्यादा। फूड लाइसेंस की आड़ में नशीली और दवाएं बनाने का पर्दाफाश किया गया है। बद्दी में ड्रग और पुलिस विभाग की टीम ने दबिश की। हिमाचल में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए केंद्र देगा हिमाचल को वित्तीय सहायता। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट, 2 माह में होगी फाइनल। ये थी रीजनल हेडलाइंस।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: वेलकम बैक दोस्तों, अब लोकल हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। सड़क के खतरे से मुक्ति होगी, अंडरपास से होगी PGI एंट्री, अगले माह शुरू होगा काम। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है, लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को रोकना है, जरूरतमंदों को समय पर मदद और सही परामर्श देना है, आज के दिन का ये उद्देश्य है। अब आज का अखबार कार्यक्रम समाप्त करने के अपने साथ ही अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने साथ साथ अपने आसपास का भी ख्याल रखते जाइए। नमस्कार।
2: आज का अखबार,
0: आज का अखबार कार्यक्रम अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 10 बजने को हैं कुछ ही पलों में समाचार, हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल

0: ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगुड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन, ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होती। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभा सकें।
2: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरणी अमरसूरिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसी पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फॉरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान काठमांडू पहुंचा। 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में दोनों अमेरिकी खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो आमने सामने होंगे। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमेरिकी खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त टियाफो ने अमेरिकी खिलाड़ी एलेक्सिस मिशेलसन को हराया। कल महिला सिंगल सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन आर्याना सबालेंका का सामना 3री वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
4: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान? तो लगाइए BSNL फाइबर का 495

वाला 100 MBPS प्लान, पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800-44444 पर।

दस बजकर 6 मिनट और 25 सेकंड हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सफर सुरीला सा। कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं गीतों का ये कार्यक्रम होता है और शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले एक फिल्मी गाने से। अभिजीत का गाया हुआ ये हौले हौले सहलाता सा गाना है, बेवफा ये फिल्म है और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

0: अभी आपने बेवफा फिल्म से ये गीत सुना। अभिजीत की आवाज में गीत था, संगीत था नदीम श्रवण का।
1: चमड़ी पर फीका लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की किसी नस का मोटा हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 2 सितंबर से 15 सितंबर तक हरियाणा के गुरुग्राम, पानीपत जिलों में मकानों, झोंपड़ियों, फैक्ट्रियों और घर घर जाकर कुष्ठ के मरीजों को ढूंढने के लिए जाँच की जाएगी। घबराए नहीं, कुष्ठ छूत का रोग नहीं है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
0: अब बारी है नॉन फिल्मी गाने की। असीस कौर का गाया एक गीत है,

0: कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
1: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। सूट, साड़ी, लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज, नियर रेलवे स्टेशन, अंबाला शहर। फोन 8950632224।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: सफर सुरीला सा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से। अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज़ ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। इस प्रोग्राम के बाद दिन में 11 बजे लक्ष्य प्रोग्राम में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर सुनैना जैन से, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंग्लिश की। ये इंग्लिश विषय के बारे में जानकारी देंगे और

इसमें करियर से जुड़ी जो संभावनाएं हैं उनके बारे में बताएंगी। इनसे बातचीत करेंगे हमारे साथ ही रमेश कपूर। और 11:30 पर प्रोग्राम होगा फरमाइश आपकी, आपके पत्रों पर आधारित फिल्मी गाने इस प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। फिलहाल सफ़र सुरीला सा कार्यक्रम चल रहा है और अब बारी है सोनू निगम के गाए उस गीत की जिसे रानी मलिक ने लिखा है। संगीत है आनंद मिलिंद का और ये फिल्म है बेवफा सनम।

0: आप सुन रहे हैं कुछ गैर फिल्मी और फिल्मी रचनाएं और गीत प्रोग्राम सफर सुरीला में। अभी आपने असीस कौर और अल्तमाश अफरीदी की आवाजों में ये गीत सुना। अभी मिलते हैं इस अंतराल के बाद।
1: अरोड़ा प्लाईवुड
2: यहाँ है पीवीसी, डब्ल्यूपीसी, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और एचडीएचएमआर प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
1: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
0: और फिल्मी गाने में क्रिमिनल फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजों में, MM करीम के संगीत में ये गीत है। गीत को लिखा है इंदिवर ने।

अभी आपने क्रिमिनल फिल्म से गीत सुना, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। अब इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं गैर फिल्मी गज़ल। फनकार हैं जगजीत सिंह, कलाम हैं खतीब।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: और आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुरीला सा, कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी गीतों रचनाओं का ये कार्यक्रम। अब बारी है एक क्लासिकल गीत की, जिसे लता मंगेशकर ने गाया है, राजा मेहंदी अली खां के बोल हैं, संगीत मदन मोहन का है और ये फिल्म है अनपढ़।

अभी आपने आदित्य रेखाड़ी की आवाज में ये गीत सुना और अब बारी है फिल्मी गाने की। सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गाना है, लम्हे ये फिल्म है, शिवहरि का संगीत, गीतकार आनंद बख्शी।

0: अभी आपने लम्हे फिल्म से ये गीत सुना। गीत को स्वर दिया लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से सफर सुरीला सा कार्यक्रम।
1: कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
2: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
1: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
2: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
1: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: प्रोग्राम के आखिर में एक भक्ति रचना हम आपको सुनवा रहे हैं जुबिन नौटियाल की आवाज में।

0: अभी आपने कबीर जी के दोहे सुने जुबिन नौटियाल की आवाज़ में। इस भक्ति रचना के साथ ही अब आज का सफर सुरीला सा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। हमारा अगला प्रोग्राम है लक्ष्य, आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।
1: धीमे इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: लक्ष्य
2: लक्ष्य कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश कपूर का नमस्कार। दोस्तों, लक्ष्य कार्यक्रम में हम आपको करियर से जुड़ी जानकारियां देते हैं। विभिन्न एक्सपर्ट्स द्वारा आपको करियर गाइडेंस दी जाती है ताकि बहुत से हमारे युवा साथी

0: जो जिंदगी में अपने करियर को लेकर उत्साहित होते हैं वो सही रास्ता चुनकर अपनी मंजिल तक पहुंच सके। आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं MCM DAV कॉलेज चंडीगढ़ की असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश डॉक्टर सुनैना जैन। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्य कार्यक्रम में।
1: बहुत शुक्रिया सर मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने का और एक मौका देने का कि मैं अपनी युवा पीढ़ी को अगर कोई भी गाइडेंस दे सकूं रिगार्डिंग देयर करियर, सो इट विल बी यू नो माय प्लेजर।
0: डॉक्टर सुनैना जैन, क्योंकि इंग्लिश आज ग्लोबल लिंक लैंग्वेज बन चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम्युनिकेशन का इंग्लिश ही जरिया है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है?
1: सर मैं समझती हूँ कि रादर देन लुकिंग एट इट एज अ कॉलोनियल लेगेसी, बहुत लोग ऐसे बिलीव करते हैं कि कॉलोनियल लेगेसी है, लेट अस डू अवे विद इंग्लिश लैंग्वेज। मुझे नहीं लगता कि एट द कॉस्ट ऑफ इंग्लिश, ऑफकोर्स हमारी रीजनल लैंग्वेजेस प्रमोट होनी चाहिए बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंग्लिश, क्योंकि एक्चुअली में एक ग्लोबल लिंक लैंग्वेज है, हमें बहुत देशों से और देशों से जोड़ती है, बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज जो अवेलेबल है वो इंग्लिश लैंग्वेज उसके लिए एक नेसेसरी स्किल है, तो उसमें प्रोफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वी कैन नॉट यू नो डू अवे विद इट। तो आई थिंक इंग्लिश लैंग्वेज में एक लेवल की प्रोफिशिएंसी होना आज के इस फास्ट पेस्ड ग्लोबल वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: जी, तो आपके कहने का मतलब है कि अंग्रेजी भाषा जो है वो बहुत बड़ा जरिया है जब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो।
1: बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है।
0: जी, तो क्या अंग्रेजी जो है वो एक सिर्फ भाषा ही है या करियर का एक मजबूत माध्यम भी है?
1: सर बिल्कुल, एक भाषा के अलावा आज के दौर में करियर अपॉर्चुनिटीज जो इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर से उपजती हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। देयर आर मेनी ब्रांचेस इन विच वन यू नो आवर यूथ कैन एक्सप्लोर देयर करियर ऑप्शंस, और ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का मानना है कि इंग्लिश लिटरेचर की है, उन्हें ये भी लगता है कि बहुत एक वी आर यू नो ड्राइविंग टुवर्ड्स आइडियलिज्म ओनली, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी ह्यूमन लाइफ स्किल्स हैं वो हम इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों से सीखते हैं, और इससे जुड़ी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है इन एडिशन टू टीचिंग विच पीपल थिंक इज द मेन ब्रांचिंग आउट फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर।
0: जी, अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश सब्जेक्ट की पढ़ाई करता है तो उसके बाद कौन कौन से करियर विकल्प जो हैं वो उपलब्ध हैं?
1: पहले मैं थोड़ा सा टीचिंग के बारे में बताना चाहूंगी कि UGC नेट इंग्लिश में आप ऑफ कोर्स यू कैन गेट सर्टिफिकेशन, आप उसमें वो क्वालिफाई करते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर लेक्चरशिप इन कॉलेज बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके अलावा ग्लोबल लेवल पर सर TEFL ये TESOL जो कोर्सेज सर्टिफिकेशन होती है ये भी एक इम्पॉर्टेंट जरिया है, नॉट फॉर कॉलेज टीचिंग बट स्कूल टीचिंग और अदर प्लेटफॉर्म्स। इसके अलावा ETECH, EdTech और e-लर्निंग काफी प्लेटफॉर्म्स है। व्हाट आई मीन इज ट्रेडिशनल टीचिंग के अलावा EdTech और ई लर्निंग वाली जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी अवेलेबल हैं।
0: जी,
1: इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनकी ब्रांचेस हैं यूनिसेफ या यूनेस्को, सो दे आल्सो रिक्वायर एक्सेप्शनल प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, तो इनके काफी सारे ब्रांचेस हैं, जैसे आप कम्युनिकेशन ऑफिसर बन सकते हैं, आप एडवोकेसी ऑफिसर बन सकते हैं, प्रोजेक्ट असिस्टेंट बन सकते हैं, मैनेजर है, रिसर्च मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिसर है, पॉलिसी एनालिस्ट है, तो इसमें भी काफी ब्रांचेस हैं जिसमें एज रिसर्चर भी काम कर सकते हैं, तो ये कुछ ऑप्शंस भी हैं इन एडिशन टू टीचिंग। फिर NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आल्सो रिलाय अ लॉट ऑन ग्रेजुएट्स हु हैव गुड कमांड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे उन्हें ग्रांट राइटिंग की जरूरत होती है, उन्हें फंड रेजिंग इवेंट्स होते हैं उनके, उसमें भी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, प्रोग्राम एसोसिएट्स होते हैं, कम्युनिकेशन ऑफिसर, फिर आजकल जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल कॉन्टेंट मैनेजर, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, तो ये सब भी फील्ड्स जो हैं वो एलाइड फील्ड्स हैं और इसमें भी स्टूडेंट्स जो हैं काफी चीजें और काफी नए फील्ड्स एक्सप्लोर कर सकते हैं।
0: जी, अगर हम कंटेंट राइटिंग की बात करें, ट्रांसलेशन की बात करें, जर्नलिज्म की बात करें, तो इनमें अंग्रेजी की क्या भूमिका रहती है अगर कोई करियर अपनाना चाहता है तो?
1: सर ट्रांसलेटर में ऐसे कि दो ऑप्शंस है, एक ट्रांसलेटर और एक इंटरप्रेटर। ट्रांसलेशन एज यू नो कि हम जब रेंडर करते हैं सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में, हिंदी से अंग्रेजी, पंजाबी से अंग्रेजी एंड वाइस वर्सा, वो अंग्रेजी से भी, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो लैंग्वेजेस में आपको प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए, एक आपकी नेटिव लैंग्वेज और एक आपकी चोजन ट्रांसलेटेड लैंग्वेज। तो ट्रांसलेटर आज के जमाने में हम वर्ल्ड लिटरेचर की बात करें और बहुत सारे फील्ड्स और डायमेंशंस हैं ट्रांसलेशन की जो कि युवा एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे मेडिकल फील्ड्स में बहुत सारे मेडिकल या क्लिनिकल रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी ट्रांसलेशन, अगर हम लीगल फील्ड की बात करें तो काफी सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स में ट्रांसलेशन की जरूरत रहती है। फिर लिटरेरी ट्रांसलेटर्स हो गए, ऑफकोर्स जैसे आपने देखा होगा, इनफैक्ट बुकर प्राइज विनर्स भी ट्रांसलेटेड टेक्स्ट हुए हैं, गीतांजलि श्री जी की टूम ऑफ सैंड जो कि रेत समाधि के तौर पे पब्लिश हुई थी, फिर वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट की गई डेजी रॉकवेल के द्वारा। तो इस तरह से ट्रांसलेशन में भी बहुत सारे डायमेंशन और फील्ड है जो कि एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक और एलाइड फील्ड है,

0: इंटरप्रेटर। ट्रांसलेटर्स जो है वो एक रिटन टेक्स्ट को ट्रांसलेट करते हैं, और जो इंटरप्रेटर्स का रोल होता है आपने कुछ ब्यूटी पेजेंट्स या और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा कि इंटरप्रेटर्स का काम होता है कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करना इन रियल टाइम। वो चाहे जैसे किसी ने एक स्पीच दी किसी प्लेटफॉर्म पर और वो उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, और वंस द पर्सन हैज डिलीवर्ड द स्पीच वो उसके बाद भी उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इंटरप्रेटर का भी एक जो ये जॉब अपॉर्चुनिटी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, दिस ऑल्सो इज वेरी ल्यूक्रेटिव एंड आई थिंक यूथ कैन एक्सप्लोर दिस एज वेल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। और इसके लिए काफी कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे आपने अगर अंग्रेजी में डिग्री ली है, बैचलर्स डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट कोई अंग्रेजी में इंग्लिश लिटरेचर में एमए की है, उसके साथ अगर आप कोई पीजी डिप्लोमा कर लें ट्रांसलेशन स्टडीज में, इस तरह के कुछ कोर्सेज हैदराबाद में अवेलेबल हैं। दैट गिव्स एन एडेड एडवांटेज एंड मोर वैल्यू एंड क्रेडिबिलिटी टू योर प्रोफाइल। तो आप इस चीज में ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन के फील्ड में जा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर सुनैना, आजकल सोशल मीडिया पर सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर और इमेज कंसल्टेंट के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत कुछ सुना जा रहा है, या यूं कह लें कि ये जो नई टर्मिनोलॉजी है बहुत वायरल हो रही है। तो आप हमें ये बताएं कि सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर और इमेज कंसल्टेंट में कोई करियर बनाना चाहता है तो वो कैसे बना सकते हैं और इनका बेसिकली काम क्या रहता है?
0: सॉफ्ट स्किल ट्रेनर बेसिकली होते हैं जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स और हमारी सॉफ्ट स्किल्स। अब सॉफ्ट स्किल्स क्या है? सॉफ्ट स्किल्स में आ जाता है हमारा टीम वर्क, किस तरह से कोऑर्डिनेशन की जाए, किस तरह से डिसीजंस लिए जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, टाइम मैनेजमेंट हो गई, अडैप्टेबिलिटी हो गई, क्रिएटिविटी हो गई, वर्क एथिक्स हो गए, आपकी बॉडी लैंग्वेज हो गई, ये सब चीजें सॉफ्ट स्किल्स में आ जाती हैं। तो अगर आपने ये जो स्पेसिफिक स्किल्स हैं आपकी, अगर आपने एक डिग्री की है अंग्रेजी लिटरेचर में या लैंग्वेज में, सो आई थिंक बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन सॉफ्ट स्किल्स एंड बीइंग अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, तो ये चीज आपको काफी हेल्प कर सकती है। इंग्लिश में कोई डिग्री की हो, नहीं भी की हो, तो आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आप सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर बन सकते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत जरूरत होती है इंटरपर्सनल स्किल्स इन्हांस करने की, अपनी टीम को आगे लेके जाने के लिए आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आना चाहिए, उनके एम्प्लॉयज में इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, नेटवर्किंग करनी आनी चाहिए, बिजनेस एटिकेट्स होने चाहिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये सब चीजें जो है वो एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर सिखाता है। और इसके लिए कोई बहुत एक मुझे लगता है कि एक इनबॉर्न टैलेंट भी होता है, यू नो व्हेन यू आर वेरी प्रेजेंटेबल सो यू हैव दैट इनबॉर्न, और अगर आप उसको थोड़ा सा और पॉलिश कर लें तो यू कैन बी वेरी गुड फैंटास्टिक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। एंड आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स, माय ओन स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हैं, दे आर डूइंग रियली वेल।
1: तो कॉर्पोरेट की बात करें, इनके लिए आगे चल के किस तरह के ऑप्शन रहते हैं इनके करियर के लिए?
0: इसमें तो यही है कि आप सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर को हायर करती हैं ताकि उनका जो वर्क प्लेस है, उनके जो एम्प्लॉयज हैं, वो अपने आप को अपग्रेड रख सकें, उन्हें बिजनेस एटिकेट्स आए, वो टीम वर्क में काम कर सके, कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में काम कर सके। तो सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर तो मुझे लगता है हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली दे कीप ऑन यू नो इन्वाइटिंग पीपल फॉर गिविंग इम्पार्टिंग सॉफ्ट स्किल्स टू देयर एम्प्लॉयज, तो ये तो एक रेगुलर डिमांड है। उसके अलावा अब इमेज कंसल्टेंट ये फोकस करते हैं तीन चीजों पर, दीज आर द एबीसीज ऑफ इमेज कंसल्टेंट, दैट इज ए फॉर अपीयरेंस, बी फॉर बिहेवियर, सी फॉर कम्युनिकेशन। इसमें सॉफ्ट स्किल्स थोड़ा सा एक पार्ट है इमेज कंसल्टेंट का, पर ये आप कैसे दिखते हैं, यू नो बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, वेदर यू आर अपियरिंग फॉर एन इंटरव्यू, कहीं आप बाहर जा रहे हैं, लोग आपको किस तरह से देखते हैं, किस तरह का आपका पहरावा है, किस तरह की आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जेस्चर्स है, एक्सप्रेशंस है, तो ये आपकी अपियरेंस पे बहुत काम करते हैं जो इमेज कंसल्टेंट होते हैं। आपकी बॉडी शेप को एनालाइज करते हैं, कलर पैलेट, आपको किस तरह के कपड़े आप पर सूट करेंगे, किस तरह के कलर्स आपको पहनने चाहिए, आपका पर्सनल स्टाइल कैसा होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा आगे अगर चले जाएं तो इमेज कंसल्टेंट्स वन टू वन सर्विसेज भी देते हैं, ये कोचिंग जो देते हैं आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे देते हैं, तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स कैसे इनहेंस करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इनहेंस करनी है, सो दिस ऑल्सो इज अ वेरी मेजर कॉम्पोनेंट इन एनी बिजनेस, इन एनी कॉर्पोरेट सेक्टर। और इमेज कंसल्टेंट, अगर आपके पास एक अंग्रेजी की डिग्री है, वो डिग्री है या नहीं है, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, इफ यू हैव वर्कड ऑन योर एटिकेट्स, ऑन अपीयरेंस, ऑन बिहेवियर ऑफ पीपल, इफ यू आर अ गुड जज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, तो ये जॉब जो है इमेज कंसल्टेंट का जो रोल है वो भी बहुत सारे यूथ दे कैन यू नो एक्सप्लोर दिस फील्ड एज वेल। सो दिस वन इज एन इमर्जिंग फील्ड। अब हमारे टाइम पे हमें नहीं लगता था कि हमें किसी इमेज कंसल्टेंट की जरूरत है, बट कंसिडरिंग हाउ देर आर सो मेनी ऑप्शंस एंड एवेन्यूज अवेलेबल और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर, इंटरनेशनल

0: बहुत सारी MNCs हैं, वहाँ पर इन चीजों की काफी वैल्यू है। आप कैसे दिखते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आपके बिजनेस एटिकेट्स कैसे हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स क्योंकि एक मेजर पार्ट है, तो ऑफ कोर्स दिस आल्सो इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट।
1: जी, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर और इमेज कंसल्टेंट के बाद स्टोरी टेलर के बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे?
0: चाहे वो सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर है, चाहे वो इमेज कंसल्टेंट है, वो काम करते हैं वाया स्टोरी टेलिंग। अगर आपने अंग्रेजी साहित्य पढ़ रखा है, लैंग्वेज और आपका वोकैबुलरी पे और लिटरेचर पे अच्छा कमांड है, तो आई थिंक यू नो हाउ टू बिल्ड पर्सनल नैरेटिव्स। तो यू कैन क्रिएट योर ओन पर्सनल ब्रांड, ऑफ कोर्स यू कैन हेल्प अदर्स इन forming their personal brand as well. एक और फील्ड जो सर काफी बच्चे एक्सप्लोर कर सकते हैं आफ्टर इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में प्रोफिशिएंसी उन्हें काफी हेल्प कर सकती है, वो है फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। वी ऑल नो, और जर्नलिज्म के फील्ड में भी एडिटोरियल असिस्टेंट बन सकते हैं। एडिटोरियल असिस्टेंट बनने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स जैसे, और या जो उनका जॉब प्रोफाइल है वो हो सकता है उन्हें कंटेंट मैनेजमेंट का काम दिया जाए, एडिटिंग का, प्रूफ रीडिंग का, पब्लिशिंग सपोर्ट होता है। तो दीज आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट एडिटोरियल असिस्टेंट्स यू नो टेक अप। एडिटोरियल कैलेंडर्स मेंटेन करने, क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना डिजिटल कॉन्टेंट का, और ऑथर सबमिशंस को, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को स्क्रीनिंग करनी, उनको पढ़ना, थोड़ी सी लाइट एडिटिंग करनी। आई थिंक दिस कैन बी वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स जो कि एडिटोरियल असिस्टेंट बन के हो सकती है। और जर्नलिज्म के फील्ड में प्रिंट जर्नलिज्म और फोटो जर्नलिज्म, ऐसे काफी सारे और फील्ड्स भी अवेलेबल हैं जर्नलिज्म के फील्ड में विच दे कैन एक्सप्लोर। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ल्यूक्रेटिव इन द बिगिनिंग हो सकते हैं, बट आई थिंक विद हार्ड वर्क, विद पेशेंस, विद डिलिजेंस, आई थिंक दे कैन अचीव सक्सेस इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म एज वेल एज यू नो एडिटोरियल असिस्टेंट या पब्लिशिंग हाउसेज के साथ काम करके। तो पब्लिशिंग हाउसेज के साथ काम करने का एक ये भी फायदा है कि दोज हु आर इनटू रीडिंग, हु एंजॉय रीडिंग, आप बहुत तरह तरह की मैन्यूस्क्रिप्ट्स पढ़ने को भी मिलती हैं और बहुत सारी गाइडेंस और प्रीलिमिनरी स्टेप्स आपको सीखने को मिलते हैं हाउ टू गेट इनटू द पब्लिशिंग हाउसेज एज पब्लिशर, एज एडिटर्स। तो इसके बाद ऑफ कोर्स वो हायरार्की में आप अपस्केल अपने आप को करते रहते हैं विद टाइम, विद एक्सपीरियंस।
1: जी डॉक्टर सुनैना जैन, आपसे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे। यहां पर आपकी पसंद का एक गीत आपको और अपने सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं?
0: सर आपने मुझसे मेरी पसंद का गीत पूछा है, तो मुझे मासूम फिल्म का तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है।
1: बहुत ही अच्छा गाना है, आइए सुनते हैं।
2: तुझसे

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लक्ष्य, और आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं एमसीएम डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ की असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश डॉक्टर सुनैना जैन। डॉक्टर सुनैना जैन, अगर हम कंटेंट राइटिंग की बात करें या क्रिएटिव राइटिंग की बात करें, तो इसमें लिटरेचर या ग्रामर का, इंग्लिश का क्या रोल रहता है?
1: सर, क्रिएटिव राइटिंग तो है ही ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। आप अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपकी इमेजिनेशन कैसी है, आपका एक्सप्रेशन कैसा है, क्या आपको अच्छी स्टोरी टेलिंग आती है। आई थिंक वी ऑल आर स्टोरी टेलर्स, इट इज जस्ट वी हैव टू लुक विद इन, अपने अंदर झांके। आई थिंक अगर मैं अपनी भी बात करूँ, क्रिएटिव राइटिंग की बात करूँ, आई हैव बीन राइटिंग पोएट्री फॉर सम टाइम, सो व्हेनेवर आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट समथिंग, कभी इमोशनली charged हूँ, I think the best way is to write it down, और वो शायद मेरे लिए वो एक कविता के रूप में मैं अपने आप को best express कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है हर एक के पास कोई ना कोई माध्यम होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। कुछ शायद जर्नलिंग के थ्रू, आप पब्लिक रीडिंग नहीं चाहते, कुछ लोग अपने आप को एज थेरेपी यूज करते हैं राइटिंग को, एज इट्स वेरी कैथार्टिक, एक इमोशनल रिलीज हो जाता है जब आप अपने अंदर बॉटल्ड अप आपके जो इमोशंस हैं, भाव हैं, उन्हें लिख देते हैं। प्रोफेशनल फील्ड की बात करूं तो क्रिएटिव राइटिंग, देखिए ऑनेस्टली मैं बोलूंगी कि बहुत ल्यूक्रेटिव नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप चाहे बहुत गिफ्टेड भी हो। आपने अगर ये देखे हो चेतन भगत जैसे, ये दे हैव बिकम ब्रांड्स, तो वो ब्रांडिंग तक पहुंचने की एक जर्नी है। तो उस जर्नी तक, वहां तक अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, जो कि आप लिखते भी होंगे, बहुत लोग गिफ्टेड राइटर्स हैं, लेकिन उतनी शायद विजिबिलिटी और रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती, दैट इज प्रोबेबली इन टुडेज वर्ल्ड इट इज बिकॉज ऑफ लेस मार्केटिंग एंड लेस पब्लिसिटी, मैं कहूंगी। मतलब आप लिखते बहुत अच्छा हो सकते हैं, तो इसको एक फुल टाइम प्रोफेशन बनाने से पहले मैं कहूंगी अगर उस जर्नी के दौरान एक प्लान बी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू आर वेरी passionate about creative writing, जरूर लिखिए, अपने manuscripts तैयार कीजिए, don't feel shy of sending those manuscripts to good publishers, you never know when it clicks। तो उसके लिए literary agents भी होते हैं, आप एक professional help ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी manuscript बहुत अच्छी है, आपने कोई कहानियों का एक collection लिखा है, anthology लिखी है, कोई आपने एक novel लिखा है, पर आपको समझ नहीं आ रही है कि how to approach the publishers, तो उसके लिए एक middleman होते हैं, literary agents, आप उन्हें approach कर सकते हैं और इस तरह से आप publishers को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आपकी, अगर आप ग्रामर वोकैबुलरी की बात करें, तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है एक जो नेचुरल एक्सप्रेशन होता है, अब आजकल हमारे पास बहुत एड्स हैं, वो आप ग्रामरली कहिए, प्रो राइटिंग एड कहिए, और एआई का एडवेंट है, दिस इज द एरा ऑफ एआई, जहां पर शायद लोगों को ये लगता है कि अपना दिमाग, अपनी क्रिएटिविटी यूज करने की जरूरत ही नहीं। फ्रॉम माय साइड द एडवाइस टू ऑल दोज पीपल हु थिंक दे कैन डू अवे एंड एआई कैन बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, आई डू नॉट थिंक सो। और यूथ के लिए भी मेरा एक मैसेज है कि आप एआई को यूज कीजिए, लेकिन वेरी रिस्पॉन्सिबली, डू नॉट लेट ब्रेन फॉग गेट बेटर ऑफ यू। अपना दिमाग, अपना दिल जरूर इस्तेमाल कीजिए, अपने ही भावों को आप अपने पेपर पर उतारिए। मे बी एट द एंड ऑफ इट, इफ यू वॉन्ट अ लिटिल बिट ऑफ हेल्प इन रिफाइनिंग एंड पॉलिशिंग, मे बी यू नो 4-5% ऑफ हेल्प, इफ यू नीड एनी एक्सटर्नल हेल्प, यू मे गो टू एआई, बट नॉट बिफोर दैट। आपका एक्सप्रेशन, आपके भाव, आपके जो जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे वो बचपन की यादें हो, एक्सपीरियंसेस हो, उसी से हम लिखते हैं। तो आप अपने एक्सप्रेशन, अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी यूज करके लिखिए, उसके बाद शायद कुछ हेल्प एक्सटर्नल चाहिए हो तो आप ले सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि ये जो युग है वो एआई का युग है, लेकिन आप क्या समझती हैं कि एआई के दौर में क्या चैलेंजेस हैं इंग्लिश के लिए?
1: सर, चैलेंजेस तो देखिए मैं कहूंगी कि हैं, डेफिनेटली हैं चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं। चलिए, मैंने एक अभी स्पाइस ऑफ लाइफ में एक आर्टिकल आया, उसमें मैंने जो स्टार्ट किया वो आर्टिकल, वो एक अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से फोटो एल्बम्स पे था, कि हम छोटे थे तो हम किस तरह से वो फोटो एल्बम्स निकाल के देखते थे, उससे रिलेटेड कोई एक तो एनेक्डोट्स भी मेरे उस आर्टिकल में आए। अब आप एआई को कोई प्रॉम्प्ट दीजिए, आप इस फील्ड पे, इस टॉपिक पे या इस सब्जेक्ट पे एक आर्टिकल लिख दीजिए, बट इट कैन नॉट फैदम और इट कैन नॉट यू नो डिग आउट योर एक्सपीरियंसेस, योर ऑब्जर्वेशंस, योर आइडियाज,

0: यू नो ऑन इट्स ओन. उसके लिए वो ह्यूमन जो कनेक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. सो वी कैन नॉट गिव एवरीथिंग टू एआई. एआई का डेफिनेटली चैलेंज बहुत बड़ा है. इनफैक्ट अभी एक कुछ लिटरेरी अवार्ड ऐसे न्यूजीलैंड के मुझे राइटर्स का नाम नहीं याद, दे वर डिबार्ड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन दैट लिटरेरी अवार्ड क्योंकि उनके बुक का कवर पेज जो था वो एआई जनरेटेड निकला एंड दे वर डिस्क्वालिफाइड. तो उन्होंने काफी अपोज भी किया कि नहीं ये लिखा हमने ही है, एआई रिटन नहीं है, लेकिन दे वर डिबार्ड. तो यही मैं कह रही हूँ कि रिस्पॉन्सिबली यूज कीजिए, वो आपकी हेल्प के लिए आप एज एड यूज कीजिए, डू नॉट बी डिपेंडेंट. क्योंकि हमारे जैसे दिमाग के दो लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर है, तो क्रिएटिविटी लॉजिक रीजन सब बैलेंस में चलना चाहिए. अगर हम उसको तिलांजलि दे दें, हम अपना दिमाग यूज नहीं करें, दिल यूज नहीं करें लिखने के लिए, सब कुछ एआई. आपने देखा होगा सर कि किस तरह हमें फोन नंबर्स किसी जमाने में ऐसे याद रहते थे उंगलियों पर. नाउ सम पीपल डू नॉट इवन रिमेम्बर और नो देयर ओन फोन नंबर्स. तो ये सब हमें रस्ट होता जा रहा है हमारे जो दिमाग है. हर चीज के लिए ऐप है, हर चीज के लिए ट्रैकर है. वी डू नॉट नीड दीज मेनी एप्स और ट्रैकर्स फॉर अस बिकॉज वो मुझे लगता है कि ये चीजें याद रखेंगे तो बहुत ऐसी जो एज रिलेटेड इलनेसेस होती है, अल्जाइमर है, कुछ भी मेमोरी रिलेटेड है, वो क्योंकि हम अपने दिमाग को इस्तेमाल, हम अपनी मेमोरी को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे. इसलिए एआई जो है इट कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट. प्लीज यूज इट बट वेरी रिस्पॉन्सिबली.
1: डॉक्टर सुनैना जैन, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, आप क्या समझती हैं कि इस फील्ड में करियर बनाने के लिए किस तरह से एक यूथ जो है वो तरीके ढूंढ सकता है?
0: आसानी से सर कुछ नहीं मिलता. हर चीज के लिए मेहनत है. इवन टू इम्प्रूव योर एक्सप्रेशन, टू पॉलिश एंड रिफाइन योर एक्सप्रेशन, इट नीड्स रेगुलर प्रैक्टिस. अगर आप लिखना चाहते हैं, आप क्रिएटिव राइटर भी बनना चाहते हैं, आप ऐसे सोचें कि आपने एक दिन पेन पकड़ा और लिखना शुरू किया और आप राइटर बन गए, ऐसे नहीं होता. बहुत अच्छा लिखने के लिए बहुत कुछ पहले पढ़ना पड़ता है. अगर आप कॉन्टेंट राइटिंग की भी बात करें, ब्लॉगिंग है, सोशल मीडिया पोस्ट है, सबके लिए आप कितना कॉन्टेंट, रादर मुझे लगता है ये और चैलेंजिंग है. सोशल मीडिया पोस्ट पे रेलिवेंट मटीरियल पोस्ट करना, इन्फॉर्मेटिव मटेरियल पोस्ट करना, ये सब चीजें आसान कुछ नहीं है. यू हैव टू कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ, यू हैव टू कीप रीडिंग, यू हैव टू कीप पॉलिशिंग. सो आई थिंक दैट इज अ जर्नी.
1: जी, जब हम लोग क्रिएटिव राइटिंग की बात करते हैं या हम लोग इंग्लिश बोलने की बात करते हैं, तो एक जो इंसान है या स्टूडेंट है रोजमर्रा की जिंदगी में, अगर वो अंग्रेजी बोलने में माहिर बनना चाहता है या सीखना चाहता है, क्या उसे ग्रामर पर ध्यान देना चाहिए या सिर्फ बोलने की प्रैक्टिस पर?
0: इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स. क्या स्ट्रैटेजी किसके लिए वर्क करे, आई कैन जस्ट टेल यू कि अगर आप अंग्रेजी अच्छे से बोलना चाहते हैं. मैं अपना एग्जांपल अगर दूं तो एक बहुत एवरेज स्कूल से, मैं लुधियाना से पढ़ी और आई थिंक व्हाट केप्ट मी गोइंग एंड हाउ आई रीच्ड हियर, मैं अपनी शादी के 11 साल तक एक होम मेकर ही थी. पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने अंग्रेजी में की थी बट आई स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन आफ्टर 11 ईयर्स. तो जो 11 साल मैं पढ़ाई से दूर रही, लेकिन उस दौरान मैं एक मैगजीन आती है, उस मैगजीन को पढ़ती रही 10-11 साल, और मुझे लगता है वो एक कांस्टेंट एफर्ट था मेरे अपने पार्ट पर टू इम्प्रूव माय सेल्फ. और अंग्रेजी अच्छी सीखने और बोलने का एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये है कि आपको वैसे लाइक माइंडेड लोग भी चाहिए आसपास, जिनके साथ आप एक्चुअली में प्रैक्टिस कर सकें बोलने की. फिर एक टेक्निक होती है सर, आप मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े हो, अपने आप को कोई टॉपिक दें किसी भी चीज पर, एनी थिंग अराउंड यू, वो शीशा हो सकता है, वो टेबल हो सकता है, वो कुर्सी हो सकती है, एनी आइडिया, एनी थॉट, ऑनेस्टी जैसा टॉपिक हो सकता है. आप अपने आप को चैलेंज कीजिए कि इस टॉपिक पर मुझे 2-3 लाइनें उसी वक्त बोलनी है अंग्रेजी में. आपको कोई नहीं देख रहा, नोबडी इज जजिंग यू, नोबडी इज लुकिंग एट यू, बट दिस इज फॉर यू. वन थिंग इज दिस, ये मिरर प्रैक्टिस. दूसरी चीज, आप ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जिनके साथ बिना झिझके आप बोल सके. वहां पर आपको ये झिझक या डर नहीं हो कि आपको रिब्यूक किया जाएगा, आपका मजाक उड़ाया जाएगा. मेरी अपनी पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस हैं, जैसे मैं फर्स्ट ईयर में लेती हूँ पब्लिक स्पीकिंग, तो वहां पर कुछ मेरे पास दो सेट ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं. आधे बच्चे वो हैं जो कि ऑलरेडी पब्लिक स्पीकिंग में दे आर वेरी गुड, दे हैव बीन गुड डिबेटर्स, गुड स्पीकर्स ऑलरेडी, एंड दे आर देयर टू पॉलिश देयर स्किल्स इवन मोर. आधे बच्चे ऐसे हैं जो कि अपनी झिझक को, अपने स्टेज फ्राइट को दूर करना चाहते हैं और पब्लिक स्पीकिंग अदरवाइज उन्हें कभी वो कर नहीं पाए और वो सीखना चाहते हैं. सो इन माई क्लासेज वट आई डू, बिकॉज देयर मस्ट बी सम स्टूडेंट्स हु आर नॉट वेरी कम्फर्टेबल विद इंग्लिश, तो उन्हें ये कहती हूँ कि आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना है. अब वो आप किसी भी भाषा कीजिए, वो हिंदी हो सकती है, आपकी कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, ऑफ कोर्स जो मैं समझ पाऊं, हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी, तो आप किसी भी भाषा में अगर कोई टॉपिक भी दिए, आप अंग्रेजी में नहीं भी बोल पा रहे, तो जो भाषा में आप बोल सकते हैं बोलिए. और उसके बाद धीरे धीरे जब वो कॉन्फिडेंस आएगा तो आप अंग्रेजी तक भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप इज टू रिड्यूस एंड इलिमिनेट द स्टेज फ्राइट और द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. तो आई थिंक ये कुछ स्टेप्स हैं.

0: आप बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए, इंग्लिश लिटरेचर पढ़िए, और आप अच्छी मूवीज, लिटरेरी अडैप्टेशंस है वो जरूर देखिए। और अगर आप शुरू में सबटाइटल्स की जरूरत है तो आप सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को उस स्टेज पर लेकर जाएं जहां पर आपको सबटाइटल्स देखने की जरूरत नहीं पड़े।
1: जी, तो जैसा आपने बताया कि 11 साल तक आप घर में अपने घर को ही संभाल रही थी और 11 साल के बाद आप फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनी, तो इसके पीछे किसकी प्रेरणा रही सबसे ज्यादा?
0: सर, ऐसा है कि उससे पहले मैं कुछ पेंटिंग कर रही थी। ये मैं शुरू से एकेडेमिक्स में अच्छी थी, यूनिवर्सिटी टॉपर भी रही, वन ऑफ द यूनिवर्सिटी टॉपर्स, लेकिन फिर एक जॉइंट फैमिली में शादी हो गई तो ऐसे सोचा भी नहीं कि मैं आगे पढ़ूंगी या कभी जॉब करूंगी। लेकिन फैमिली में एक मिस हैपनिंग हुई, आई लॉस्ट अ वेरी क्लोज रिलेटिव एंड शी वॉज वेरी वेरी वर्सेटाइल, बहुत मल्टीफेसेटेड थी वो। तो जब उनकी डेथ हुई तो मुझे ऐसा बहुत धक्का लगा, सेटबैक लगा कि मैं अपनी जिंदगी में रिग्रेट्स लेकर ना जीना चाहती हूँ ना मरना चाहती हूँ। सो देर आर सम थिंग्स विच आई हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू डू। पढ़ाई में मैं अच्छी थी तो शायद मैं यही फील्ड आगे परस्यू करना चाहूंगी। तो वो एक जो पुश था, वो एक मिस हैपनिंग से मुझे एक सीख मिली, दिस टाइम इज द बेस्ट टाइम टू डू। So I had plucked up that courage, mustered up that courage to start my studies all over again. और एक प्रोफेसर थे, 11 सेक्टर कॉलेज में थी, हमारे नोन थे, तो उन्होंने मुझे ये प्रेरित किया कि आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है अंग्रेजी में, तो आप बीएड कर सकते हैं, पर बीएड से अच्छा आप यूजीसी नेट क्लियर कीजिए और आपको एक कॉलेज में जॉब मिल सकती है। जॉब तो मैंने तब भी नहीं सोची थी, बट जस्ट फॉर माई सेल्फ आई वॉन्टेड टू यू नो क्रैक यूजीसी नेट। तो इस तरह से वो जर्नी स्टार्ट हुई, एक दो महीने की, मैंने क्योंकि 11 साल का गैप रहा तो बिल्कुल कुछ नहीं मैं पढ़ी थी, तो उसके बाद मैंने दो महीने का एक क्रैश कोर्स किया। उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मुझे ऑफर आ गई वहीं पर पढ़ाने की, और उसी दौरान मैंने पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट दिया, उसमें मेरा एक थर्ड रैंक आ गया, और पीएचडी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, नॉट इवन इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स हैड आई थॉट ऑफ एवर परसुइंग अ पीएचडी, बट आई थिंक यू नो सर्कमस्टांसेस उसी तरह से फेवरेबल बनते चले गए, थिंग्स फेल इनटू प्लेस। तो यूजीसी नेट क्रैक हुआ, पीएचडी में एनरोलमेंट हुई, और फिर फैमिली के सपोर्ट के साथ वो चीज थोड़ी सी आसान भी रही, बच्चे छोटे थे मेरे दोनों, सो माय मदर इन लॉ वाज वेरी सपोर्टिव, उन्होंने ध्यान रखा, और यस दिस इज हाउ इट हैपेंड एंड आई स्टार्टेड माय टीचिंग करियर।
1: जी, क्योंकि आप क्रिएटिव राइटर भी हैं, तो अंग्रेजी भाषा के लिए क्या योगदान है आपका?
0: क्रिएटिव राइटर हूँ, अभी तक ज्यादा पोएट्री लिख रही थी। एक मेरी जो पहली किताब द पैचवर्क क्विल्ट, ये 2024 में आई, एंड दिस बुक हैज बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट बुक 2024 बाय चंडीगढ़ साहित्य अकेडमी, और अभी उनका अवार्ड फंक्शन आई थिंक मई में होगा। तो बस पोएट्री की वो जर्नी चल रही है, और दूसरी मैन्यूस्क्रिप्ट मेरी तैयार है एंड आई एम लुकिंग फॉर अ गुड पब्लिशर फॉर माय सेकंड मैन्यूस्क्रिप्ट, अलॉन्ग साइड कुछ न्यूज़पेपर्स, द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम्स, उनके लिए मिडल्स लिख रही हूँ। Yes, this is how I am dabbling in a few things, creative as well as critical. Academic bhi likhna padta hai, research papers likh rahi hun, and I also have 4 PhD students under me, jo ki mere saath I am helping them with their research work. To bas writing ki ye saath saath mein kabhi creative writing, kabhi critical writing, so ye mix and match chal raha hai.
1: Ji, Dr. Sunaina Jain, kyunki aaj bahut se sunne wale ye karyakram sun rahe hain, to jo students angrezi subject ke baad अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी?
0: माय टिप फॉर पीपल विद और विदाउट अ डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इफ दे वांट टू यू नो मेक देयर करियर इन दिस फील्ड, इज रीड अ लॉट, रीड वोरेशियसली, बहुत पढ़ो, और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए एक जापानीज सर टर्म है काइजन ना, सो दैट मींस इम्प्रूवमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। आप हर रोज अपने आप को कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चैलेंज कीजिए एंड यू विल बी सरप्राइज्ड एट व्हाट पोटेंशियल यू ऑल हैव इन यू। तो आप धीरे धीरे अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएं, लिखना चाहते हैं, इंग्लिश के फील्ड में एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपॉर्चुनिटीज, माई सजेशन इज रीड अ लॉट, वर्क ऑन योर सेल्फ, इम्प्रूव योर सेल्फ, एंड देर आर नो शॉर्टकट्स।
1: जी, डॉक्टर सुनैना जैन, आप आकाशवाणी चंडीगढ़ के स्टूडियो में आई, लक्ष्य कार्यक्रम में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सुनने वालों तक पहुंचाई। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत शुक्रिया सर मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: दोस्तों, आज लक्ष्य कार्यक्रम में हमारी मेहमान थी MCM DAV कॉलेज चंडीगढ़ की असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश डॉक्टर सुनैना जैन। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी प्रशांत वशिष्ठ ने। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अश्विनी कुमार। अब आज का लक्ष्य कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
2: लक्ष्य
1: अभी आप सुन रहे थे।

0: कार्यक्रम लक्ष्य FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि हमारे भट्टे पर जो नया मजदूर आया है उसके हाथ पैरों पर बहुत से दाग हैं। उसे इन पर चोट लगने से भी दर्द नहीं होता।
2: अरे ये तो कुष्ठ रोग का लक्षण है, तुम उसे अभी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाओ।
3: यदि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में कुष्ठ रोग का कोई भी लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं। यदि संदिग्ध व्यक्ति में कुष्ठ रोग पाया गया तो सरकार द्वारा सूचित करने वाले व्यक्ति को 250 रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
2: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
2: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
4: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
2: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
4: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
4: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
2: आकाशवाणी चंडीगढ़।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फरमाइश आपकी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं अनुरोध फिल्म के गीत से। इसे गाया है किशोर कुमार ने, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनना चाहा है कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश भत्ता, नीलम भत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश भत्ता। पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आर जाजोरिया। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाटी, विवान, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। सेक्टर 9 पंचकुला से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान और राधे भाविक ठींगरा। सेक्टर 11 पंचकुला से अतुल शर्मा। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुने अनुरोध फिल्म का ये गीत।

मखू फिरोजपुर से बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी और मुनीश बजाज, चाहलकला पंजाब से अमरजीत बंगा, परमिंदर बंगा, राजा बंगा, कुलविंदर कौर और अंबा चाहल, अपरा पंजाब से रूपलाल, सोमदत्त, कल्याण सोमनाथ, शुभम और अमन नाहर, करणवीर हाउस भुच्चो कैंचिया बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, सिमरन एकम, दमन और अभिजोत, गिदरबहा पंजाब से मनजीत तनेजा, प्रवीण तनेजा, पायल, बेबी हिनाशा और बेबी कैरवी, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां, सेक्टर 9 पंचकुला से रमेश गुलाटी, स्नेह गुलाटी, हिमांशु और देवांशु गुलाटी, आप सबकी फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं जानी दुश्मन फिल्म का गीत। आवाज है लता मंगेशकर की, गीत को लिखा है वर्मा मलिक ने, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर विर्क जयतेग विर्क और मीका विर्क चकला बाजार समाना से पप्पू राजा खुशदेल संगीता जिंदल और हसमुख जिंदल गांव कैरो जिला तरन तारण से गुरदर्शन लाल चलोतरा सुनीता शमी रजनी आकाशदीप अनहद और गुरु शब्द बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया नमन ढींगिया और अपार ढींगिया मुल्लापुर दाखा मंडी से राजेश जैन अरुणा जैन दीपक जैन गौतम जैन बिट्टू मट्टू संजीव जैन रसगुल्ला जैन बर्गर जैन नीलम जैन अरिहंत जैन और सुरभि जैन चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा आपकी फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं एक दूजे के लिए फिल्म का गीत आवाजें हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की

खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्परानी और आकाश कुमार, महज गेट नाभा से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी और गुरुमन्नत, सेक्टर 67 मोहाली से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप और अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, मुक्सर से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत, निशु और भूपेंद्र, आप सबकी फरमाइश पर अब हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू का गाया गीत। गीत को लिखा है फैज अनवर ने, संगीतकार हैं नदीम श्रवण और फिल्म का नाम है दिल है के मानता नहीं।

मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी और मोहम्मद जुबैर अंसारी, कोटवार नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, कुणाल राय और हैप्पी राय, दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, नांदेड़ से प्रभाकर जौंधके और आरती जौंधके, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बीबी अनिष्का और तन्मय, महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारणी, सूरज ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर, आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं हंसते जख्म फिल्म का गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीत को लिखा है कैफी आजमी ने।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फरमाइश आपकी। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल हैं। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
1: Women, we open their bank accounts.
2: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
1: Our members of 9 million self-help groups.
0: मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे।
0: इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज बचाव और फॉरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का 8वां विमान काठमांडू पहुंचा। तमिलनाडु में मदुरंतकम और धरपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 19 तारीख है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच शाम 8 बजे दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 43 अंक गिरकर 74,722 जबकि निफ्टी 21 अंक गिरकर 23,411 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।
5: लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं संगीतकार दत्ताराम की कुछ फिल्मी संगीत रचनाएं।

दत्ताराम की संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे प्रदीप का लिखा ये गीत, युगल स्वर मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर के थे। फिल्म का नाम था जिंदगी और ख्वाब।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर। इस संदेश से पहले आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम था कैदी नंबर 911। गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीतकार थे दत्ताराम। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। दत्ताराम के संगीत निर्देशन में असद भोपाली का लिखा गीत है, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम राका।

इस अंतराल के बाद यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं दत्ताराम के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा गीत, युगल स्वर लता मंगेशकर और मन्ना डे की फिल्म का नाम परवरिश।

0: हमको
1: प्यार अमर है हमारा, बोले ये दिल का इशारा।
2: ये स्वर है लता मंगेशकर और मन्ना डे के, फिल्म का नाम है संतान, गीत रचना हसरत जयपुरी की और धुन दत्ताराम की।

0: लता मंगेशकर और मन्ना डे को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था संतान। और इससे पहले हम आपको बता दें, आप सुन रहे थे टार्जन कम्स टू दिल्ली फिल्म का गाना। गाने वाले कलाकार आशा भोंसले और उषा मंगेशकर थे।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना। हम

0: सारे
1: आमंत्रित कलाकार हैं।
2: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
2: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
1: सुबह और शाम
2: 6:45 पर
1: सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संगीतकार दत्ताराम की कुछ संगीत रचनाएं।

भी आया बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

0: मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, सीधा दिल्ली जाऊंगा तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया।
1: यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था अब दिल्ली दूर नहीं। गीत को हसरत जयपुरी ने लिखा था और धुन बनाई थी दत्ताराम ने।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
3: मैं निकला ओ गटले
2: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
2: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेश।
2: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: फिल्म काला आदमी का गीत सुनिए, आवाज सुमन कल्याणपुर की। शब्दकार हसरत जयपुरी हैं और संगीतकार दत्ताराम हैं।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हमने सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म बालक से लिया है। गीत को पंडित भरत व्यास ने लिखा है। संगीतकार दत्ताराम।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में अभी आपने फिल्म बालक का ये गीत सुना और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। गीतकार हैं गुलजार धीनवी, संगीतकार दत्ताराम, स्वर मुकेश, सुमन कल्याणपुर, महेंद्र कपूर और साथियों के। फिल्म का नाम है श्रीमान सत्यवादी।

0: परखते नहीं जाते हम इस दिल से परखते हैं दिल इस दिल से परखते हैं दिल सच कहने के आदि है हम तो सतवादी है
1: जब इससे नहीं तो कुछ भी नहीं तो कैसी कही
0: एक बात कहूँ वल्ला ये हुस्न सुभान अल्लाह जब नाम लिया जी दिल थाम लिया तो कैसी कही
1: बस तुमने कदर की है क्या खूब नजर की है दिलदार मिले तो ऐसा मिले क्या बात कही।
2: दत्ताराम के संगीत निर्देशन में हम आपको अब इंदिवर का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है डार्क स्ट्रीट। गायिका है सुमन कल्याणपुर।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश दत्ताराम का संगीत, शैलेंद्र के बोल, आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। फिल्म का नाम है

0: इस दो गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है हमारे अब से लेकर आज रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में और फिर 1:10 पर पंजाबी में। प्रादेशिक समाचार शाम को भी प्रसारित होंगे, पहले 6:10 पर हिंदी में और फिर 6:20 पर पंजाबी में।

कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:15 पर और फिर शाम 5:05 पर। 1:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर।

शाम 5:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा। 6:30 पर आप सुन सकते हैं समाचार दर्शन। कार्यक्रम जयमाला प्रसारित होगा शाम 7:00। कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:47 पर और फिर कार्यक्रम सुर सांझ में रात 10:32 पर।

रात 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हवा महल। इसमें आज आप सुनेंगे झलकी मुबारकबाद। कार्यक्रम चित्रलोक होगा रात 8:15 पर। रात 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए।

रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। आज ये कार्यक्रम निर्माता एवं निर्देशक महबूब खां पर केंद्रित रहेगा। कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे रात 10:00। अभी आप सुन रहे थे आज रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

0: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में कुल 1,890,16,00,000 रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री ने 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के 35,00,000 से अधिक लाभार्थियों को 1,129,00,00,000 रुपए जारी किए। साथ ही दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 11वीं किस्त के रूप में 10,10,000 महिला लाभार्थियों को लगभग 212,00,00,000 रुपए और हर घर हर गृहिणी योजना के तहत 5,00,000 महिलाओं के बैंक खातों में जुलाई महीने की 19,68,00,000 रुपए की सिलेंडर सब्सिडी डाली गई। इसके अलावा राज्य सरकार ने दयालु योजना के तहत प्रभावित 4,520 परिवारों को 168,00,00,000 रुपए से अधिक की सहायता राशि प्रदान की है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत 670 लाभार्थियों को 311,25,00,000 रुपए ई कुबेर के माध्यम से जारी किए गए, जबकि भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत आलू, फूलगोभी और शहद का उत्पादन करने वाले 6,177 किसानों को 49,89,00,000 रुपए की राशि सौंपी गई। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकारें हर वर्ग को सशक्त बनाने का काम कर रही हैं।
2: हर महीने 10 तारीख को लाभार्थियों के खाते में पैसा डायरेक्ट

0: तो पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है, हमारा कमिटमेंट भी है। यह लाभार्थी को उसका लाभ पहुंचे। मोदी जी के नेतृत्व में जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां पर हम गरीब व्यक्ति को मजबूत और किसान, महिलाओं, युवाओं को सशक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज दीन दयाल लाडू लक्ष्मी योजना के तहत 10,10,000 बहनों के खाते में आज हमने 212,16,00,000 रुपए की राशि जारी की है।
1: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर विकसित भारत की तर्ज पर विकसित पंजाब का निर्माण किया जाएगा। चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर पंजाब से आए 500 से अधिक सरपंचों, जिला परिषद सदस्यों और किसान नेताओं को भाजपा में शामिल कराने के बाद उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंजाब की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य का युवा नशे की गिरफ्त में है और वहां विकास तथा जनहित के फैसलों वाली मजबूत सरकार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पंजाब में भाजपा सरकार आने पर युवाओं को नशे से दूर किया जाएगा, उद्योगों का पलायन रोका जाएगा, स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा और व्यापारियों में सुरक्षा का माहौल बनाया जाएगा। पंचकुला में डेंगू के 14 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह चौकस हो गया है। विभाग की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है और लोगों से अपने आसपास साफ सफाई रखने की अपील की गई है। पंचकुला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुक्ता कुमार ने बताया कि डेंगू के 14 मामले जिले के अलग अलग क्षेत्रों से हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले सूरजपुर क्षेत्र से हैं। उन्होंने बताया कि डेंगू की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें अलग अलग इलाकों में डेंगू के लार्वा की जांच कर रही हैं और लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। हरियाणा के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने राज्य के सभी राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2026-27 के लिए राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के अंतर्गत रिक्त सीटों पर मौके पर दाखिले की प्रक्रिया की अंतिम तिथि 19 सितंबर तक बढ़ा दी है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि संस्थान स्तर पर होने वाली ये दाखिला प्रक्रिया नए और पुराने आवेदनों की संयुक्त मेरिट के आधार पर होगी तथा इसमें कोई आरक्षण लागू नहीं होगा। ये दाखिला प्रक्रिया पूरी तरह से संस्थान स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिसके लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.admissions.itihariana.gov.in पर नया ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। कलायत पुलिस ने कैथल में खेतों से ट्यूबवेल की केबल और अन्य सामान चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

0: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपये की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
1: अगला गीत है फिल्म मेरे जीवन साथी से, किशोर कुमार की आवाज़ में। संगीत दिया है RD बर्मन ने और गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आइए अब सुनते हैं अनाड़ी फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, बोल है शैलेंद्र के और संगीतकार है शंकर जयकिशन।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत समाप्त होते हैं।
1: अरोड़ा प्लाईवुड
2: यहाँ है पीवीसी, डब्ल्यूपीसी, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और एचडीएचएमआर प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
1: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट एसयू 845 एनएसी मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
0: एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर। ये कार्यक्रम हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।
3: आजकल की भागदौड़ और तनावपूर्ण जिंदगी में होठों के पास आए हंसी क्या मजाल है, फिर भी हमें हर हाल में रस्मी तौर पर मुस्कुराना पड़ता है। बच्चे की तरह उन्मुक्त और खिलखिलाती हंसी न सही, फिर भी थोड़ा बहुत तो हंसा ही जा सकता है। आजकल घरों में लोग सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिविटी के लिए हंसती हुई मूर्ति या लाफिंग बुद्धा रखते हैं। क्या अच्छा हो अगर घर के सभी सदस्य थोड़ी देर साथ बैठकर हंस बोल लें। एक लाइन में हम कह सकते हैं कि मुस्कुराइए, आप विविध भारती के साथ हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर टैगलाइन दी है आपने कि मुस्कुराइए, हंसिए, आप विविध भारती के साथ हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हंसी भी कितनी प्यारी चीज है, न कोई भाषा चाहिए न कोई वजह, बस दिल में निकली एक छोटी सी हंसी सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। कुछ हंसियां पल भर की होती हैं लेकिन उनकी मिठास बहुत देर तक दिल में रहती है। शायद इसलिए कहते हैं कि खुशियां बांटने के लिए शब्द नहीं, एक सच्ची हंसी ही काफी होती है। तो हमारे जो श्रोता लिख रहे हैं कि हंसना बहुत मुश्किल काम है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हंसना इतना मुश्किल काम भी नहीं है जितना हमने इसे बना लिया है। क्योंकि हम तनाव अपने सिर पर ओढ़ लेते हैं, सारी परेशानियां, सारे तनाव, सारी मुश्किलात ओढ़े चलते रहते हैं और हंसना भूल जाते हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि जिंदगी में अच्छे दिन भी हैं, बुरे दिन भी हैं, रात भी है तो सुबह भी है। हम अपनी जिंदगी को किन अर्थों में लेते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है। आप हजार

और दुखों के साथ भी मुस्कुराकर जी सकते हैं, हंसकर जीवन को अपना कहते हैं ना कि बहुत ही सहज और सरल बना सकते हैं। देखिए इस गाने में दो सखियां किस तरह से एक दूसरे को छेड़कर ही हंस ले रही हैं, और ये हमारी जिंदगी में भी होता है कि जब हम अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, किसी अपने के साथ मिलते हैं, तो हंसी मजाक करना पसंद करते हैं। आइए सुनते हैं शैलेंद्र के बोल, SD बर्मन का संगीत, गीता दत्त और आशा भोसले की आवाजें। फिल्म का नाम है इंसान जाग उठा। आपको भी बताना है कि आप भी कभी हंसे हैं ऐसे किसी अपने के साथ।

ये आवाजें गीते दत्त और आशा भोसले की थी। फिल्म का नाम था इंसान जाग उठा। तो देखा आपने कितनी खूबसूरत तरीके से हंसती हैं दोनों नायिकाएं, है ना? अच्छा, कभी आप हंसते हैं इस तरह से? बताइएगा हमें कि आप किस तरह से हंसना पसंद करते हैं या हंसना पसंद ही नहीं करते। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही मज़ेदार गीत चल रहे हैं, हम हंस रहे हैं और हमारे घर के जो पेंटर हैं, कलर कर रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं। सच में आपकी आवाज़ में भी हंसी छलक रही है। अच्छा, आपके घर में काम चल रहा है और वो पेंटर भी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और हंस रहे हैं, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीत के बोल तो याद रह जाते हैं, मगर उन बोलों के बीच गूंजी हंसी अक्सर पूरी कहानी कह जाती है। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वैसे आपकी मधुर आवाज़ में हंसी की खनक मौजूद रहती है, जिसे हम

अक्सर महसूस करते हैं। शुक्रिया मेहरबानी हमारी तारीफ करने के लिए, लेकिन यहाँ कार्यक्रम के बारे में आपको बताना है कि आपको कौन से गाने पसंद हैं जिनकी तारीफ में आप कुछ लिखिए, या उस हंसी के बारे में लिखिए जो आपको बेहद पसंद है। जैसे कि एक श्रोता ने लिखा था कि उन्हें दिनेश हिंगू की हंसी बहुत पसंद आती है। अच्छा, आपको भी कोई ऐसी हंसी पसंद आती होगी किसी नायक या नायिका की, या अपने आस पड़ोस में, या अपने घर परिवार में, या किसी बच्चे की, है ना, खिलखिलाती कोई हंसी जो आपको आकर्षित करती है, उसका भी जिक्र आप कर सकते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, ये इस गीत के अंत में लता जी की खिलखिलाती हुई पावन और जादुई हंसी है, जो दुनिया की अनमोल मोती है। एक महज एक हंसी नहीं, स्वर साम्राज्ञी के कंठ से टपका पावन नूर है, दिल थम जाए ऐसा सुरूर है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, विश्व में अलग अलग लैंग्वेज है लेकिन हंसी की एक ही भाषा है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप भी तो बहुत प्यारे हंसी वाले गीत सुनवा रही हैं अपनी सुंदर हंसी के साथ, क्या बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि पड़ोसन मूवी का गीत, एक चतुर नार वाला गीत हमें बेहद अच्छा लगता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि किशोरदा के द्वारा गाए गए कुछ गीत जो हमें बहुत पसंद आते हैं।

सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, विश्व में अलग अलग लैंग्वेज है लेकिन हंसी की एक ही भाषा है। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि आप भी तो बहुत प्यारे हंसी वाले गीत सुनवा रही हैं अपनी सुंदर हंसी के साथ, क्या बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि पड़ोसन मूवी का गीत, एक चतुर नार वाला गीत हमें बेहद अच्छा लगता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि किशोरदा के द्वारा गाए गए कुछ गीत जो हमें बहुत पसंद आते हैं, चतुर नार, बाबू समझो इशारे, आके सीधी गिरी दिल पे। अरे वाह, इसमें तो किशोरदा ने दो आवाजें निकाली है ना, ये गीत तो बहुत ही सुंदर है। एक श्रोता लिखते हैं कि सत्या फिल्म का गीत तू मेरे साथ है, तू मेरे पास भी है, गुलजार साहब के बोल, लता जी की आवाज, हरिहरन की आवाज। और इसी फिल्म का अन्य गीत है सपने में मिलती है कुड़ी मेरी, इस गीत में भी हंसी सुनने को मिलती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म बेताब का गीत जब हम जमा होंगे, ये हमें बहुत पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे फिल्म चांदनी फिल्म का गाना टाइटल गीत जो कि चांदनी ओ मेरी चांदनी, और इसमें आपको यकीनन श्रीदेवी की जो हंसी है वो बहुत लुभाती है ना, क्योंकि इतनी खूबसूरती के साथ वो उस गीत में हंसती हैं और इस गीत को इतना खूबसूरत तरीके से उन्होंने गाया है कि हम सुनना बार बार पसंद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीतों में हंसी खोजना, वाह क्या बात है उद्घोषिका जी, आपका सादर नमस्कार, बड़ा रोचक विषय है आज का, और सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार, शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि आज विविध भारती सुरीला सफर पेज खोलने से पहले मैं अनुमान लगा रही थी कि आज आप ही आएंगी, और ये देखिए आप आ भी गई। आपकी खनकदार आवाज का इंतजार रहता है, आज तो अलग ही प्रकार का आनंद रहेगा गाना सुनने में, बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीत में हंसी आना ऐसा है जैसे किसी बेहद संजीदा पेंटिंग के एक कोने में किसी बच्चे ने चुपके से रंग बिखेर दिया हो, क्या बात है। ये हमें याद दिलाती है कि माइक के उस पार कोई मशीन नहीं बल्कि धड़कता हुआ इंसान खड़ा था जो गाते गाते उस लम्हे में खो गया। ये हंसी गीतों को अमर बनाती है क्योंकि सुर भले ही कानों को छूकर लौट जाएं, लेकिन वो बेसाख्ता खिलखिलाहट सीधे दिल में उतर आती है, क्या बात है। हमारे श्रोता भी कितने शायराना अंदाज में अपनी बात लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सभी आपके साथ मिलकर हंसते मुस्कुराते हुए कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी खुशी जाहिर करेंगे, हंसना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है, सबसे ज्यादा फरमाइशी गीत भंवरे ने खिलाए फूल, ये गाना आपको बेहद पसंद है। अच्छा, यहाँ लता जी जब हंसती हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो बहुत अच्छे गाने सुनने को मिलने वाले हैं जिसमें हंसी मुस्कुराहट सभी शामिल होने वाला है। मुझे लगता है एक गाना इसमें मुझे याद आ रहा है कि जय जय शिव शंकर, जिसमें बहुत ही हंसाया जाता है, और एक बात कहो गर मानू तुम, ये गाना भी हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए देखिए आपने इस गीत को पसंद किया, और हमारा अगला गाना यही है हमारी लिस्ट में। आरडी बर्मन का संगीत है, गुलजार साहब के बोल, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम गोलमाल। बहुत हंसना हंसाना लता जी का इसमें भाता है ना, आप भी हंसिएगा ना इस गीत के साथ।

जी तो बताइए, गीत सुनने के बाद आप भी मुस्कुराए कि नहीं? और कभी कभी पता है ऐसा भी होता है ना कि हम खुद से ही बात करते हैं अकेले में और फिर मुस्कुराने लगते हैं या हंसने भी लगते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा बहुत बार, जब आप अकेले बैठे होते हैं या आराम कर रहे होते हैं या सोने जा रहे होते हैं तो कोई बात याद आ जाती है अपने दोस्तों की या अपने परिवार वालों की या किसी खास की, और हम अकेले में हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। आपके साथ कभी ऐसा होता है? बताइएगा। वही एक श्रोता लिखते हैं कि कटी पतंग का प्रसिद्ध गाना है मेरा नाम है शबनम और प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। ये गाना जो आशा भोसले की चुलबुली और नटखट हंसी गाने की शुरुआत और अलग अलग अंतरा के बीच पर जो नेचुरली पिरोई गई है वो बहुत अच्छा लगता है और जिसे महान गायिका आशा भोसले ने अपनी बेहतरीन आवाज में गाया है। बिल्कुल, ये गाना इतना मुश्किल है और इसमें हंसना तो और भी ज्यादा मुश्किल, लेकिन हाँ इसे आपने समझा सबसे बड़ी बात यह है। एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे खूबसूरत और प्यारी छोटे बच्चों की हंसी होती है। कहते भी हैं कि दूर है मंदिर तो क्या हुआ, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। क्या बात है। वे एक श्रोता लिखते हैं कि जब भी मेरी धर्म पत्नी और मैं किसी भी होटल की या बिल्डिंग की लिफ्ट में अकेले होते हैं तो फिल्म एक दूजे के लिए का ये गीत मेरे जीवन साथी जरूर सुनते हैं, सुनाता हूँ। धर्म पत्नी हंस देती है और कहती है झूठा कहीं का, और मैं भी हंस देता हूँ। बिल्कुल, जीवन में ये रोमांस होना बहुत ज़रूरी है। जब आप जीवन में कहीं ना कहीं रोमांचित होते हैं, रोमांस रखते हैं, तो ज़िंदगी और भी आसान हो जाती है। एक श्रोता लिखते हैं कि सभी को दिलीप कुमार और लीना चंदावरकर पर फिल्माया गया गाना सारे शहर में आपसा कोई नहीं, आशा जी की हंसी बहुत ही प्यारी हंसती हैं और हम भी हंसते हैं, और क्या गजब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी, इसमें आशा जी की जो हंसी है वो बाकमाल है। बिल्कुल सही कहा आपने, फिल्म लव स्टोरी का जो ये गाना है बहुत ही चुलबुली और शरारत भरी हंसी है उसमें आशा जी की। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय बहुत मजेदार है, और एक श्रोता ने कहा है कि मुझे तो काजोल की हंसी और मुस्कुराना, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे मेरी 8 महीने की बेटी की हंसी सबसे ज्यादा पसंद है। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किशोरदा का गाना है चिल चिला के कजरी सुना, ये गीत सुनकर हंसी आई जाती है और इसके बोल भी बहुत शानदार है। वहीं एक श्रोता को हेमा मालिनी जी की हंसी देखने और सुनने में बहुत अच्छी लगती है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे तो हंसना बहुत पसंद है और सबको हंसाने में बहुत मजा आता है। स्कूल के दिनों में सब मुझे हंसमुख अजमेरा नाम से संबोधित करते थे क्योंकि सभी को मैं अक्सर हंसाया करती थी। बहुत अच्छी बात, जब भी तो कहते हैं कि हंसो और हंसाओ। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा और आगे इस सफर में। शंकर जयकिशन का संगीत सुनते हैं, हसरत जयपुरी के बोल हैं ये, आशा भोसले, मुबारक बेगम और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है आरजू। हाँ, इस गाने के आरंभ में ही हंसी आपको सुनाई देती है ना?

हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज की थीम बहुत ही खूबसूरत है। गीतों के बीच गायक है गायिका की वो कुदरती और बेसाख्ता हंसी गाने में एक अलग ही रूह और ताजगी भर देती है। आज के इस खास शो में गीतों के बीच खिलखिलाती हंसी और छेड़छाड़ वाले कई सदाबहार नगमे आज आपके साथ हम सुनने वाले हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वार्तालाप वाले गीत तो बहुत ऐसे सुने हैं, लेकिन उनमें खिलखिलाहट वाले गीतों को ढूंढकर उन्हें प्रस्तुत करने का प्रयोग ये अनूठा है आपका, और इस दृष्टिकोण से ही ये इबारत आपकी प्रशंसनीय है। और आगे आपने डैश डैश डैश और क्वेश्चन मार्क डाल दिया है, और क्या। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे पतिदेव का सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है, उनके पांच में से चार बातें तो चुटीली ही होती हैं, अक्सर अकेले में उनकी बातें याद करके मैं हंस पड़ती हूँ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मधुबाला की मुस्कुराहट और हंसी बहुत खूबसूरत और कातिलाना लगती है। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मुस्कुराती हूँ मैं कई बार, और जब नींद से जाग जाऊं तो याद आता है कि अरे ये तो सपना था, बस इसी बात पे हंसी आ जाती है। वहीं एक श्रोता को आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया वाला गाना बहुत पसंद आता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मैं आजकल अपनी बेटी के घर में हूँ, मेरी दो छोटी सी नातिने हैं, दोनों आपस में खूब खेलती हैं, खूब खिलखिलाकर हंसती हैं, और मुझे बहुत मजा आता है उनके साथ। बिल्कुल सही कहा आपने, बच्चों के साथ खिलखिलाना तो बहुत ही अद्भुत एहसास है ये। और आइए अब सुनते हैं आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी के बोल, युगल स्वर आशा भोंसले और किशोर कुमार के, फिल्म का नाम है बुलेट। इसमें देखिएगा कहाँ हंस रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले।

0: है,
1: यहाँ है,
0: किधर है,
1: उधर है,
0: ऊपर है,
1: नीचे है,
0: कहाँ है,
1: यहाँ है।
0: अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है भाई,
1: कोई भी नहीं है।

0: थी
1: पर मुझसे कहा होता मैं रजामंद थी।
2: शर्म हया की दीवार बुलंद थी। अच्छा ये सब छोड़ो पर इतना तो सोचो कि मैं भी चुप और तुम भी चुप तो किसने मचाया ये शोर? कौन है? कौन कौन भाई?
1: अरे ये तो पर्दा है।

0: अकेले
1: धड़कन को छेड़ा ना दिल से ही खेले, काश आज रात हम होते अकेले।
2: होते जो अकेले तो कयामत हो जाती, बाद में जो होता पर मोहब्बत हो जाती।
1: कैसी तुम्हें बड़ा बेशरम है, देखो फिर आया हमें कर रहा है ये बोर कौन है।
3: अरे कौन है रे, कौन है रे?
2: ये तो मैं हूँ भाई। चोरी चोरी छुपके।

0: तो कोई भी
1: नहीं है।
2: जी तो देखा आपने, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन सामने हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और लगातार इस सफर में हमारे साथ बने हुए हैं और हमें लिख भी रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गीत के बीच में सुनाई देने वाली ये हंसी जैसे किसी बंद किताब के पन्नों के बीच अचानक कोई मुस्कुराता हुआ फूल मिल जाए वैसी होती है। ये हंसी गीत का हिस्सा होकर भी गीत से कहीं ज्यादा कह जाती है। कभी प्रेम की शरारत, कभी मिलन की खुशी, तो कभी उस पल की अनायास खिली मासूमियत। सुर कानों तक पहुंचते हैं मगर ऐसी हंसी सीधे दिल में उतर आती है और बरसों बाद भी वही चेहरे, वही दृश्य और वही खूबसूरत पल याद आ जाते हैं। सुरों के इस सफर में हंसी की छोटी सी झनकार जैसे बीते हुए पलों की खिड़की खोल देती है और तब महसूस होता है कि कुछ गीत सिर्फ आवाजों से नहीं, मुस्कुराहटों से, खिलखिलाहटों से और भी यादगार बन जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, तो यादगार रहेगा आज का ये सफर। और अब इस सफर से मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। जीवन एक निरंतर यात्रा है, इसमें हमें किसी एक उपलब्धि पर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि हर बात से सीखते हुए आगे बढ़ते हुए और खुद को बेहतर बनाते हुए जीवन का सफर तय करना है। जो व्यक्ति रुक जाता है उसकी प्रगति भी रुक जाती है, जबकि जो निरंतर प्रयास करता रहता है वो नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। जीवन में निरंतरता ही सफलता, आत्मविश्वास और विकास की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। कोई भी बड़ा लक्ष्य एक दिन में पूरा नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों को लगातार दोहराने से हासिल होता है। निरंतर और नियमित मेहनत से कठिन लक्ष्य भी आसान हो जाते हैं।

दोस्तों, लगातार प्रयास करने से हमारा अपनी क्षमता पर विश्वास बढ़ता है, समय का सही उपयोग होता है, नियमित काम करने से टाल मटोल की आदत भी कम हो जाती है, हम चुनौतियों का सामना करना सीख जाते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहने की शक्ति हमें मिलती रहती है, हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है और इसमें निखार भी आता है। निरंतर सीखने और सुधार करने से हम मानसिक, सामाजिक और व्यवसायिक रूप से भी आगे बढ़ पाते हैं।

निरंतरता वो शक्ति है जो साधारण प्रयासों को असाधारण परिणामों में बदल देती है। यदि हम प्रतिदिन ईमानदारी और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते रहें, तो सफलता निश्चित रूप से हमें मिलती है। प्रकृति भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। नदियाँ कभी बहना नहीं छोड़ती, सूर्य हर रोज उदित होता है और ऋतुएं निरंतर बदलती रहती हैं। कभी सोचा है, यदि कोई नदी बहना छोड़ दे तो उसका पानी ठहर कर दूषित हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यदि मनुष्य प्रयास करना छोड़ दे तो उसके ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास का विकास रुक जाएगा। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, असफलताएं और निराशाएं हमेशा ही नया कुछ सिखा कर जाती हैं, भविष्य में बेहतर बनने का अवसर भी देती हैं। इसीलिए इसे अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत मानना चाहिए। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, वही वास्तव में प्रगति कर पाता है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने दिवंगत आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अमिट योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने भी आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में किए जा रहे प्रभावशाली कार्यों तथा भारत एवं विदेश में आगे की संभावनाओं पर चर्चा की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमार के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की।

0: और प्रभावशाली वार्षिक फिनटेक सम्मेलनों में से एक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का सातवां संस्करण मुंबई में चल रहा है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है पोटेंशियल टू इम्पैक्ट, एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय, आपस में जुड़े और वैश्विक सिस्टम। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आज तीसरा दिन है। एजेंटिक एआई एंड द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इन अ बिलियन यूजर नेशन विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि भारत में बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे और यूआईडीएआई के पूर्व चेयरमैन नंदन नीलेकणी एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। शाम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कनेक्टेड इंडिया एम्पावर्ड फाइनेंस बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदनॉम घेब्रेयेसस ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र के दौरान हुई। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर टेड्रोस ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के करीब 160,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए लोगों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर की जांच की सुविधा मिल रही है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की भी सराहना की जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि टीकाकरण और संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिली है। उन्होंने भारत के तपेदिक उन्मूलन, चिकित्सा उत्पादों के बेहतर नियमन और WHO को समर्थन देने के प्रयासों की भी सराहना की। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किया। एक रिपोर्ट।
4: ये प्रतिबंध ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली, क्वाडकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान, पैराग्लाइडर, पैरामीटर, हैंग ग्लाइडर, मैक्रोलाइट विमान, छोटे संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और विमान से पैरा जंपिंग सहित कई हवाई प्लेटफार्मों पर लागू होता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, VIP और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसी हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने ये भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ब्रिक्स सम्मेलन 12 और 13 सितम्बर को आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार दो दिन के गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि है। श्री कुमार ने कहा कि वे राज्य के बूथ लेवल अधिकारियों, BLO और चुनावी साक्षरता क्लब ELC के सदस्यों से बातचीत करेंगे। श्री कुमार आज शाम अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रमुख नागरिकों के साथ भारत में चुनाव, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विषय पर संवाद करेंगे।
5: गुजरात की पावन भूमि पर आने पर मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि भी और कर्म भूमि भी रहा है गुजरात। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी और गुजरात के कर्म

0: बूथ लेवल ऑफिसर्स, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल, छात्र और छात्राओं के साथ आज और कल विभिन्न कार्यक्रमों में संवाद करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 270 सदस्यों वाली पूर्ण राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सूची में प्रमुख स्थान दिया है और उन्हें तमलु संगठनात्मक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमिलनाडु में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमिलगा वित्तीय कषगम टीवीके के नेतृत्व वाले सेकुलर सोशल जस्टिस विक्ट्री गठबंधन ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गठबंधन ने धरपुरम से सत्यबामा और मधुरंधकम से मरगथम कुमारविल को मैदान में उतारा है। विपक्षी डीएमके ने मधुरंधकम से पारंथमन और धरपुरम से एस सुगन्या को उम्मीदवार बनाया है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव के लिए नामांकन 16 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी और 19 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1377 हो गई है। 5000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि सबसे अधिक मौतें चितवन में हुई, जहां 364 लोगों की जान गई। प्रभावित क्षेत्रों से 13600 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। इस बीच भारत ने विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है, जिसके तहत 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। कई नदियों का जलस्तर घट रहा है। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक, बागमती समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात में थोड़ा सुधार हुआ है। जलस्तर में कमी के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य और तेज कर दिए हैं। पटना, वैशाली, सारण, मुंगेर, भागलपुर, अरवल समेत 14 जिलों में इस समय 40 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से पीड़ित है। विभिन्न स्थानों पर लगाए शिविरों के माध्यम से भोजन, मेडिकल सहायता और राहत सामग्रियां प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है। वहीं लगभग 700 ग्रामीण सड़कों के जलमग्न हो जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने सड़कों की स्थिति पर निगरानी बनाए रखने और पानी निकलते ही इन्हें तत्काल ठीक करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से निरीश्री।
1: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। उत्तरी ओडिशा के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। विभाग ने आज मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से जहाजों पर किए गए सबसे बड़े हमलों के बाद आपूर्ति में और अधिक व्यवधान की आशंका जताई जा रही है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.1% बढ़कर 101 अमरीकी डॉलर और 86 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 74,804 पर, जबकि निफ्टी 12 अंक की बढ़त के साथ 23,443 पर था। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल अनीता विलियम से मुलाकात की। अधिकारियों ने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और संयुक्त रूप से काम करने की क्षमता बढ़ाने

0: के उपायों पर चर्चा की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक क्षमताओं, प्रस्तावित रक्षा खरीद और दोनों नौसेनाओं के बीच अधिक परिचालन सहयोग के अवसरों पर विचार विमर्श हुआ। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। भारत ने महिला हॉकी जूनियर विश्व एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को हराया। भारत की पूजा मलिक ने हैट्रिक लगाई, जबकि सनिका चंद्रकांत माने, मधुसिदा सुप्रिया और रोशनी एंड ने दो दो गोल किए। भारत 12 सितंबर को सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से खेलेगा। अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में कल बेन शेल्टन का मुकाबला फ्रांसिस टियाफो से होगा। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में पिछले वर्ष के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त टियाफो ने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशेलसन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

ప్రస్తుతే కార్యక్రమం సదాబహార్ నగమే. इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है. कार्यक्रम का पहला गीत यानी इस कार्यक्रम का पहला गीत पंडित भरत व्यास का लिखा हुआ, कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ सुनिए. गायिका हैं लता मंगेशकर और फिल्म का नाम है बेदर्द जमाना क्या जाने.

ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था बेदर्द जमाना क्या जाने। कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोंसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ, फिल्म का नाम जाली नोट। शब्दकार राजा मेहदी अली खान और संगीतकार ओपी नैयर।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर। फिल्म काला पानी का दो गाना सुनिए, स्वर आशा भोंसले और मोहम्मद रफी के, शब्द मजरू सुल्तानपुरी के हैं और तर्ज सचिन देव बर्मन की है।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, फिल्म का नाम एक फूल चार कांटे। बोल हसरत जयपुरी के हैं और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है बरसात की रात, गीत साहिर लुधियानवी का है और धुन रोशन की।

जहन में हुस्न की ठंडक का सर जागता है, आँच देती हुई।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: और आइए अब सुनते हैं नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी की रचना, स्वर लता मंगेशकर और साथियों की। फिल्म का नाम है मुगले आजम।

लता मंगेशकर और सखियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था मुगले आजम। गीतकार शकील बदायूनी थे और संगीतकार थे नौशाद साहब। गीतकार शकील बदायूनी थे। और आइए अब सुनते हैं इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। यह आवाज लता मंगेशकर की है। फिल्म का नाम है बिंदिया।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था बिंदिया। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों की और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आरती, आज तुम भी हो तो मेरे साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
2: मंजरी, आपको, सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: और बताओ कैसी हो?
2: बिल्कुल ठीक।
1: आज हमारे क्या क्या विषय हैं?
2: विषय सीधे विषय पे आते हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: तो आज हम विषय लेकर आए हैं घर की सफाई, क्योंकि त्योहारों का मौसम है मंजरी जी। तो ऐसा होता है ना कि जब त्योहारों का मौसम होता है तो साफ सफाई ये तो लगा ही रहता है, तो किस तरीके से हम घर की सफाई में लगते हैं और आसानी से सब लोग मान जाते हैं सदस्य घर की सफाई करने के लिए, या फिर नोक झोंक थोड़ी बहुत होती है, तो उस बारे में हम चर्चा करेंगे।
1: बहुत और अच्छा
2: आप लोग
1: विषय
2: है ना, हम अपने श्रोताओं से कहेंगे ना कि वो लोग भी हमें बताएं कि उनके घर में जब साफ सफाई होती है तो सारे लोग अपने आप अपना परिश्रम करने को तैयार हो जाते हैं, या फिर कुछ कहना पड़ता है, नोक झोंक होती है, रूठना मनाना चलता है।
1: बिल्कुल। और इसी के साथ साथ उपयोगी टिप्स में बातें होंगे कि जब बनानी हो नई

0: भी, तो इसके अनुभव भी आप लिखें कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, और या क्या
1: हाँ
0: तैयारियां करती हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। और मुझे कुछ कहना में है कि बस 5 मिनट बनाम घंटों की बातें,
1: जो अक्सर देखने में आता है
0: आता क्या हम लोग खुद ही करते हैं।
1: हाँ, तो
0: चलो
1: कहते ना
0: हमारे सभी साथी छोटी छोटी सी यादों को ताजा
1: बिल्कुल
0: करेंगे,
1: कि
0: है ना।
1: आप ऐसे किस इंसान को जानते हैं या किसको जानते हैं, हो सकता है आपको पड़ोसी ही हो कि
0: बिल्कुल
1: जो 5 मिनट कहते हैं बस सब हम जा ही रहे हैं, लेकिन फिर घंटों चलती रहती हैं वो बातें, तो उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही आज हम लेकर आए हैं कहानी पद्मश्री के अंतर्गत जोधैया बाई बैगा, जो कि कला क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे।
0: और आज है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बहुत ही गहन विषय है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन उससे पहले हम लोग सुनते हैं एक गीत।

0: सारे
1: आमंत्रित कलाकार हैं।
2: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
3: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
2: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
4: तो आरती, आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के बारे में। और आज हम एक ऐसे दिवस की बात कर रहे हैं जिसके साथ एक ऐसा शब्द जुड़ा है जिस पर बात करना आसान नहीं लेकिन बात करना बेहद ज़रूरी है। ये दिवस है आत्महत्या रोकथाम दिवस। आत्महत्या शब्द ही बहुत दुखद है और इसलिए इस बात को गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जागरूकता दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और जब भी कभी ऐसी दिमाग में किसी के भी ये बात आती है कि हम अपने जीवन को समाप्त कर लें तो उनको सोचना चाहिए कि आपका जीवन जो मिला है जीने के लिए वो कितना महत्वपूर्ण है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक बार विचार मंथन करें फिर आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं, अपनी समस्याएँ जो है वो किसी और को बता भी सकते हैं।
5: बिल्कुल। और इस दिवस को जागरूकता दिवस बनाने की शुरुआत हुई साल 2003 में और अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम संघ द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के सहयोग से की गई थी। और इस दिन का उद्देश्य है लोगों में जागरूकता बढ़ाना, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बातचीत को प्रोत्साहित करना और ज़रूरत के समय मदद लेने के महत्व को समझाना कि ऐसा नहीं है कि आप कमज़ोर हो जाएंगे अगर आप किसी की मदद ले लेंगे, बल्कि मदद लेने से क्या होता है ना कि हमारी जो समस्या है जो हम उसको उस समय हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं किसी परेशानी की वजह से, तो सामने वाला हो सकता है हमारी परेशानी का हल ढूंढ के हमें दे दे।
4: बिल्कुल आरती। और कभी कभी जीवन में परेशानियाँ इतनी बड़ी लगने लगती हैं कि इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगता है और ऐसे समय में सबसे ज़रूरी है कि आपस में बातचीत की जाए। अगर कोई व्यक्ति जो है लगातार उदास दिखाई दे और लोगों से दूर रहने लगे, अलग अलग सा अपने आप को रखे, निराशा की बातें करे या कहे कि वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा है, तो उसकी बात को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे वो घर के बच्चे हों चाहे कोई भी हो व्यक्ति
5: आपके साथ का हो,
4: हाँ मित्र भी हो सकता है। तो कभी भी कुछ ऐसा आपको या उदास भी आपको दिख रहा है तो आप उसकी उदासी को दूर करने के लिए उससे घुले मिले, उससे दिल की बात जानने के लिए आगे आइए जिससे वो अपनी बातों को आपसे कह सके और आप उसको ये विश्वास दिलाइए कि भाई तुम्हारी बातें मैं अपने तक ही रखूंगा, है ना।
5: बिल्कुल। और किसी को भी अगर कोई अपनी परेशानी आपको बता रहा है तो उसे डांटने या उसकी परेशानी को छोटा बताने के बजाय, कभी कभी ऐसा होता है ना कुछ लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, तो ऐसा करने के बजाय उसकी बात को धैर्य और ध्यान से सुनना चाहिए, उसे इस बात का विश्वास दिलाना चाहिए कि वो अकेला नहीं है और हर परेशानी का हल शांति और समझदारी के साथ निकल सकता है। किसी की मदद करने के लिए हमेशा बड़े बड़े समाधान ज़रूरी नहीं होते, कभी कभी किसी की बात को ध्यान से अगर हम सुन लेते हैं ना तो वही बड़ी बात हो जाती है, या फिर हम उसके लिए कुछ थोड़ा सा समय निकाल लें, उसके साथ थोड़ा सा समय बिताएं और उसे ये महसूस कराएं कि वो अकेला नहीं है, तो बहुत मायने रखती है।
4: बिल्कुल सही बात है, ऐसे में साथ बहुत ज़रूरी होता है किसी का भी। और इसीलिए जब भी ऐसा लगे कि परेशानियों से जूझना मुश्किल हो रहा है, माता पिता, परिवार के सदस्य, शिक्षक, मित्र या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से आप तुरंत बात करें। और अगर हमारी जानकारी में कोई मानसिक तनाव से गुजर रहा है तो कुछ सरकारी व निशुल्क हेल्पलाइन सेवाओं का संपर्क भी किया जा सकता है।
5: बिल्कुल, आप संपर्क कर सकते हैं और आप इंटरनेट पर इसको सर्च कर सकते हैं। और साथ ही वर्ष 2024 से लेकर 2026 तक के लिए इस दिवस की आधिकारिक थीम तय की गई है जो कि है आत्महत्या पर धारणा को बदलना, और जिसका उद्देश्य इसके इर्द गिर्द के सामाजिक कलंक को कम करना और खुलकर बातचीत को शुरू करना है, जिससे कि बातचीत होने से हमारा तनाव भी कम होता है और हम अपनी परेशानियों का हल भी आसानी से ढूंढ सकते हैं।
4: बिल्कुल। और हम लोग सुन लेते हैं गीत।

0: निकल जाओ इस घर से, तुम्हें कुष्ठ रोग है। अगर तुम इस घर में रही तो हम सबको भी कुष्ठ रोग हो जाएगा।
1: अरे भैया, आप भाभी को घर से क्यों निकाल रहे हैं? इससे तो आपका परिवार टूट जाएगा। क्या आपको पता नहीं है कि कुष्ठ रोग अन्य बीमारियों की तरह ही है? इसका इलाज MDT से संभव है। भाभी को आज ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं और वहां उनका इलाज करवाएं।
2: स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
3: एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
4: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
5: तो आरती, आज हम बात करने वाले हैं कहानी पद्मश्री की, जोधैया भाई बैगा, जो कला से संबंधित हैं। और मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की रहने वाली जोधैया भाई ने जीवन के 6 दशकों से अधिक समय तक बेहद गरीबी और कड़े संघर्ष का सामना किया। 60 वर्ष की उम्र पार करने के

0: बाद उन्होंने रंग और कूची थामी और देखते ही देखते कला जगत का एक बड़ा नाम बन गई।
1: बिल्कुल। और जुधैया बाई, जिन्हें लोग जुधैया अम्मा के नाम से भी जानते हैं, उन्हें बैगा चित्रकार के रूप में प्रसिद्धि मिली है। वो आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाना माना नाम है। एक मजदूर से चित्रकार तक पहुंचने का जुधैया बाई का जो मार्ग था वो बहुत ही संघर्ष भरा रहा।
0: बिल्कुल। और जब जुधैया बाई के पति मैकू बैगा का निधन हुआ, उस समय जुधैया बाई के दो मासूम बच्चे उनके साथ थे और तीसरी संतान गर्भ में थी। अपने बच्चों के लालन पालन के लिए मजदूरी करते हुए जुधैया बाई ने अपनी तीसरी संतान एक बेटी को जन्म दिया।
1: बिल्कुल। और बेटी के जन्म के साथ ही जुधैया बाई को कमजोरी ने घेर लिया। तीन बच्चों की जिम्मेदारी ने उन्हें अपने ही शरीर की कमजोरी के साथ लड़ने को विवश कर दिया था। परिणाम स्वरूप बेटी के जन्म के साथ ही वो एक बार फिर जीवन के रण में दुखों से संघर्ष करने के लिए उतर पड़ी थी।
0: और पीठ पर मासूम बच्ची को बांधकर जुधैया बाई गाय भैंस बकरी चराने जाती थी। जंगल में वापसी में लकड़ियां बिन कर लाती थी और जिसका बोझ भी उनके अपने सिर पर होता था। गांव में लोगों के घरों को लीपना, आंगन और दीवारों को गेरू से सजाना, खेत में मजदूरी करना, यही उनके जीवन की भाग दौड़ थी। यानी बहुत ही संघर्ष भरा उनका
1: बहुत
0: दिन
1: ज़्यादा।
0: था।
1: बिल्कुल। और संघर्ष से जूझ रही जुधैया बाई के जीवन में बदलाव तब आना शुरू हुआ जब आशीष स्वामी ने लोढ़ा गांव में अपना स्टूडियो जगन तस्वीर खाना खोला और स्थानीय लोगों को अपने यहाँ काम पर रखा, जिसमें जुधैया बाई का बड़ा बेटा भी शामिल था। एक दिन आंगन लीपने के लिए वो अपनी माँ जुधैया बाई को स्टूडियो ले गया था और साथ ही जुधैया बाई ने अपनी ही शैली में उस आंगन को ऐसे लीपा और उसे गेरू और छुई मिट्टी से ऐसे सजा दिया कि उसे देखकर आशीष स्वामी इतना खुश हुए कि उन्होंने जुधैया बाई जैसी बुजुर्ग महिला से, और ये लेकिन साथ ही साथ वो उनसे काम कराने पर थोड़ा नाराज भी हो गए थे कि आपने इतनी उम्र दराज महिला से कैसे काम कराया। और इस दौरान उन्होंने सुरेश बैगा ने, जो उनके बेटे थे जुधैया बाई के, उन्होंने बताया कि उनकी माँ अभी भी मजदूरी करती हैं
0: और आशीष स्वामी ने उन्हें अम्मा करके संबोधित किया और कहा कि अब से अम्मा मजदूरी नहीं करेगी बल्कि चित्र बनाएंगी। जुधैया बाई ने बताया कि जब आशीष स्वामी ने उन्हें चित्र बनाने का काम दिया तो वे घबरा गई थी। उन्होंने पहले तो साफ मना कर दिया कि ये लिखने पढ़ने का काम उनसे नहीं हो पाएगा। तब आशीष स्वामी ने उन्हें उनसे दीवार पर चित्र बनवाया। बाद में लकड़ी और सूखे कुम्भड़े, लौकी और तरोई पर चित्र बनवाए। जब उन्हें चित्र बनाने के लिए कागज़ दिया तो वे डर गई कि कागज और रंग दोनों ही खराब हो जाएगा, लेकिन आशीष स्वामी ने उन्हें थोड़ा डांट कर चित्र बनाने के लिए कहा।
1: बिल्कुल। और जब गुरुजी की डांट पड़ने लगी तो 70 साल की आयु के करीब पहुंच चुकी जुधैया बाई किसी मासूम बच्चे की तरह अपने घर में छिप जाती थी और उन्होंने उनके जो गुरुजी थे उनके घर जाते और उन्हें जबरन अपने स्टूडियो ले आते। उनकी पेंटिंग्स में बैगा समुदाय की परंपराएं, लोक कथाएं, देवी देवता और विशेष रूप से प्रकृति, जैसे कि महुआ का पेड़, जंगली जानवर और पक्षी एकदम जीवंत रूप में दिखाई देते थे।
0: और उनकी बनाई पेंटिंग्स को देश विदेश में बेहद पसंद किया गया। उनकी कलाकृतियों की प्रदर्शनी भोपाल और दिल्ली के अलावा पेरिस, फ्रांस और मिलान, इटली जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहरों में भी आयोजित की गई। जब वर्ष 2022 में जुधैया बाई को राष्ट्रपति से नारी शक्ति सम्मान मिला था, तब स्वर्गीय आशीष स्वामी की तस्वीर के सामने बैठकर जुधैया बाई काफी देर तक रोती रही थी।
1: बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने उन्हें सिखाया था
0: जी,
1: उस जगह तक पहुंचाया था। फिर वर्ष 2023 में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 15 दिसंबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में जुधैया बाई बैगा की उनके पैतृक गांव लोरहा उमरिया में निधन हो गया। उनका जीवन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि हुनर और सफलता के लिए उम्र कोई बंधन नहीं होता है।
0: बिल्कुल सही कहा आरती। और देखो जहाँ पर वो रह रही थी तो आसपास की जो चीज़ें उपलब्ध थी, जैसे तरुई बताया है उन्होंने, है ना, कुम्भड़ा है, तो इन चीज़ों पे वो चित्र बना रही थी। तो एक कहते हैं हाथ भी साफ हो जाता है और आपकी जो कला है वो धीरे धीरे निखर के सामने आती ही आती है। और जब उनके सोचो अगर चित्र वो देखो तो कैसा लगेगा ना कि कितनी सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं उसमें।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: और कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हमारे पास ये साधन नहीं है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एक बहाने की तरह से ली जा सकती हैं।
0: बिल्कुल सही बात।
1: क्योंकि अगर हमारे अंदर एक करने का जज्बा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
0: भी हम सोचते हैं ना कि पहले इतने सारे ब्रश खरीद के लाएंगे या हमारे पास पूरे रंगों का डिब्बा होना चाहिए, तो इसकी जरूरत नहीं। अगर आपके पास दो रंग भी हैं तो आप उससे भी अपनी कला को शुरू कर

0: सकते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: देखिए उन्होंने प्रकृति से ही कला को लिया,
0: जी,
1: प्रकृति से ही रंगों को लिया और प्रकृति के समान पे ही उसको उसका उपयोग किया।
0: प्रकृति में तो कितने सारे रंग हैं और
1: बिल्कुल
0: कितनी सारी कला है। हम आसपास नजर दौड़ाएंगे तो लगेगा हम ये पत्ती भी बना लें, ये फूल भी बना लें, है ना। तो
1: बिल्कुल
0: जब तस्वीरें अच्छी बन जाती हैं तो उनको लगता है कि भाई हम इसको अपने पास एकदम संभाल के रख लें, है ना। तो चलो इसी
1: एक
0: के
1: गीत
0: साथ
1: सुन लें।

0: तो आरती तस्वीर को इतनी अच्छी होती है ना, लगता है कि उसको सीने से लगा के रख ले, है ना।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जब बात आती है कि घर में साफ सफाई की बात आती है, तो
1: तो
0: बस
1: हम
0: लगता है कि
1: सारी तस्वीरों को तो नहीं रख सकते ना सीने से लगा के।
0: सही बात है। और जब घर में साफ सफाई की बात आती है, तो लगता है कि भाई शुरुआत कहाँ से की जाए, है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो हमारे जो श्रोता भाई लोग हैं, सखियां हैं, ये बहुत आसानी से हमें बता देंगे कि मतलब कहाँ से सफाई की जाए। तो हमारे साथी का संदेश हम उठा लेते हैं, लिखते हैं कि घर की साफ सफाई सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं है, वो रिश्तों का आईना है। जहाँ साझेदारी होती है, वहाँ काम बढ़ जाता है और बोझ हल्का लगता है। लेकिन जहाँ इसे एक ही व्यक्ति की जिम्मेदारी समझा जाता है, वहाँ धीरे धीरे नोक झोंक पनपती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि सफाई को ड्यूटी नहीं, साझेदारी बनाया जाए। थोड़ी मदद, थोड़ी तारीफ और थोड़ा समय पर किया गया काम घर को भी साफ रखता है और मन को भी साफ रखता है। क्या बात आपने कही है ना।
1: बिल्कुल। एक और हमारे साथी जो कहते हैं कि घर की सफाई बिना नोकझोंक के घर के हर सदस्य की भागीदारी से होनी चाहिए। इस बात पर एक गुजराती मुहावरा भी है, झाझा हाथ रलियामड़ा, मतलब एक हाथ के मुकाबले ज्यादा हाथ से काम सुंदर तरीके से और जल्दी पूर्ण होता है। इसके अलावा फिल्म नया दौर का गीत भी सही संदेश देता है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना।
0: बिल्कुल, सफाई करते समय ये गाना जरूर गुनगुनाना चाहिए, जिससे एक एकता बने। और फिलहाल तो हम लोग एक अंतराल लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं।

0: अंतराल के बाद फिर सभी का स्वागत है और आरती कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। तो अगला संदेश क्या कहता है आरती, बताओ जरा।
1: अब हमारे एक श्रोता सभाई हैं जो मेरे साथी हैं, जो कहते हैं कि घर सिर्फ चार दीवारों से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के आपसी प्रेम से बनता है। एक साफ सुथरा घर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए सफाई को लेकर आपस में नोकझोंक करने के बजाय इसे एक खुशनुमा साझेदारी में बदलें। जब पूरा परिवार मिलकर हाथ बढ़ाएगा तो घर का कोना कोना तो चमकेगा ही, साथ ही आपसी रिश्तों में प्यार की चमक भी बढ़ जाएगी।
0: क्या बात आपने कही है, बहुत अच्छी अच्छी सी बातें लिखकर भेजी हैं। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि घर की साफ सफाई हो या रोजमर्रा के छोटे बड़े काम, कभी कभी इन्हीं बातों को लेकर घर में नोकझोंक हो जाती है, कभी भाई बहन में, कभी पति पत्नी में, तो कभी परिवार के किसी और सदस्य के बीच। और तुमने ये सब काम क्यों नहीं किया, या मैं ही सब क्यों करूं, जैसी बातें सुनाई दे जाती हैं। लेकिन हर नोकझोंक मन मुटाव नहीं होती, घर की साफ सफाई में आपसी सहयोग, समझदारी और प्रेम से काम आप और थोड़ी सी नोकझोंक में मुस्कान जोड़ दें और मैं की जगह हम को महत्व दें। भाई ऐसी अगर बातें होती हैं ना, तो बेचारे जो हमारे सामान होते हैं ना, वो बेचारे इंतजार करते हैं कि भाई ये लोग तो आपस में ही लड़े जा रहे हैं, कब हमारे पास आएंगे, कब हमको पूछेंगे, है ना। तो भाई ये चीज है कि आप मुस्कुराएं एक दूसरे के साथ और आपस में हाथ बटाएं, है ना।
1: और एक साथ हमें कितना समय भी, सोचिए कितना समय भी बिताने को मिलता है साथ में। हम लोग काम कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, हो सकता है वहां पे गाने चला के थोड़ी देर के डांस भी कर लें
0: क्या
1: गुनगुना भी लें, बहुत कुछ कर सकते
0: हैं। आरती तुम्हारा ये जो तरीका है ना, ये बहुत अच्छा है कि गाने बजा लें, अपना सुने बढ़िया गाने और मन करे तो डांस करें। लेकिन ये नहीं कि आपने लेके झाड़ू चालू हो गए डांस करना, तो
1: थोड़ी देर चलता है
0: इधर उधर फैल गई गंदगी, वो भी ना करें। चलो अगला क्या संदेश है हमारे साथी,
1: जो लिखते हैं कि घर की सफाई हमेशा समझदारी और आपसी तालमेल से होनी चाहिए, क्योंकि नोकझोंक से सिर्फ मानसिक तनाव बढ़ता है और काम का बोझ कम नहीं होता। जब घर के सभी सदस्य मिलकर जिम्मेदारी बांटते हैं तो

0: सफाई एक बोझ बनने के बजाय एक खुशनुमा पारिवारिक गतिविधि बन जाती है। पर कितना भी समझदारी अपना लो, नोक झोंक तो होना ही है। बिना नोक झोंक हुए, चाहे वो बचपन में भाई बहन के साथ हो या ससुराल में पति पत्नी हो, जब तक ये ना हो सफाई में मजा ही नहीं आता। ये बात
1: बिल्कुल
0: तो सही
1: सही,
0: कही।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक कहावत लिखते हैं हमारे साथी, एक है कि सुंदर और स्वच्छ घर में ही खुशियों का वास होता है, लेकिन जब इसी घर में साफ सफाई की बात आती है तो अक्सर घरों का माहौल थोड़ा बदल जाता है। दिवाली की सफाई हो, वीकेंड का रूटीन हो, या रोजमर्रा का झाड़ू पोछा, घर की सफाई अक्सर परिवारों में दो ही मोड़ लेती है, या तो ये बहस और नोकझोंक की वजह बन जाती, या फिर आपसी मेलजोल और साझेदारी का एक जरिया। तो भाई, हम तो सफाई के मामले में ये कह सकते हैं कि जो छुट्टी का दिन हो उस दिन आप एक बैग ले लीजिए और बस जो चीज़ आपको, हर कमरे में जाइए, जो चीज़ आपको लग रही है कि हटा सकते हैं तो उनको उसमें रखते जाइए,
0: बिल्कुल।
1: और शाम होते होते आप देखेंगे कि आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी इकट्ठी कर ली हैं जो काम की नहीं हैं, बहुत टाइम से रखी हुई हैं, तो इस तरह से आप उनको हटा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो और आप थोड़ा थक गए हों, ये नहीं कि लगातार काम ही करते रहिए, आपस में जाइए, एक चाय बना लाइए, पत्नी को पिला दीजिए, खुद पी लीजिए, अगर वो झगड़ा होते होते रूठ गई है तो उन्हें मना भी लीजिए, है ना। और
0: बिल्कुल।
1: मनाना है तो भाई ये गाना भी सुना देते हैं, अगर पत्नी रूठ जाए तो वो पति के लिए गा ले, और पति रूठ जाए तो पत्नी गा ले, तो ये गाना सुन लेते हैं, फिर हम आगे बातें करते हैं।

0: म्यूजिक डायरेक्टर, पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: तो आरती, हमारी बातें चल रही थी ना, तो हमारे साथी एक लिख रहे हैं कि परंपरागत रूप से हमारे समाज में घर की सफाई का पूरा जिम्मा महिलाओं का या किसी एक ही सदस्य पर डाल दिया जाए।

0: सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: तो आरती, हमारी बातें चल रही थी ना, तो हमारे साथी एक लिख रहे हैं कि परंपरागत रूप से हमारे समाज में घर की सफाई का पूरा जिम्मा महिलाओं का या किसी एक ही सदस्य पर डाल दिया जाता है, और जब घर के बाकी सदस्य गंदगी फैलाने में तो वो आगे रहते हैं लेकिन समेटने के वक्त गायब हो जाते हैं, तब नोकझोंक की शुरुआत होती है। ये बात तो सही है कि हमारी सखियाँ बहनें सारा समेटती रहती हैं, उनके दोनों हाथ चलते ही रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं आता है, बल्कि बच्चे तो और फैलाने लग जाते हैं। तो कहना चाहिए कि सबको सहयोग देना चाहिए, बच्चों को भी सिखाएं कि सफाई कितनी ज़रूरी है। आप जहाँ बैठते हैं, जिस कमरे में आप सोते उठते हैं, वहाँ पर सफाई रखिए, और अगर जहाँ पर खाना खाते हैं टेबल है तो उस जगह आप उसकी सफाई करिए। तो छोटे छोटे काम बांट देने चाहिए सभी को।
2: और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि घर की सफाई, नोकझोंक या साझेदारी बड़ा अच्छा मुद्दा है। घर की बहन की नोकझोंक, बहन से नोकझोंक हो जाती है, वो कभी पोछा लगा देती है तो हम जाले साफ कर देते हैं, जब कभी बर्तन मांजती है तो हम उसका फोन चलाने लगते हैं।
1: क्या बात है,
2: तब तो आपकी अच्छी तरीके से डांट पड़ती होगी।
1: सही बात है, फोन चला रहे हो काम
2: वो भी उसका।
1: और कई बार ऐसा मुझसे निकल जाता है कि हम इतने भूतों की तरह जुटे हुए, तुम लोग काम नहीं कर रहे हो साथ में, तो वो चीजें भी कभी हंसी मजाक में भाई बहनों के बीच में निकल जाती है। तो हमारे साथी इसी तरह और लिखते हैं कि भाई जब घर की सफाई या नोकझोंक या साझेदारी की बात होती है तो मेरी पुस्तकें उनको वैसी लगती हैं, अजीब सी लगती है, और पुस्तकों की सुगंध उनको बदबू लगती है, मेरा रीडिंग रूम उनको कबाड़खाना लगता है, घर का माहौल ऐसा ही है, जोड़ी हमारी जमीन न जाने कैसे जानी, अब तो हम हैं अंग्रेजी तुम लड़की हिंदुस्तानी। और इस तरह उन्होंने गीत भी लिखा है कि भाई मुझे ये गीत सुना दीजिए। तो ये चीज़ तो बड़ी ऐसी चलती रहती है नोकझोंक घर में होती है सफाई के समय। तो
2: और साथ ही हमारे एक साथी जो लिखते हैं कि घर की सफाई, नोकझोंक या साझेदारी, मेरी छुट्टी का दिन हो और घर की सफाई का दिन हो तो मुझे सफाई का सामान पकड़ा देती हैं, और ड्यूटी पर धर्मपत्नी मुझे, मतलब सफाई की ड्यूटी पर लगा देती हैं। अगर मैं आनाकानी करूं तो मुझे मेरी मनपसंद अदरक इलायची वाली चाय का लालच देती हैं और कहती हैं कि जितनी बार भी पियोगे बना दूंगी, और मैं राजी भी हो जाता हूं, भाई चाय मिलेगी तो करना ही पड़ेगा काम।
1: मेरी कोई अगर घर का इतना सारा काम कर रहा है तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसके लिए एक कप चाय बना दें, उसको ताजगी महसूस होगी तो फिर वो और ज्यादा काम कर सकती है ना। और हमारे साथी लिखते हैं कि घर की साफ सफाई, नोकझोंक या साझेदारी, भाई वे घर अब कहाँ हुए जहाँ जब लोग ही फ्लैटों में रहने लगे हैं, नहीं अपितु मियाँ बीवी दोनों ही नौकरी पेशा होते हुए भी इस कल्चर से प्रभावित होने लगे हैं, फिर कहीं कोई कमी नजर भी आई तो उसके लिए दाई तो है ही ना। लेकिन ठीक है, हम किसी भी घर में रहें, चाहे वो फ्लैट में रहें, चाहे छोटे से घर में, चाहे बड़े से घर में, सफाई तो देखिए सब जगह ही होनी पड़ती, नहीं
2: और थोड़ा बहुत काम हमें अपने आप करना ही पड़ता है,
1: करना ही पड़ता है, वो कितना भी आप किसी से करवा लें, लेकिन एक बार तो एक रविवार को आपको जुटना पड़ेगा।
2: जो सफाई होती है, गहन सफाई तो हमें खुद ही करनी पड़ती है
1: ना। तो एक गीत सुनते फिर आगे बढ़ते हैं।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
2: बिल्कुल।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो आरती, जो हम बात कर रहे थे ना, तो हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि हम तो यही करते हैं, गानों के साथ काम या फिर भजन के साथ खाना बनाना। क्या बात है। मतलब बहुत ही फिर तो स्वादिष्ट खाना बनता होगा, क्योंकि भक्ति के रस में डूब के अगर आप एक रसेदार व्यंजन बना रहे हैं
2: बिल्कुल,
3: तो उसका स्वाद ही अलग होगा।
2: वो हमारे जो मन की सोच होती है ना, वो हमारे खाने में भी आ जाती है।
3: बिल्कुल आ जाती है। और भाई जब हम खाना वाना खा के जाते हैं, बाहर निकलते हैं और या कोई घर पे आ गया तो बातें करने लग जाते हैं, देख रहे हैं कि भाई वो सामने वाला कितना बोल रहा है, तो जब किससे शुरू होते हैं ना तो उनका अंत ही नहीं होता, एक दूसरे से बातें करते हैं। और जब खाते करते उन्हें बाहर छोड़ने जाते हैं तो भी दरवाजे पे खड़े होकर के घंटों बातें चलती है। और कई बार सोच भी रहे हैं कि भाई अच्छा आप चलें, अरे रुकिए भाभी जी ये किस्सा और ये भाई साहब ऐसी बात, तो ये सब चलती रहती है।
2: बिल्कुल। और मंजरी अच्छा ये चीज देखिए, अक्सर हम कहते हैं ना कि अच्छा वो आप थोड़ी देर बैठ जाइए ना, थोड़ी देर बैठ जाइए, नहीं नहीं बहुत हो गया, अरे 5 मिनट बैठ जाइए ना, नहीं नहीं बहुत हो गया, अब ज्यादा देर हम बैठ नहीं पाएंगे, हमें बहुत काम है, घर पे सारे काम पड़े हुए हैं, अब बैठेंगे तो फिर बहुत काम हमारे पीछे रह जाएंगे।
3: हाँ, अभी फोन भी आता होगा किसी का ना, ऐसी
2: और ऐसा कहने के बाद भी एक घंटा निकल जाता है।
3: कई बार जिसके साथ आप बातें कर रहे हैं ना, वो ये कहता है अरे छोड़िए आइए एक एक कप चाय और हो जाए, मतलब थोड़ा और बैठ लीजिए, तो उनको भी लगे। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि

0: हमने तो मान लो सही में कहा या संकोच बस कह कह तो दिया, लेकिन सामने बोला हाँ चलिए बैठ लेता हूँ एक कप चाय पी लेता हूँ, तब पता चलता है कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही लंबे बातें खिंच गई है ना। तो हमारे साथी क्या लिखते हैं ये हम लोग देख लेते हैं, है ना।
1: बिल्कुल, एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि 1 मिनट से चलते 5 मिनट तक की बातचीत की सीमा घंटों तक पहुंचाए जाने में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का अव्वल नंबर आएगा। उनकी बातचीत में घर से लेकर मोहल्ले तक के इतने सारे विषय जुड़े होते हैं कि बातें खत्म होने में घंटा भर समय भी कम पड़ता है, फिर ये बातें फोन पर हो रही हो या फिर आमने सामने।
0: भाई देखिए इसमें दोनों लोग की बात करते हैं, महिलाएं ही नहीं, महिलाएं तो
1: बिल्कुल
0: करती करती वो तो फेमस है लेकिन हमारे
1: हाँ
0: साथी लोग भी खूब ऐसी बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि घर से निकले बाहर चौराहे पे चले गए या कहीं भी खड़े होकर बात कर रहे हैं। महिलाएं तो चलो अड़ोस पड़ोस की खबरें लेकर के उनको पूरी खबर रहती है कि यहाँ क्या चल रहा है इधर क्या
1: पूछते
0: चल
1: भी है फिर सका, अच्छा
0: रहा
1: क्या बातें हुई
0: है और कई बार बहुत जानकारी भी मिल जाती है कि भाई इतने दिनों के लिए वो बाहर जा रहे हैं, तो सपोज आपने प्रोग्राम बनाया बाहर जाने का उसी दौरान, तो दो घर खाली रहेंगे, तो इससे पता चल जाता है कि भाई बगल वाला 15 दिन के लिए इस तारीख से जा रहा है, तो चलो हम थोड़े दिनों बाद चले जाते हैं। तो
1: हाँ
0: कभी
1: ये तो
0: कभी
1: है।
0: इस चीज़ का भी फायदा होता है, तो बात जरूर करिए लेकिन हाँ भाई बहुत ज़्यादा देर ना करके थोड़ी देर करिए। हमारे साथी क्या लिखते हैं कि 5 मिनट बनाम 1 घंटा, कुछ लोगों की नहीं बहुत लोगों की आदत है, मेरी एक परिचित घंटा भर फोन पर बात कर लेती हैं और तब बोलती हैं अरे तुम तो आती ही नहीं, आओगे तब मिलकर अच्छे से बात करेंगे, फोन पर कितना बात करें। पड़ोस की चाची सास चचिया सास घंटों घर में बैठकर बात कर लेंगी, पर जब आप उन्हें गेट तक छोड़ने जाएंगे तो वहां भी खड़े खड़े आधा घंटा बात करेंगी। उनकी इस हरकत से मेरी सासू माँ कभी चिढ़ जाती थी, गेट पर खड़ा कर क्या बात करना, घर में ही आधे घंटा और बात कर लिया करो। अब कैसे कहा जाए कि आप अब जाइए भाई साहब, जब वे जाए तभी तो आदमी विदा ले उनसे,
1: बिल्कुल
0: लेकिन पीछे से घर वाले जरूर परेशान होते हैं कि भाई तुम फिर वहां खड़ी बातें कर रही हो या अड़ोस पड़ोस से बातें करने लग जाओ, तो ऐसी ऐसे सीन हमेशा देखने को मिल जाते हैं, लेकिन
1: बिल्कुल
0: क्या करें भाई चल गई बातें तो चल गई
1: चली
0: है ना।
1: चली जा रही हैं। और मैं एक श्रोता लिखते हैं कि भाई होने को तो ऐसा भी होता है, जो लोग नौकरी पेशा नहीं है उनके पास समय होता है, ये लोग आपस में ऐसा करें तो बात समझ में आती है, लेकिन जब ऐसे लोग किसी नौकरी पेशा लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करने लगे तो ऐसे में वो बात करे या फिर नौकरी पर जाए, वो तब भी जब सामने वाला अपना कोई कोई अपना ही हो तो आप उनको मना भी नहीं कर सकते क्योंकि वो उनको बुरा लग सकता है कि
0: बिल्कुल
1: अब हमें जाना है निकलना है काम पर।
0: बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि चाहे मोबाइल पर बातचीत हो या लैंडलाइन पर, मैं तो शॉर्ट में और टू द पॉइंट बात करना पसंद करता हूँ, ये मेरी आदत मेरी धर्म पत्नी की भी है। और एक लिखते हैं कि हम 6-7 सहेलियाँ पार्क के गेट पर आते जाते, जब तक कि सुबह सभी बहुत बिजी रहती है, फिर भी खड़े खड़े बात करते रहे, फिर चलते हैं कहकर फिर कोई नई बात शुरू हो जाती है और 5 मिनट की बात 1 घंटे की हो जाती है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि हमें घंटों की निरर्थक बहसों और फालतू की गपशप को अलविदा कहना चाहिए, इसके बजाय 5 मिनट की सार्थक बातचीत को अपनाना चाहिए, और जो जो हमारे समय की इज्जत करे, हमें कुछ सिखाए और जीवन को एक कदम आगे बढ़ाए।
0: और हमें एक गीत सुन लेना चाहिए।
2: यूं ही तुम मुझसे बात

0: तो भाई देखो, हमारी जो सखियों ने लिखे हैं कि उपयोगी टिप्स में लिखा है कि रेसिपी में लिखी सभी सामग्रियां, मसाले, सब्जियां, तेल आदि पहले से निकाल कर काउंटर पर रख लें। चॉपिंग पहले कर लें, सब्जियों को काटना, प्यूरी बनाना या सूखा मसाला पीसना, ये सारे काम गैस चालू करने से पहले ही पूरी तरह से कर लें। बदलाव से बचें, पहली बार में सामग्री को किसी दूसरी चीज़ से बदलने की कोशिश ना करें, जो लिखा है वही इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल। और हमारी एक साथी जो हमें एक रेसिपी लिख कर भेज रही हैं कि जैसे कि पिज़्ज़ा रोटी है, तो रोटी चाट और आप बचे हुए रोटी से आप सैंडविच भी बना सकते हैं, वो भी खाने में बेहद स्वाद लगते हैं। इसी तरह आपको बचे हुए चावल से नई रेसिपी बनाने की टिप्स देती हूँ। चावल के पकौड़े, चावल को आप फ्री करके करके खा सकते हैं, और फ्राइड राइस भी बना सकते हैं उसको, और फ्राई करके भी खा सकते हैं, फ्राइड राइस भी बना सकते हैं और बेहद स्वादिष्ट लगते हैं।
0: और हम गीत

0: तो भाई हमें तो जाना ही पड़ेगा, तो कार्यक्रम से लेते हैं
1: बिल्कुल।
0: विदा सभी को, मंजरी वर्मा और
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अंशी पाठ।
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। इस कार्यक्रम में आप ही की बातें हैं, आपकी ही पसंद है, आप ही की यादें हैं और आप ही की फरमाइश भी है। तो आइए कुछ बातें करें, जुड़े आप सब से आपके अपने खूबसूरत सफर से। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो
1: जी, हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्कार मंदाकिनी जी।
0: नमस्कार, अरे कौन बोल रहे हैं आप?
1: जी मैम, मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, जिला महाबोध उत्तर प्रदेश से।
0: कैसे हैं?
1: जी मैम मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं। और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
1: जी मैम अभी तो खाली है, बस आज का सीजन चल रहा है अभी।
0: अच्छा
1: जी, अभी गाँव में थोड़ा बहुत काम लगता है तो कर लेते हैं।
0: जैसे क्या काम कर रहे हैं गाँव में? कौन सा गाँव है आपका?
1: जी मेरे गाँव का नाम कीरतपुरा।
0: कीरतपुरा,
1: जी।
0: अच्छा कैसा है आपका गांव? अपने गांव के बारे में थोड़ा बताइए हमें, क्या क्या सुविधाएं हैं या क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको?
1: जी मैम यहाँ पे ज्यादा सुविधाएं तो नहीं है, वैसे ही तो देखते हैं कि यहाँ पे ज्यादा कीचड़ हो जाता है बरसात के सीजन में। हाँ, तो हमारे गांव के पास में एक दूसरा गांव, वहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, तो वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं।
0: अच्छा,
1: वहाँ पे हनुमान जी को कहते हैं कि पसीना भी आता है उनकी मूर्ति से।
0: अच्छा ऐसी मान्यता है, ऐसा लोग कहते हैं।
1: जी मैम, वहाँ उनको एसी लगाना पड़ता है उनके कमरे पे, गर्मी के सीजन में उनको इतना पसीना निकलता है।
0: अच्छा,
1: मेरी आपसे 2 महीने पहले बातचीत हुई थी।
0: अच्छा कब हुई थी?
1: जी मैम मेरी 25 जून को हुई थी आपसे।
0: अच्छा आपने तारीख को नोट कर लिया या आपको याद है ये तारीख?
1: नहीं मैम, तारीख याद है, तो आपसे बात हुई है, कैसे भूल सकते हैं हम लोग।
0: बहुत सुंदर। किस
1: जी
0: तरह के कार्यक्रम सुनते हो विविध भारती में? कौन से कार्यक्रम पसंद आते हैं आपको?
1: जी आपका सखी सहेली कार्यक्रम और आपका जिज्ञासा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है मैम।
0: अरे वाह, जिज्ञासा पसंद है, यानी आपको साइंस पसंद है।
1: जी मैम।
0: बड़ा गंभीर कार्यक्रम है वो तो, और उसमें जानकारी मिलती है ना, ज्ञान विज्ञान को
1: जी जी
0: लेकर।
1: मैम।
0: और सखी सहेली
1: जी
0: में
1: मैम।
0: आप सखाओं को क्या पसंद आता होगा?
1: जी मैम, हम तो बचपन से ही सुन रहे हैं विविध भारती सर, तो हम तो बचपन से ही सखी सहेली सुन रहे हैं, और ऐसा है कि जानकारी तो कहीं से भी मिले लेनी चाहिए।
0: हाँ ये बात अलग है कि जानकारी आपको कहीं से भी मिल सकती है ना।
1: जी
0: तो कभी रसोई में घुसकर खाना बनाया है आपने? जब सखी सहेली कार्यक्रम सुनते हैं तो उसमें तो हम व्यंजनों की बात भी करते हैं, सखी सहेलियों की बात भी करते हैं।
1: जी मैम, खाना बनाना तो नहीं आता लेकिन सुन लेते हैं।
0: खाना खाना आता है बस, है ना?
1: जी मैम।
0: हाँ, और खाने में नुक्स निकालना आता है कि आज नमक नहीं डाला, आज

0: डाल दिया, तेल ज्यादा डाल दिया, मिर्च कम डाल दी,
1: नहीं
0: ऐसा?
1: मैम, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए।
0: तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? कौन सा गीत आपके दिल के सबसे करीब है?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है कुदरत का कानून, उसमें एक गीत है तुझे कितना प्यार करें।
0: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो
1: हेलो फरमाइए।
0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: आप मंदाकिनी दीदी बोल रहे हो?
0: हाँ जी जी बिल्कुल, आप बताइए अपना नाम।
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती पद्मा सिंगारे बात कर रही हूँ दीदी। 3 महीने हो गए दीदी मेरे कॉल को। 3 महीने से आपके आपके साथ ही बात हुई हुई थी दीदी मेरी।
0: अरे वाह, क्या नाम बताया आपने अपना? पद्मा।
1: पद्मा सिंगारे
0: क्या बात है, बहुत सुंदर नाम है आपका तो।
1: मुझे गाना सुनना है दीदी। आप कैसे हो दीदी?
0: मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छी हो गई हूँ।
1: मेरे को गाना सुनना है दीदी।
0: गाना तो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये बताइए आज आप क्या कर रही हैं, कितनी बिजी हैं, आज दिन भर आपने क्या काम किया, कुछ तो बताइए।
1: आज तो दिन भर में इतना काम करे दीदी का। मेरी बेटी आई थी कल, तो उन राखी बांधने के लिए तो मेहमान का खाना बनाया दीदी। जो आए थे अपनी मेरी मम्मी पन आई थी। हाँ
0: अरे वाह,
1: बहुत सारा काम करी दीदी आज मैंने। थक
0: थक गई फिर।
1: गई। आज मेरा भैया पन आए थे।
0: अच्छा, जब बहुत ज्यादा काम करके थक जाती हो तो क्या करती हो? विविध भारती सुनने लगती हो?
1: नहीं तो दीदी हम तो रेडियो सुनते ना दीदी। हेलो फरमाइश पन सुनते हो दीदी।
0: अच्छा,
1: हाँ चालू रहता है दीदी मेरे यहाँ।
0: अरे वाह, सुबह से शाम तक चालू रहता है विविध भारती।
1: चालू रहता है सुबह हमारे अमरावती केंद्र के कार्यक्रम सुनती हूँ
0: हाँ,
1: और 11 बजे से पूरा हमारा विविध भारती चालू रहती है।
0: अच्छा, तो एक बात बताइए, आपने इतना सारा खाना बनाया त्योहार के लिए, क्या क्या बनाया था खाने में?
1: मैंने दीदी रोटी बनाई, चावल बनाई, दाल बनाई, पूरन पोली बनाई दीदी मेहमान के लिए।
0: आ पूरन पोली तो मुझे भी बहुत पसंद है।
1: आओ दीदी खाने को।
0: हाँ, अब मुझे लगता है आना पड़ेगा आपके घर ना पूरन पोली खाने मुझे।
1: आओ ना अभी अमरावती आएगी ना हमारे घर आना दीदी।
0: पक्का पक्का, बिल्कुल आऊंगी।
1: हाँ दीदी
0: आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, आज आप बहुत खुश भी लग रही हैं, इतनी व्यस्त होते हुए भी थकान भी नहीं लग रही है आपकी बातों में, है ना?
1: नहीं, मेरे को तो थकान रोज ही नहीं।

0: हूँ, घर का काम करती हूँ, और मेरे जो पोते पोता पोती है
1: हाँ
0: उनको स्कूल ले जाना, छोड़ना, लाना, ये सब मैं करती हूँ दीदी।
1: अरे ऐसे तो आधी थकान दूर हो जाती है बच्चों के साथ तो।
0: दूर हो जाती दीदी। हाँ,
1: हाँ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी आप?
0: डॉन फिल्म का चित्रपट है दीदी,
1: डॉन फिल्म का कौन सा गाना?
0: अरे दीवानो मुझे पहचानो।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: अरे दीवानो मुझे पहचानो।

0: ऐसा है कौन? अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन।
1: हेलो,
2: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते, हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
2: न मांगी कोई दुआ, न कोई गुजारिश की, न कोई फरियाद, न कोई नुमाइश की, जब झुका सर सजदे में खुदा के, तो हेलो फरमाइश में जिनसे मेरी बात हो रही है उनकी खुशी की ख्वाहिश की।
1: अरे किनसे बात हो रही है आपकी हेलो फरमाइश में?
2: मंदाकिनी जी से।
1: अरे शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी, आपने हमारी खुशहाली की दुआएं की है। बताइए अपना नाम, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं ये तो बताइए।
2: पालदा नाका इंदौर से मोहम्मद रफी मंसूरी।
1: कैसे हैं आप बताइए मोहम्मद रफी साहब?
2: बहुत अच्छे मैडम, आप कैसे हैं?
1: हम भी अच्छे हैं
2: जी जी।
1: क्या कर रहे हैं इन दिनों?
2: इन दिनों मैडम सिलाई का काम करते हैं हम लोग।
1: अच्छा, क्या सिल रहे हैं?
2: घनी बैग का काम है।
1: बैग का?
2: हाँ जी।
1: अच्छा, आपका नाम इतना खूबसूरत है, क्या याद आता है आपको अपने नाम के साथ?
2: मेरे को मैडम रफी साहब याद आते हैं और उनके गाने याद आते हैं।
1: रफी साहब का कौन सा गाना आपके दिल के सबसे करीब है?
2: ये उम्मीद का है ना, मुझे इसके तुझे से, फिर राजा रंग का, फिरकी वाली, बहुत सारे गाने हैं मैडम उनके तो
1: पसंद आते हैं। अच्छा, आपको घर में किस नाम से पुकारते हैं? आपका घर का नाम क्या है?
2: घर का नाम बबलू है मैडम।
1: बबलू, बड़ा प्यारा नाम है ये
2: जी
1: बबलू,
2: जी
1: है ना? तो बताइए, जब आप छोटे थे आपको बबलू कहा जाता था, यानी आप बचपन में ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको तुरंत खुश कर देती थी?
2: मुझे तो मैडम खिलौने मिल जाते थे।

0: बहुत खुशी हो जाती थी मैंने।
1: अच्छा, खिलौने मिलते थे बचपन में? आपके माता पिता खिलौने लाके देते थे आपको?
0: हाँ, मेरी मम्मी ने बहुत ध्यान रखा मेरा, और खिलौने भी मुझे ला ला के दिए थे, तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी।
1: क्या क्या खिलौने थे आपके पास, बताइए।
0: वो गाड़ी आती थी 4 पहिए की प्लास्टिक की मैडम, वो और बंदूक आती थी वो।
1: लड़के लोगों के पास बंदूक
0: हाँ
1: नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता है, जब भी तो हमने जानना
0: ना, और
1: चाहा।
0: चाबी की मोटर आती थी ना, जो उसको चलाते थे अपन,
1: हाँ।
0: चाबी की मोटर, उसको चाबी भर दो तो छोड़ दो, तो वो बहुत दूर तक जाती थी मैडम।
1: उसको देखकर तो मजा
0: वो
1: आता
0: बचपन की
1: था।
0: यादें में कभी बोला नहीं सकता मैडम।
1: लेकिन अगर अब आप अपने बच्चों के बचपन की बात करें तो क्या कहेंगे? आपके बच्चे हैं क्या, लाके देते हैं उनको खिलौने,
0: अभी
1: लाके
0: अभी
1: देते
0: मैं अभी
1: हैं?
0: मुझे शादी नहीं मैडम मेरी।
1: अरे, आपकी तो शादी नहीं हुई। चलिए, तो आप भी अपने बच्चों के बचपन का जो है ख्याल रखिएगा, जब आपकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, तो उनका जो बचपना है उसे कभी दूर मत होने दीजिएगा, क्योंकि बचपन से सुंदर जो है समय कभी नहीं मिल पाता।
0: जी, सही है। फिल्म
1: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप, बताइए।
0: का नाम है हम पांच, मिथुन चक्रवर्ती और सुष्मिता पाटिल पर फिल्माया गया है, और गाने के बोले का जानू मैं सजनिया चमके ही कब चंदनिया गरमा गरी।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ मैडम, नाना खेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से मैडम। बस
0: कैसे हैं लोकेंद्र जी?
1: बिल्कुल मैडम जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और विविध भारती को प्रसार भारती मोबाइल ऐप और जो डीटीएच पर भी सुन लेते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहते हैं विविध भारती के।
0: आपसे तो पहले भी बात हो चुकी है मेरी, बहुत पहले।
1: हाँ आज से करीब 6 महीने पहले हुई थी मेरी बात आपसे।
0: कैसे हैं बताइए। इन 6 महीनों में क्या कुछ खास किया आपने?
1: खास तो मैडम जी मेरा तो हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस है और मैं हेयर कटिंग सैलून पर काम करता रहता हूँ और आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। आपके अलग जो भी विविध भारती के सारे प्रोग्राम आते हैं, जैसे मन चाहे गीत है, हेलो फरमाइश है, सखी सहेली है। सखी सहेली में वो प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, जैसे कि वो खाना बनाने के टिप्स बताते हैं ना अलग अलग, कि खाना अलग अलग जो किस प्रकार के भोजन व्यंजन बनाते हैं वो अच्छा लगता है। और सभी प्रोग्रामों की मुझे जो अपडेट है वो अपडेट फेसबुक पेज के माध्यम से मिल जाती है।
0: इसका मतलब आप खाने के शौकीन है तभी आपको वो पसंद है।
1: बिल्कुल अच्छा लगता है मैडम जी खाना, और मैं खाना घर में बना भी लेता हूँ, वाइफ के साथ में उनको हाथ बटा देता हूँ। सिर्फ मुझे रोटी बनाना नहीं आती, बाकी सभी व्यंजन बना लेता हूँ।
0: अरे क्या क्या व्यंजन बनाते हैं बताइए।

0: हाथ कैसे
1: जैसे
0: बटाते
1: कि
0: हैं?
1: हमारे यहाँ उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध भोजन रहता है दाल बाफला और लड्डू। ये मालवा अंचल का मतलब सबसे प्रसिद्ध भोजन है। ये भी बनाने में उनका साथ में सहयोग कर देता हूँ। और जैसे दाल चावल फ्राई है, दाल फ्राई है, और मटर पनीर की सब्जी है, ये सब प्रकार के व्यंजन मैं खुद बनाता हूँ।
0: अरे क्या बात है, कहाँ से सीखा आपने?
1: मैडम जी ये तो सब मैंने आपके यहाँ से जो टिप्स मिलते हैं उसको देखते हैं, और बाकी जो घर में कभी कभी महिलाएं भी बनाती हैं तो उनको देखकर हम भी सीख जाते हैं।
0: हाँ, सही बात है ना। और जिनको खाने का शौक होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं से रेसिपी देख ही लेते हैं कि किस तरह से कौन सा व्यंजन बनाया जा सकता है ना।
1: और खास करके मेरी एक खासियत है कि मैं सिर्फ घर का बना भोजन ही खाता हूँ। मैं बाहर मतलब डिनर पे या कहीं बाहर जाता हूँ ना,
0: हाँ
1: तो मैं बाहर का व्यंजन इतना ज्यादा अवॉइड करता हूँ सभी चीजों को, क्योंकि बाहर के जो व्यंजन रहते हैं खैर लगते तो लुभावने, जैसे पिज्जा है, बर्गर है, ये चीजें, पर ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहते हैं। क्योंकि घर का जो शुद्ध शाकाहारी भोजन आप खाएंगे तो उससे आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। आज मेरी 52 साल की उम्र है, पर किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, ना थायराइड है, बीपी है, शुगर है, कुछ भी नहीं है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात। आपने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि पिज्जा बर्गर खाने के हम जितने शौकीन हैं, उतनी ही बीमारियां हम पाल भी ले रहे हैं ना। खासतौर से हमारे बच्चे जो फास्ट फूड के शौकीन हैं, आए दिन उनको फास्ट फूड चाहिए ना, स्ट्रीट फूड चाहिए। तो माता पिता को चाहिए कि घर में ही बना के वो खिलाएं, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं हो। आप 52 ईयर्स ओल्ड हैं, आपने कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं है, बहुत अच्छी बात है।
1: आज उज्जैन में महाकालेश्वर जी की सवारी निकाल जाती है, शाही सवारी,
0: अच्छा, हाँ
1: और आज शाही सवारी उज्जैन में निकल रही है। बाबा महाकालेश्वर जी खुद दर्शन देने के लिए पालकी में सवार होकर जनता का हालचाल जानने के लिए निकल रहे हैं, और वो सवारी निकल रही है आज।
0: वाह, बहुत सुंदर दृश्य होगा और काफी लोगों की तादाद होगी, भीड़ होगी, काफी लोग आजू बाजू चलेंगे।
1: बिल्कुल मैडम जी, और ये उज्जैन महाकालेश्वर के जो स्थान है ये तो ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है ही सही, पर आज जो शाही सवारी निकली है इसमें करीब नहीं 5 लाख से यात्री जो उज्जैन में दर्शन करने के लिए आए हैं।
0: बहुत बड़ी बात। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर कि कितना खास दिन हम मना रहे हैं और उज्जैन में खास तौर से इतने श्रद्धालुओं की भीड़ है।
1: जी जी मैडम,
0: जी, तो बताइए आपकी पसंद का कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
1: गाना सुनना है मुझे लता मंगेशकर जी की आवाज में। फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम, और इसमें एक गाना है, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है।
0: अरे बहुत सुंदर गाना है लता जी की आवाज में। चलिए,
1: जी मैडम,
0: आप सुनना चाहते हैं ये टाइटल सॉन्ग, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: हेलो,
1: हाँ नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ धन्यवाद दीदी। मैं यहाँ राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश से राजेश अग्रवाल बोल रही हूँ।
0: राजेश जी, स्वागत है आपका। कैसे
1: धन्यवाद।
0: हैं?
1: बढ़िया दीदी, यहाँ प्रिंटिंग प्रेस पे बैठा हुआ, पानी भी गिर रहा है अभी,
0: अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस।
1: बारिश जोरदार हो रही है, 1 घंटा हो गया है।
0: अरे वाह, अच्छी बात है ना।
1: मतलब हाँ, मतलब 1 महीने से पानी नहीं आ रहा था यहाँ पर। हाँ, और हमारे परिवार के लोग हैं, जो करीब 40 वर्षों से कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: अच्छा, कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप विविध भारती के?
1: भारती के जैसे तो मनचाहे गीत अभी चालू कर दिया आपने,
0: आपने पत्र लिखा
1: आप
0: मनचाहे
1: लोगों
0: गीत
1: से।
0: में।
1: बिल्कुल, किस्तियाँ बहुत जा रही है, लेकिन उसका समय कम है, डेली किया जाए। और हेलो फरमाइश का समय भी जैसे आपने एक ही दिन कर दिया, ये आप 2 दिन ही किया जाए।
0: चलिए, तो आप प्रिंटिंग
1: बिल्कुल
0: प्रेस में काम करके समय निकाल लेते हैं हमसे फोन करने का।
1: बिल्कुल, वो तो हमारे कारीगर काम करते हैं ना, हम तो क्या है डायरेक्शन देते हैं। जैसे मतलब हमारे पास 2-3 कारीगर है, और बाकी के समय हम जैसे सुनते रहते हैं, समय रहता है तो। फरमाइश कार्यक्रम हमारा खास है, जैसे मनचाहे गीत है, इसके बाद ये हेलो फरमाइश है,
0: हाँ, ये
1: ये
0: सभी
1: सब
0: कार्यक्रम आपको
1: कार्यक्रम। हाँ,
0: पसंद हैं, बिल्कुल। तो बताइए, आज
1: ये
0: कौन सा
1: मेरा
0: गीत
1: गीत
0: सुनवाएं?
1: आज गीत है, ये उजाला पिक्चर का झूमता मौसम मस्त महीना, जो के जय किशन साहब की पुण्यतिथि है,
0: जी,
1: तो उनका बनाया हुआ गीत है ये, तो वो अलग ही सुनवा दीजिए। और हमारे साथ में हमारे परिवार के लोग भी सुन रहे हैं इस गीत को। शांति महाजन है, मुकेश महाजन है, नीता महाजन है और राकेश महाजन है।
0: चलिए, तो आप सभी मिलकर सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
2: झूमता मौत

0: हेलो,
1: आपकी दोस्ती ही मेरी जान है, शायद इस हकीकत से आप अनजान हैं। मुझे खुद नहीं पता मैं कौन, क्योंकि आपकी दोस्ती ही मेरी पहचान है।
0: क्या बात है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में अपना बताइए, अपने बारे में आप कौन हैं।
1: मंदाकिनी मैडम जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आपको
0: नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। अपना नाम बताइए हुजूर।
1: उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ मैडम जी।
0: दिलीप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप।
1: बहुत ही बढ़िया हूँ मैडम, आज आपसे बात हो गई तो और भी अच्छा हो गया मैडम। जी
0: अरे पहले भी शायद आपसे बात हुई भी है हमारी, तो मुझे जहां तक याद आ
1: मैडम
0: रहा है।
1: बिल्कुल, 18 जून को बात हुई थी आपसे मेरी 2025 में, उसके बाद आज हो रही है।
0: चलिए, तो अच्छी बात है कि आपकी दोबारा
1: जी
0: हमसे बात हो रही है। और कैसा है आपका
1: बहुत ही बढ़िया है
0: शहर,
1: मैडम,
0: आपका शहर बताइए।
1: बहुत ही
0: उदयपुर,
1: बढ़िया एकदम मैडम।
0: सही बारिश हो गई है जितनी उम्मीद थी।
1: बारिश अभी हुई नहीं है 1 महीने से, कल हुई शाम को आधा पौन घंटा, थोड़ी ठीक हुई लेकिन उससे थोड़ी उमस हो गई है
0: बिल्कुल सही
1: अभी,
0: कहा।
1: और आसार है, झीले अभी खाली है।
0: बिल्कुल, क्योंकि प्रॉपर बारिश होनी चाहिए थी, वो तो हुई नहीं, जो झीलें भर जाती।
1: जी
0: लेकिन पर्यटक काफी आए होंगे घूमने।
1: पर्यटकों की तो धूम मची हुई है मैडम,
0: लेकिन इस गर्मी में उनका हाल बेहाल हो जाता होगा ना।
1: फिर भी उनको जरा भी चिंता नहीं रहती है।
0: हाँ, खैर, घूमना तो एक इतना जानदार और शानदार काम है कि आदमी सब कुछ भूल कर निकल पड़ता है घर से, है ना।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
0: आपको यात्रा पे कहीं जाने का मौका मिला है।
1: जी अभी कुछ समय पहले ही होके आया था मैं उज्जैन, महाकाल की नगरी,
0: अच्छा।
1: वहाँ हमारे प्रिय मित्र लोकेंद्र वर्मा जी से मुलाकात करके आया, बड़ा ही अच्छा लगा, वो भी खुश हो गए और मैं भी खुश हो गया।
0: अच्छी बात है, दो मित्र मिलेंगे तो खुश होना ही चाहिए। तो क्या लगा इंदौर जाकर महाकाल के दर्शन करके, जब आप लौटे तो क्या महसूस किया आपने।
1: वहाँ का एक आनंद ही अलग था मैडम, जिधर देखो उधर मतलब महाकाल की नगरी में एक तो महाकाल के जो नारे थे वो बड़े ही एकदम मन को शांति और सुकून पहुंचा रहे थे, उसमें सब कुछ भूल गया मैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, आप जिस भाव को लेकर गए थे उससे कहीं ज्यादा आपको महसूस हुआ, है ना।
1: अभी वापिस मानस बन रहा है इसी महीने में।
0: चलिए, तो आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय हो। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे गाना जानना चाहेंगे। कौन सा गाना आज आप सुनना चाहते हैं।
1: देवानंद साहब की फिल्म का है और रफी साहब की आवाज का गाना है, फिल्म का नाम है काला बाजार और गाने के बोल है खोया खोया।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मोहब्बत की समा जला कर तो देखो, मोहब्बत की समर तो देखो, दिल की दुनिया सजा कर तो देखो, तुम्हें हो ना जाए मोहब्बत तो कहना, जरा एक बार हमसे नजरें मिलाकर तो देखो।
0: क्या बात है, मुकर्रर मुकर्रर।
1: दिल की दुनिया सजा कर तो देखो, तुम्हें हो ना जाए मोहब्बत तो कहना, जरा एक बार हमसे नजरें मिलाकर तो देखो।
0: क्या बात है, क्या बात है। हमारे सभी श्रोता सब शायर, नगमा निगार, गीतकार हैं।
1: बिल्कुल मैम, ये विविध भारती की देन है, जो कि हम लोग इतना टैलेंट और इतने खूबसूरत अंदाज से बोलना सीख गए आप लोगों को देख देख कर।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर। बताइए अपना नाम, कहाँ से बोल रहे हैं, अपनी जानकारी दीजिए हमें।
1: मैं ग्रामबा पोस्ट बक्सीना डिस्ट्रिक्ट बदायूं, तहसील दातागंज, यानी उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बदायूं शहर से विमल ठाकुर बात कर रहा हूँ मैम।
0: विमल जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे।
0: अपनी जगह जो है बदायूं, इसके बारे में बताइए। नाम हमने बहुत सुना है, लेकिन इसके बारे में क्योंकि हम कभी आए नहीं हैं, तो बताइए कैसा है आपका ये अपना शहर?
1: जी बिल्कुल, मेरे यहाँ पर एक मजार है जो दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मिन्नतें लेकर, और हमारे यहाँ पर एक बरेली के पास में आंवला पड़ता है, ठीक है मैम? आंवला शहर है, तो उसमें क्या है कि मनोरा धाम नाम से जो श्याम जी का एक दरबार लगता है, वहां पर काफी दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं।
0: क्या बात है, ऐसी श्रद्धा है ना, तो
1: जी मैम
0: काफी लोग आते होंगे, काफी श्रद्धालु आते होंगे, काफी भक्त जन आते
1: बिल्कुल
0: होंगे
1: मैम,
0: इस
1: यहाँ पर
0: विश्वास के
1: टूरिस्ट
0: साथ।
1: जब जाता हूँ देखता हूँ टूरिस्ट बसें लगातार लगी रहती हैं, क्योंकि काफी देर के बाद गुरुजी से मिलने का नंबर भी आता है, क्योंकि लाइन काफी लंबी रहती है, तो इस समय यात्री ज्यादा रहते हैं, जो श्रद्धालु ज्यादा है तो इस चक्कर में थोड़ा सा टाइम तो लगता है मैम।
0: हाँ खैर, वो तो है ही, जहाँ श्रद्धालु या भक्तगण ज्यादा होंगे तो वहां तक पहुंचने में हमें वक्त लगेगा। आप कभी इस लाइन में लगे, इस श्रद्धा के साथ खड़े हुए?
1: जी मैम, मैं वहां पर घूमने तो गया हूँ और जल भी लेकर आया।
0: खैर चलिए, इतना फायदा
1: जी
0: तो
1: मैम,
0: आप भी लेंगे ही जब आप वहीं रहते हैं।
1: जो लोग अपने प्रॉब्लम में रहते हैं वो लाइन लगाकर कतार में जरूर खड़े रहते
0: हाँ
1: हैं, क्योंकि
0: हाँ
1: उनकी जो दुखद समस्या है वो सुनाने के लिए गुरुजी को
0: जी
1: रहते हैं।
0: जी वो किसी विश्वास और श्रद्धा के साथ आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और वहां लाइन में लगते हैं ताकि उनको उचित मार्गदर्शन मिल जाए, है ना, इसी भावना के साथ आते हैं। हाँ, आप अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं विमल जी आप?
1: वैसे तो मैम, मैं जब आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो इस समय तो हरिद्वार में एक जॉब कर रहा हूँ।
0: अच्छा, चलिए तो बहुत अच्छी बात है, और आप हमें कॉल भी कर रहे हैं, हरिद्वार में रहकर भी आप हमें सुन रहे हैं, बहुत
1: बिल्कुल
0: अच्छी
1: मैम,
0: बात है।
1: हरिद्वार में रहते हैं और साथ में हमारे बच्चे भी इस समय इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। लव गुनगुन शुभ अमेरी वाय सरता।
0: क्या बात है, चलिए सुनिए आप सभी अपनी पसंद का गीत, बताइए अब कौन सा गाना
1: मैम
0: सुनेंगे।
1: मूवी का नाम रहेगा राम अवतार, और इसमें बेहतरीन सनग मैं तेरी बेवफाई का शिकवा करूँ तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी, ये सब सुनवा दीजिएगा।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।
2: तेरी

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: जी, मैम, मैं राम बाबू मालवी बोल रहा था, कोलार रोड भोपाल से ही।
0: भोपाल से राम बाबू जी स्वागत है आपका। कैसे हैं?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ, और परिवार में भी सब आनंद मंगल में हैं। मम्मी, भैया, भाभी, परिवार में हमारे बच्चे बच्चे सब आनंद और मंगल में हैं।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो कि सब आनंद मंगल से हैं, है ना।
1: जी,
0: तो
1: और हंसी खुशी के साथ, आनंद मंगल के साथ में हम विविध भारती को साथ में रखते हैं, हमेशा चलती रहती है और सुनते रहते हैं। और आपके जो प्रोग्राम है ना विविध भारती के, बहुत अच्छे लगते हैं हमको, पूरे परिवार को अच्छे लगते हैं। चलती रहती है विविध भारती हमारे साथ में, और सुनते रहते हैं, काम वाम भी करते रहते हैं। और ये पत्र भी हम अभी डाल के आए, आपसे मतलब बात करी ना, उससे 2 मिनट पहले ही मैंने पोस्ट ऑफिस में पत्र डाल के आया हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं डालने गया तो उनने मेरे को देखा, मैम ने बोले भैया इसमें डाल दीजिए। बोले का है, मतलब वहां का डालना। जी, वहां डाल दीजिए। बोले हमको भी एड्रेस बताना ना भैया, आपको गलत बुरा ना लगे तो। मैम ठीक है, मैंने एड्रेस बता दिया उनको। बोले हम भी डालेंगे, हम भी सुनते हैं विविध भारती तो। हाँ जी, बिल्कुल। उनने दोनों मैम ने मतलब मेरे पास में एड्रेस रखा तो उन दोनों ने लिया एड्रेस। बोले हम भी डालेंगे पत्र,
0: क्या
1: हम भी बहुत
0: बात है।
1: सुनते हैं, हमारे हस्बैंड और हमारे सास बहुत सुनती है प्रोग्राम। बोले ठीक है।
0: उन्होंने ऐसे कहा
1: हाँ
0: जो
1: जी
0: पोस्ट ऑफिस में बैठी थी महिलाएं। हाँ
1: हाँ जी, बिल्कुल।
0: जी, बहुत अच्छी बात है कि विविध भारती को आप सभी लोग इतना प्यार करते हैं और जिंदगी
1: जी,
0: बन गई है विविध भारती आपकी, है ना।
1: बहुत बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से बचपन से सुनते हैं। हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी मान के चलो, हमारे दादा परदादा भी सुनते थे, जब से रेडियो चालू हुआ, जब से हमारे दादाजी भी सुनते थे, हमारे पापा भी सुनते थे, मैं भी सुनता हूँ, उसके बाद में हमारा बेटा है वो भी सुनता है। हाँ जी,
0: अच्छा आपने
1: और हमारा
0: अपने
1: बेटा तो बहुत बहुत ध्यान से सुनता है, हमारा वो बेटा है ना, बहुत ध्यान से सुनता है, वो होमवर्क वगैरह भी करता रहता है और सुनता रहता है।
0: क्या बात है। तो आपने अपने दादा को याद किया है, तो दादा नाना की कोई
1: जी
0: बात याद है आपको ऐसी?
1: जी वो मतलब वो मैं ज्यादा छोटा था उस टाइम पे, वो गुजर गए तो वो नहीं है, शांत हो गए थे।
0: अच्छा आप अपने बारे में
1: अपने
0: बताइए फटाफट से, आप क्या करते हैं?
1: ये ड्राई क्लीन का, लॉन्ड्री का काम है, वो तो चलता रहता है, विविध भारती हमेशा साथ में रहती है। आपको याद है हमारा काम ही ऐसा है, बिना सुने तो हमारा काम नहीं होता है। जी
0: चलिए अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: जी बिल्कुल, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज प्रोग्राम में जैसे दिल है के मानता नहीं, इसी का टाइटल सॉन्ग अनुराधा पौडवाल जी का गाया हुआ गाना सुनना चाहूंगा मैं, और
0: आइए
1: मेरे परिवार वाले सभी सुनना चाहेंगे।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते जी।
0: नमस्ते। हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हाँ जी मैम, नमस्ते। मैं शाहजी नगर देवलूर जिला नांदेड़ से संतोष भाकरे बोल रहा हूँ।
0: संतोष जी कहाँ से बोल रहे हैं? जिला नांदेड़ से।
1: हाँ जी, देवलूर।
0: बिल्कुल, कैसे हैं आप संतोष
1: तो
0: जी?
1: हम विविध, हाँ जी, अच्छे हैं मैम। तो
0: बताइए अपने बारे में, बताइए क्या करते हैं आप?
1: आज बहुत दिनों बाद फोन लगे है, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। तो
0: अरे वाह, पर आप इतनी गंभीरता से बोल रहे हैं, मुझे तो खुशी कहीं नजर नहीं आ रही है।
1: नहीं मैम,
0: पहले अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं?
1: बिल्कुल जी। तो मैं प्राइवेट अस्पताल में कंपाउंडर की ड्यूटी करता हूँ।
0: अच्छा,
1: गाँव वाले
0: कंपाउंडर की ड्यूटी करते हैं जी, बिल्कुल। तो क्या समय रहता है ड्यूटी का?
1: ड्यूटी का समय डे रहता है मैम।
0: अच्छा, दिन में करते हैं ड्यूटी। अच्छा, पता है कंपाउंडर बनना आसान नहीं होता है ना? बनने का मतलब कि
1: हाँ
0: उसको निभाना, उस जो ड्यूटी को निभाना जो है बड़ा मुश्किल है। मुझे याद है एक एक्सीडेंट में एक जो कंपाउंडर थे, उन्होंने बहुत समय तक इलाज करने के बाद ही कहा कि माफ करना दीदी, हमें ऐसा बनना पड़ता है ना, बहुत स्ट्रिक्ट बनना पड़ता
1: हाँ
0: है।
1: जी,
0: मरीज कितना भी रो रहा है, चिल्ला रहा है, उन्हें अवॉइड करना पड़ता है, उन्हें अपनी पट्टी गार्ड सब लगाना ही पड़ता है ना।
1: बिल्कुल सही बात है। तो
0: बड़ा बड़ा मुश्किल काम होता
1: हमें
0: है।
1: पेशेंट के साथ साथ पेशेंट के रिलेटिव को भी हमको बोलना पड़ता है।
0: हाँ, रिलेटिव्स को भी डांटना पड़ता है, मतलब उन्होंने डांट भी दिया कि आप सही से ट्रेल लगाइए, ब्लड नीचे नहीं गिरना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: है ना। और जब अंतिम दिन उन्होंने
1: बिल्कुल
0: जब
1: जी, बिल्कुल।
0: कहा इस सब बात के बारे में, उन्होंने बताया कि मेरी ड्यूटी में शामिल है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मरीज ठीक नहीं होता है।
1: बिल्कुल मैम, ये सब कुछ बातें सब करना पड़ता है हमें। हाँ,
0: हाँ
1: बराबर पहचाने। तो
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: पेशेंट जब गंभीर अवस्था में आते हैं मैम, और जब अच्छे होते जाते हैं ना, तो बड़ी खुशी होती है हमें। तो
0: लेकिन उसका इलाज करते
1: मैं,
0: समय कठोर
1: हाँ
0: बनना पड़ता है ना।
1: बिल्कुल, बनना तो पड़ता है मैम।
0: जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: हाँ जी, मैं लावारिस फिल्म का गीत सुनना चाहूंगा, आशा भोसले और किशोर कुमार जी की आवाज में, सबके बिछड़े हुए हैं।
0: चलिए सुनते हैं आपकी
1: तो ये
0: पसंद का
1: गीत,
0: गीत।
1: हाँ जी, ये गीत सुना गया। धन्यवाद।
2: सबके

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से
1: हेलो फरमाइश। ये हाँ, रहीम खान पठान बात कर रहे हैं।
0: स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं?
1: परभणी महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। कई
0: अच्छा, स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है। आपकी विविध भारती 1975-77 से हम सुनते आ रहे हैं और आज भी हमारी सुनने की तमन्ना है। सखी सहेली पलो फरमाइश। हाँ, इतना मनोरंजन यानी हमारे देश की सुरीली धड़कन हमारे परभणी में नहीं बल्कि हमारे पूरे ओड़ में मशहूर है। कई
0: क्या बात है कितना
1: आप देखिए, हमारा रेडियो चलता है और साथ में काम भी चलता है। हम ग्रुप में ऐसा काम करते हैं और रेडियो विविध भारती लगा के रख देते हैं और उसका पूरा सखी सहेली सपना जितने भी प्रोग्राम है उसको का मजा लेते हैं। सबसे ज्यादा अच्छा और सुरेना मौका बोल तो हमको सखी सहेली सुनने में बहुत मजा आता है। कई
0: क्या अच्छा लगता है आपको सखी सहेली में?
1: इतने अच्छे मीठे मीठे हमारे मंदाकिनी ताई, ममता दीदी जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा काम करते करते काम किधर हो रहा है हमें कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि हंसी मजाक और गाने का मनोरंजन आता है तो बड़ा अच्छा लगता है हमको। चाहिए। हाँ
0: चलिए, अच्छी बात है। आपको अच्छा लगता है हमारी बातचीत करने का अंदाज? हम
1: जी हाँ जी हाँ, चाहिए। आपकी बात, आपकी आवाज यानी हमारा रिजिट भारती। मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि हम 1975-77 से हमारे दिल में ख्याल ही आता था जब हम रेडियो सुनते थे तो हम रेडियो से कब बात करेंगे, आपके जैसी हमारी आवाज कब आएंगी। अब देखिए, हमको भी समझो कुछ श्रोताओं ने नंबर दे दिया आपका और हमारा भी कॉल बहुत जमाने के बाद लगा। हमें इसकी खुशी हो रही है कि किसकी हद नहीं।
0: बहुत अच्छी बात है ना कि आपको आपके
1: हाँ
0: ही
1: जी
0: दोस्तों ने नंबर दिया विविध भारती का और आपने हमें कॉल कर लिया।
1: जी हाँ जी हाँ, भाई इसकी
0: अच्छा जी,
1: प्रोग्राम में एक छोटा सा शेर बोलने की अनुमति मैं लेंगे। भाई
0: बिल्कुल बोलिए बोलिए।
1: यहाँ वहाँ मिले वतन हमारा, ये नए मंजिले ये नए रास्ते कांटों से है इसे बचाना।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। आप क्या करते हैं?
1: कहते
0: परभणी
1: हैं
0: में रहते हैं?
1: परभणी। जी हाँ, परभणी में रहते हैं
0: तो अपने शहर
1: और
0: के बारे में
1: हम
0: थोड़ा बताइए हमें, परभणी के बारे में बहुत नाम सुना है हमने।
1: एक खूबसूरत मंदिर मोटा मारुति है जो हमारे परभणी के सभी अतनागरिक वहाँ पे आते हैं मिलते हैं। और दूसरी खास बात ये है कि हमारे परभणी शहर में हजरत तुराबुल हक की दरगाह है, यहाँ का उरुस के लिए बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं, देव भक्त आते हैं और दरगाह का पूरा दर्शन करके जाते हैं और इतना बड़ा मेला भरता है जो कि हमारे महाराष्ट्र में तीसरे नंबर पे आता है। चाहे वो परभणी हजरत तुराबुल शाह के दरगाह का उरुस यानी मेला,
0: बिल्कुल
1: ये
0: बिल्कुल।
1: हर 2 फरवरी को भरता है यहाँ पे परभणी
0: हाँ
1: शहर में। बल्कि हमारे अच्छे देश के अच्छे नागरिक और हमारे विविध भारती के ज्यादा से ज्यादा श्रोता आके पूरा मेले का आनंद लेके जाते हैं।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही उम्दा जानकारी आपने दी। कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: आज के इस प्रोग्राम में हमारा फोन लगा है। सबसे बड़ी तो हमें हमारे को बहुत खुशी हो रही है। एक सरगम फिल्म का नाम है और गाने के बोल है डब्ल्यू वाले डब्ल्यू बजा।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का
1: और
0: गीत।
1: वैसे बहुत धन्यवाद।

0: तो ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लग गई है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 02228702888, 02240024662। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघविंद्र सिंह नेगी।
1: हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए पिटारा।
2: विविध भारती मुंबई से अभी आप सुन रहे थे पिटारा के अंतर्गत कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर।
3: कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
4: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
3: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
4: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
3: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करें,
4: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो

0: वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
1: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी, अपनी जुबानी। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
2: श्रोता, आपसे कुछ ही पलों में शाम के 5 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इससे अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं, इसलिए टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा इसी विचार को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष की संभावनाएं असीमित हैं।
1: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
0: श्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है।
1: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar south pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान के विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पानी और साफ सफाई, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों, शिक्षा और सामुदायिक विकास में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के योगदान पर चर्चा की। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से सोमवार तक राजधानी में ड्रोन और अन्य छोटे हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत यह आदेश जारी किया। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री सिंह ने कहा कि सम्मेलन में स्टार्टअप, वैज्ञानिक, उद्योग, उद्यमी और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारक एक मंच पर आएंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन 27 से 29 अक्टूबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। इस बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। सूचना और

0: प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज कश्मीर में मंत्रालय की मीडिया इकाइयों के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचारों और कार्यक्रमों तथा पत्र सूचना कार्यालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो की गतिविधियों की समीक्षा की। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज रात 8 बजे दुबई में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। उधर भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान? तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
2: लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आइए शुरुआत करते हैं फिल्म कटी पतंग के इस गीत से। किशोर कुमार की आवाज में, शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीतकार है RD बर्मन।

अगला गीत है फिल्म डॉन से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने और गीतकार है अनजान।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म इश्क से, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने, और संगीतकार है अनु मलिक।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत समाप्त होता है। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
1: अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि हमारे भट्टे पर जो नया मजदूर आया है उसके हाथ पैरों पर बहुत से दाग हैं। उसे इन पर चोट लगने से भी दर्द नहीं होता।
2: अरे ये तो कुष्ठ रोग का लक्षण है, तुम उसे अभी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाओ।
3: यदि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में कुष्ठ रोग का कोई भी लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं। यदि संदिग्ध व्यक्ति में कुष्ठ रोग पाया गया तो सरकार द्वारा सूचित करने वाले व्यक्ति को 250 रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
0: अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान।

एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। आज की 21वीं शताब्दी में हम टेक्नोलॉजी के जिंदगी में जी रहे हैं। आज तकनीक के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। परिवहन के लिए हम कार, बस, मोटरसाइकिल, प्लेन, ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। अपने मित्रों, परिवार से बात करने के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं। मनोरंजन के लिए अब तो LED TV हमारे पास है। रसोई में खाना, ओवन, मिक्सर, ग्राइंडर, इंडक्शन चूल्हा जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। घर की सजावट के लिए आज अनेक तरह के आधुनिक तरह के लाइट्स का इस्तेमाल होते हैं। गर्मी सर्दी के मौसम में राहत देने के लिए अब AC एयर कंडीशनर का इस्तेमाल बहुत प्रचलित हो गया है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हर घर में AC रहना कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज विज्ञान की मदद से टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है। अब हमको बिजली, TV, पंखा, एयर कंडीशनर, स्मार्टफोन, कंप्यूटर जैसे आधुनिक चीजों की आदत हो गई है। हम इसके बिना नहीं जी सकते हैं। हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे प्रचलित टेक्नोलॉजी उपकरण और सेवाएं, दैट इज कॉमन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यूज बाय अस, घरेलू उपकरण, पंखा, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिक पानी का मोटर, इन्वर्टर, जनरेटर, बिजली सप्लाई, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और घरेलू काम के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, कैमरा, संचार के लिए इंटरनेट सेवा, मनोरंजन के लिए टेलीविजन, सिनेमा, कपड़े धोने और सुखाने के लिए वॉशिंग मशीन और ड्रायर्स, ट्रांसपोर्ट के लिए मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, ट्रेन, एरोप्लेन्स, संचार यानी बात करने के लिए फोन, टेलीफोन, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, रसोई घर के लिए ओवन, मिक्सर, ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, इंडक्शन स्टोव, स्वास्थ्य लाभ के लिए दवाएं और आधुनिक चिकित्सा तकनीकी और सेवाएं जैसे एक्सरे मशीन्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: टेक्नोलॉजी के फायदे, एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। अब तो घर बैठे ट्रेन, प्लेन, बस का टिकट खरीदा जा सकता है। इसके अलावा अब अनेक ऐप से ट्रेन की स्थिति, विलंब स्थिति, अन्य जानकारी पा सकते हैं। घर बैठे शिक्षा। अब विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के कोर्स ऑनलाइन ही कर सकते हैं। इस तरह घर बैठे शिक्षा पाना संभव हुआ है। आज अनेक वेबसाइट पर लोग पढ़ाने का काम करते हैं। विद्यार्थी घर बैठे वीडियो देखकर पढ़ाई कर सकते हैं। अब महंगी फीस देकर ट्यूशन कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्री कॉलिंग और फ्री वीडियो की सुविधा भी है। आज कई नेटवर्क्स कम शुल्क में अच्छी और फ्री वीडियो और कॉलिंग सुविधा दे रही है। आजकल हम अपने मित्रों, प्रियजनों से असीमित मात्रा में बात कर सकते हैं। पहले ये संभव नहीं था क्योंकि फोन सेवाएं बहुत अधिक महंगी थी। अब हम वीडियो फ्री में अपने फोन या कंप्यूटर में देख सकते हैं। अब हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग करके बात कर सकते हैं। घर का काम हुआ आसान। अवन, मिक्सर, ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, इंडक्शन चूल्हा जैसे उपकरणों ने रसोई का काम सरल बना दिया है। आज की गृहिणी यानी होम मेकर्स वॉशिंग मशीन से कपड़े धोती है, इस तरह उसकी मेहनत बचती है। घर में रोशनी। अब एलईडी तकनीक वाले बल्ब बाजार में आ गए हैं जो बहुत कम बिजली लेकर अधिक रोशनी देती है। इस तरह बिजली की बचत होती है और देश के गांव-गांव में बिजली जा रही है। लोगों को बिजली के खर्चे में बहुत बचत हुई है। अब देश में अधिकतर महिलाएं गैस पर खाना पकाने लगी है। इससे उनको धुआं नहीं लगता है, उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से गैस के नए भंडार की खोज हुई है। गोबर और कचरे से भी रसोई गैस बनाने की तकनीक बनाई जा रही है। सीएनजी गैस के इस्तेमाल आजकल हर मेट्रो सिटी

सिटी में बस और अन्य वाहनों में हो रहा है। इससे वायु प्रदूषण कम हुआ है। आजकल डेंगू, मलेरिया, खासकर चिकनगुनिया, कैंसर, ओवेरियन डिजीज, टीबी, एस्मा, इनफर्टिलिटी और कई सारे डिजीजेस हो रहे हैं। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में रोज नए नए शोध और खोज हो रही है। इससे हमें बहुत लाभ हुए है। चिकित्सा की नई टेक्नोलॉजी आ जाने से भारत में मृत्यु दर में गिरावट आई है। दैट मीन्स द डेथ रेट हैज गॉन डाउन।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: तो दोस्तों, इसके नुकसान भी हैं। आधुनिक समय में टेक्नोलॉजी के नुकसान ये है कि हिंसा, खून खराबा वाले वीडियो गेम आजकल हर बच्चे खेल रहे हैं। कभी कभी तो लगता है कि टेक्नोलॉजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, मगर इसके नुकसान भी बहुत है। आज छोटे बच्चों को भी इंटरनेट की लत लग गई है। आजकल बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो सारा दिन फोन या कंप्यूटर पर ही चिपके रहते हैं। बच्चे घर के काम और जिम्मेदारी से भी बचने लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर सारा समय नष्ट कर देते हैं। अपने कीमती समय का इस्तेमाल अगर बच्चे पढ़ाई में करें तो उनको बहुत फायदा होगा, उनका भविष्य उज्जवल बनेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चे ज्यादा वक्त चैटिंग और वीडियो देखने में बिताते हैं, इस तरह उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। आजकल हैकर्स हमारे इंटरनेट बैंक अकाउंट के खाते को हैक करके पैसे की चोरी करते हैं। आए दिन ऐसी खबर आती रहती है, कुछ चोर ATM कार्ड बदलकर क्लोन बनाकर हमारे पैसे चुरा लेते हैं। इस तरह टेक्नोलॉजी ने भी हमारी समस्याएं बढ़ा दी है। आज लुटेरे और चोर हमें फर्जी कॉल करके परेशान करते हैं, हमारा बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड, OTP नंबर पूछते हैं। आज के लम्हे प्रोग्राम में हमने आपको टेक्नोलॉजी के अनेक फायदे और नुकसान बताए हैं। हमें इसका इस्तेमाल सोच समझ कर मानव कल्याण के लिए करना चाहिए। वेल, With this message, this is Chetan signing off for today. I'll get back to you in our next program. Till then, bye.
0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

और सुख आता है तो भटक जाते हैं। आपके सुविचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच है श्रोता मित्रों, जीवन को जीने का हमारा दृष्टिकोण हमेशा संतुलित और परिपक्व होना चाहिए। सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं, जल है तो कल है, वृक्ष है तो फल है। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से जी ने। मिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमानाज अंसारी और सुल्तान अंसारी, और शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज के प्रेरक प्रसंग में एक बार फिर से हम याद करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर को, जब अंग्रेजी शासन का शिकंजा भारत पर कसता जा रहा था। हम आजादी के बहुत से अमर शहीदों के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम तीन ऐसे नौजवानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, लगभग नहीं के बराबर। मित्रों, अगर मैं कहूं कि मात्र 18, 19 या 22 साल के तीन आजादी के दीवाने नौजवान अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित सरकारी भवन में घुस गए थे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? असंभव सा लगता है ना, लेकिन ऐसा हुआ। वे तीन जवान थे, बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। उन दिनों कोलकाता में अंग्रेजों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दफ्तर था, जो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था। ये ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था। बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी वहीं बैठते थे। ये 8 दिसंबर 1930 की घटना है। सामान्य दिन था। अंग्रेज अधिकारी अपने दफ्तर यानी राइटर्स बिल्डिंग में आ चुके थे और अपना काम कर रहे थे। महत्वपूर्ण जगह होने के कारण वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत कड़ी थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सुरक्षा का घेरा तोड़कर बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता उस भवन में प्रवेश कर जाएंगे। लगभग दोपहर की बात है, वे तीनों युवा क्रांतिकारी भवन में घुस गए। उस दफ्तर में कई भारतीय भी काम करते थे, इसलिए उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों जैसा पहनावा पहना और अंदर प्रवेश किया। उनके निशाने पर थे लेफ्टिनेंट कर्नल एनएस सिम्पसन, जो जेलों में भारतीय राजनीतिक बंदियों के साथ कठोर व्यवहार के लिए कुख्यात माने जाते थे। और देखते ही देखते तीनों ने लेफ्टिनेंट कर्नल सिम्पसन पर गोली चला दी। कर्नल की वही मृत्यु हो गई। इसके बाद वही हुआ जो आमतौर पर होता है, राइटर्स बिल्डिंग के अंदर ही ब्रिटिश पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई। तो श्रोताओ, आप जरूर जानना चाहेंगे कि क्या वे तीनों वहां से निकलने में सफल हुए? इसका उत्तर है नहीं। उन्होंने प्रण कर लिया था कि किसी भी कीमत पर अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। वे समझ गए थे कि अब बच निकलना लगभग असंभव है। तो नौजवान बादल गुप्ता और बिनॉय ने स्वयं को गोली मार ली। बादल गुप्ता की वहीं पर मृत्यु हो गई। बिनॉय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद 13 दिसंबर 1930 को उनकी भी मृत्यु हो गई। उनके साथी दिनेश गुप्ता घायल अवस्था में पकड़े गए, उन पर मुकदमा चला और 7 जुलाई 1931 को अलीपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। और अब जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद देश ने इन तीनों की स्मृति को कैसे जीवित रखा। कोलकाता के बेहद प्रसिद्ध डलहौजी हाउस का नाम बदलकर बीबीडी बाग यानी बादल, बिनॉय और दिनेश रखा गया और एक स्मारक बनाया गया। श्रोताओं, एक बात बहुत स्पष्ट है, वो ये है कि हम इन क्रांतिकारियों के साहस और बलिदान को आभार के साथ याद करते हैं, लेकिन हिंसा को जीवन का रास्ता नहीं मानते। हम बस उस दौर के इतिहास को उस समय के संदर्भ में समझते हैं। तो श्रोताओं, जब हम बीडीडी बाग का नाम सुने तो केवल उसे कोलकाता की एक जगह समझकर नजरअंदाज न कर दें। हम जरूर याद करें इन क्रांतिकारी युवाओं को, देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। आजादी को केवल एक विशेषाधिकार की तरह ही नहीं, बल्कि एक उत्तरदायित्व की तरह भी देखें, और जिन्होंने देश के लिए अपना आज दे दिया। हम उनके बलिदान को याद करके अपने आज को बेहतर बनाएं। तो श्रोताओ, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। आप 8800044559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। करते हैं शुरुआत गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी कलावती सोनी जी द्वारा भेजे गए सुविचार के साथ। बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। सचमुच कैसे नादान हैं हम सब। दुख आता है तो अटक जाते हैं,

0: के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बरसात और मेंढक। इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें पशु पक्षियों और संपूर्ण जीव जगत का ख्याल रखना चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए।
1: बरसात और मेंढक।

0: सोमारु और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सोमारू चले घास लेने।
3: घास घास थोड़ी सी घास ले ले,
0: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
4: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
0: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
3: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
0: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
4: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
0: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
1: बादल तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो, थोड़ा बरस जाओ ना।
0: बादल बोले,
5: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
0: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
6: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
1: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
0: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
7: तो बच्चों, सुना आपने, बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है

0: बालक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ,
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में रूस के एक भालू से जुड़ी एक घटना के बारे में बताया गया है और ये संदेश दिया गया है कि हमें अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को पूरी तरह से पहचानना चाहिए।
0: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है? सोचिए जरा, बताइए तो।
0: अच्छा चलिए हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
0: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई, वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
1: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
0: दोस्तों जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
1: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
0: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: और अब सुनते हैं एक सुंदर गीत।
3: फूल सी गुड़िया हमारी,

0: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर।
3: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
3: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
4: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
3: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
4: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
3: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
4: कम खर्च, बड़ी पहुंच।
3: आकाशवाणी चंडीगढ़।

श्रोताओ, आपसे कुछ ही पलों में शाम 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: हैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रहे हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज इनफाइनाइट, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कलेक्टिव। एज ऑर्बिट्स बिकम मोर क्राउडेड, टेक्नोलॉजीज मोर पावरफुल एंड एक्टर्स मोर न्यूमरस।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
1: India's approach is rooted in Vasudhaiv Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग इस सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति शी 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वैश्विक अस्थिरता, पश्चिम एशिया में संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये यात्रा ब्रिक्स सहयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल मानी जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से सोमवार तक राजधानी में ड्रोन और अन्य छोटे हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत ये आदेश जारी किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में स्टार्टअप, वैज्ञानिक, उद्योग, उद्यमी और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारक एक मंच पर आएंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने दूरदराज और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में भरोसेमंद बिजली विकल्प उपलब्ध कराने में लघु जलविद्युत परियोजनाओं के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री नाइक ने आज भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी के पूर्वावलोकन कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में उल्लेखनीय बदलाव आया है। और खेलों में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज रात 8 बजे दुबई में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। और भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में भी अपना स्थान पक्का कर लिया है। अब 12 सितंबर को सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz ते ए आकाश

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
2: अरोड़ा प्लाईवुड,
3: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
2: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845, NAC मनी माजरा, चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
4: आहुन सुनदियां साधना सरगम ते मन हर उदास दियां आवाजा च, घुंगरू फिल्म दा गीत, बोल अनजान दे ते संगीत कल्याण जी आनंद जी दा।

0: ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अमिट योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में 1890 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में व्यवस्था बदलने का काम हुआ। लाभार्थियों को सीधे अपने खातों में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला। कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ. राम प्रताप सिहाग ने जैविक एवं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। हिसार कृषि विश्वविद्यालय में हुई कार्यशाला में रबी फसलों के लिए पैकेज और प्रैक्टिसेस के तहत 21 नई सिफारिशों को मंजूरी दी गई और मेरा युवा भारत ने युवाओं से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में मोदी ने कहा कि उन्होंने दिवंगत आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अमिट योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में 1890 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की। इसमें 35 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में डाले गए 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के 1130 करोड़ रुपए शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 11वीं किस्त के रूप में 10 लाख से अधिक महिला लाभार्थियों को 212 करोड़ रुपए और हर घर हर गृहिणी योजना के तहत 5 लाख महिलाओं के खातों में गैस सिलेंडर सब्सिडी के 19 करोड़ 68 लाख रुपए जारी किए गए हैं। वहीं उद्योगों और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए 670 उद्यमियों को 311 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की गई है। किसानों को भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत 6177 किसानों को 49 करोड़ 89 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है, जबकि दयालु योजना के तहत 4520 प्रभावित परिवारों को 168 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में व्यवस्था बदलने का काम हुआ है। आज विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की राशि सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रही है। वे आज चंडीगढ़ में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में राशि हस्तांतरित करने के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां हर वर्ग को सम्मान से जीवन जीने और आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं।
1: हर महीने 10 तारीख को लाभार्थियों के खाते में पैसा डायरेक्ट पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारा कमिटमेंट भी है कि हर लाभार्थी को उसका लाभ पहुंचे। मोदी जी के नेतृत्व में जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां पर हम गरीब व्यक्ति को मजबूत और किसान, महिलाओं, युवाओं को सशक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना के तहत 10,10,000 बहनों के खाते में आज हमने 212 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि जारी की है।
2: बैंक खाते में आज हमने जुलाई माह का 19 करोड़ 68 लाख रुपए की सब्सिडी जो हम देते हैं, वो पैसा डालने का काम आज किया। आज जारी की गई राशि को मिलाकर के अब तक 14,65,000 पात्र बहनों के बैंक खातों में अब तक 359 करोड़ 82 लाख रुपया हमने जमा करा दिया है।
0: विधानसभा सदन में काले कपड़े पहनकर आने वाले कांग्रेस नेताओं की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि जनता उनके शासनकाल में हुए शोषण और प्रताड़ना को भूली नहीं है। विपक्ष के पास आज सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं बचा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वोट पाने के लिए घोषणाएं करना और सत्ता में आते

0: ही भूल जाना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की राजनीति का तरीका रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार राज्य में नशा रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर राम प्रताप सिहाग ने कहा है कि जैविक एवं प्राकृतिक खेती करने वाले कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में पंजीकृत किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी। वे आज हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि अधिकारियों और वैज्ञानिकों की 2 दिवसीय रबी कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मोरनी खंड को पूर्ण रूप से जैविक घोषित करने पर काम कर रही है। वहीं कुरुक्षेत्र में 2,000 एकड़ भूमि का तैयार किया जाएगा, जहां प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के नुकसान की पूरी भरपाई सरकार करेगी। इसके अलावा जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए हिसार और गुरुग्राम में नई जैविक मंडियां बनाई जाएंगी। विस्तार शिक्षा निदेशक डॉ. नरेश कौशिक ने बताया कि कार्यशाला में रबी फसलों के लिए पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस के तहत 21 नई सिफारिशों को मंजूरी दी गई है।
1: सरसों की पहला हाइब्रिड पब्लिक सेक्टर का RH 2101 हमारे विश्वविद्यालय द्वारा रिलीज किया गया है, उसको अनुमोदित किया गया है लगाने के लिए। गन्ने की 2 नई वेराइटीज की बात की गई है। जैसे हम पहले 2 या 3 बड से सीड बनाते थे, वो अब सिर्फ सिंगल बड से सीड बनाते थे, जिससे कि बीज की मात्रा कम हो जाएगी। इसी तरह गन्ने की फसल की लाइन से लाइन दूरी बढ़ाई गई है। इसी तरह से सरसों में लाइन टू लाइन बिजाई की दूरी बढ़ाई गई है। 2 सिफारिशें हमारी बायो फर्टिलाइजर को लेके आई है, जिसको हम जीवाणु खाद भी कहते हैं। उसमें एक तरल बायो फर्टिलाइजर है, उसकी मात्रा को लेके है सभी फसलों में, और दूसरा जो हम बायो फर्टिलाइजर हमारे यहाँ से बना के देते हैं।
0: मेरा युवा भारत फरीदाबाद ने युवाओं से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 और राष्ट्रीय युवा महोत्सव में बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की है। आज फरीदाबाद में जिला युवा अधिकारी प्रियंका मलिक ने बताया कि पहले चरण की प्रक्रिया माय भारत पोर्टल पर डिजिटल प्रश्नोत्तरी के जरिए शुरू हो चुकी है।
2: जो इसकी फर्स्ट स्टेज है वो डिजिटल फॉर्म में है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी जो लाइव चल रही है क्विज के माध्यम से। सेकंड जो इसका राउंड होगा स्टेट लेवल पे, वो भी डिजिटल माध्यम से होगा। उसमें जो है युवाओं को एसे राइटिंग करनी होगी और अपना सबमिशन करना होगा माई भारत पोर्टल पर। 50 यूथ को चयन किया जाएगा दिस 2 राउंड्स के बाद। स्टेट लेवल पे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग आयोजित होगा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट 2 युवाओं का चयन होगा। इसके बाद नेशनल राउंड पे युवाओं को जाने का मौका मिलेगा।
0: उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता के लिए भारत को 10 क्षेत्रों में बांटा गया है।
2: पूरे इंडिया को 10 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। जो फरीदाबाद जिला है और जो हरियाणा है, वो नीति नगर रीजन को नाम दिया गया है उन्होंने, नेशनल कैपिटल रीजन, जिसमें 4 जो स्टेट है वो है दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा। और जिसका जो नेशनल लेवल का टॉपिक रहेगा गवर्नेंस विकसित भारत @2047 में, यूथ कैसी गवर्नेंस चाहते हैं।
0: अम्बाला में भी आज मेरा युवा भारत द्वारा पत्रकार वार्ता कर युवाओं को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 में भाग लेने की अपील की। मेरा युवा भारत अम्बाला की उपनिदेशक दीक्षा मिश्रा ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य 15 से 29 वर्ष के युवाओं को विकसित भारत 2047 के निर्माण से जोड़ना और उन्हें नवाचार व अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। सुश्री दीक्षा मिश्रा ने सभी युवाओं से प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अमिट योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में 1,890,16,00,000 रुपये की राशि हस्तांतरित की। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में व्यवस्था बदलने का काम हुआ, लाभार्थियों को सीधे अपने खातों में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी ए, हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। पंजाब के राज्यपाल ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने आज चंडीगढ़ में एक सेहतमंद, सुरक्षित, नशा मुक्त शहर बनाने लिए समुचे समाज की मुहिम का सदा दिता। पंजाब ते यूएई दरमियान व्यापारक निवेश ते सनती भाईवाली नूं होर मजबूत करने लिए शारा चैंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अते इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल कौंसल नाल रणनीतिक गलबात। पंजाब के साबका मंत्री भगत चुन्नी लाल दा आज पूरे सरकारी सन्माना नाल अंतम संस्कार कर दिता गया है। माई भारत पंजाब ने सूबे भर के 15 से 29 साल की उम्र के नौजवानों को myBharat.gov.in पोर्टल से रजिस्टर करन अते विकसित भारत को इस नूं करन दी अपील की थी। ते भारत अज चीन दे मुखी विखे पाकिस्तान नूं 9-0 नाल हरा के औरतां दे जूनियर हॉकी एशिया कप दे सेमीफाइनल विच पहुंच गया है। हुण खबरां विस्थार नाल। पंजाब के राज्यपाल अते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने आज चंडीगढ़ में एक सेहतमंद, सुरक्षित, नशा मुक्त शहर बनाने लिए एक निरंतर रहनयोग समुचे समाज की मुहिम का सदा दिता। उन्होंने नशा तस्करों को चेतावनी दी कि वह गैर कानूनी व्यापार छड़ देन जां तेज कार्रवाई का सामना करन। इस ही उन्होंने जोर देकर कहा कि नशाखोरी नाल जूझ रहे व्यक्तियों नाल हमदर्दी नाल पेश आना चाहिए अते नशियां दी लत तो बाहर आउण, सिक्ख्या ते रुजगार वल उन्हां दी यात्रा विच उन्हां दी मदद कीती जानी चाहीदी है। ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ SHGs ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਸ਼ਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,
3: चंडीगढ़ से इसकी ऐसी शुरुआत करें, यहाँ सब लोगों को भी साथ लें, सब समाजों को साथ में लें, सब धर्म गुरु को साथ में लें, सारे विश्वविद्यालय, स्कूल है, एसोसिएशन है, प्रशासन है, सब मिल करके एक ऐसा अभियान हम शुरू करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि कम से कम सितंबर 30 तक चंडीगढ़ में कम से कम नशा न बिक पाए। ये हमारी पहली प्रायोरिटी है जिसको हम धरती पर उतारने के लिए जो भी संभव हो सकता है प्रशासन से, पुलिस से, यहाँ के लोकल लोगों से वो मिलकर के अभियान करेंगे ताकि कम से कम देश के सामने एक उदाहरण पेश कर सके। यदि प्रयत्न करें तो सफलता मिलेगी।
2: श्री कटारिया ने जोर देकर कहा कि नशे विरुद्ध बचाव की पहली ढाल परिवार है, जदों कि स्कूलों के अध्यापकों को बच्चों को सेहतमंद अते उद्देश पूर्ण जीवन वल सेध देनी चाहिए है। उन्होंने विशेष तौर पर मुहिम को जमीनी पद्धर से ले जाण अते प्रभावित परिवारों को सलाह, इलाज से मुड़ वसीबा नाल जोड़न विच सह सहायता समूहों की भूमिका की शलाघा की। इकट्ठ नूं संबोधन करदिया मेयर श्री सौरभ जोशी ने भी नशा तस्कर विरुद्ध सख्त शब्दां च कहा कि नशे दे सौदागरां दे घरां ते बुलडोजर चलवाए जाने चाहीदे ने। उन्होंने श्री कटारिया नूं अजिही कार्रवाई लई इजाजत देण दी बेनती कीती अते चंडीगढ़ प्रशासन दे संबंधित अधिकारियों नूं कानून अनुसार इस संबंध विच जरूरी कदम चुकण दे निर्देश दित्ते। पंजाब की यूएई निवेश पहुंच नूं अगले पड़ाव ते लिजांदिया सूबे दे व्यापार ते सनअत मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने पंजाब ते यूएई दरमियान व्यापारक निवेश अते सनअती भाईवाली नूं होर मजबूत करने लई शारजा चैंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अते इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल कौंसल IBPC नाल रणनीतिक गलबात कीती। ये गलबात कारोबार तो कारोबार B2B संबंधां नूं मजबूत करन अते एक संगठित ढांचा स्थापित करन ते केंद्रित सी तां जो पंजाब अते शारजा दे उद्यमियों नूं भाईवाल लभण, सांझे उद्यम

0: बुलेटिन खत्म होंदा है। नमस्कार,
1: असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं FM 107.2 MHz ते। श्रोतिया हुण सुनदे हैं प्रोग्राम समाचार दर्शन।
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है हरियाणा में ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के क्रियान्वयन को लेकर विभिन्न जिलों के नगर आयुक्तों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और स्वच्छ भारत मिशन के संयोजकों से बातचीत एवं जन प्रतिक्रिया। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अधिसूचित किए गए ठोस कचरा प्रबंधन के नए नियमों के प्रति जागरूकता लाने के लिए और उन्हें धरातल पर लागू करने के लिए 7 सितंबर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हरियाणा में ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 पर अमल को लेकर चल रही गतिविधियों की जानकारी लेने के लिए हमने विभिन्न जिलों के इन नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के साथ बातचीत की। जींद में जिला नगर आयुक्त अनिल कुमार ने ठोस कचरा प्रबंधन के नए नियमों के बारे में जानकारी साझा की।
3: 2026 में हमारे ठोस कचरा प्रबंधन के नए नियम नोटिफाई हुए हैं और उसके बेस पे अब सेग्रीगेशन पॉइंट है, जैसे घरों में हमारा कचरा इकट्ठा होता है तो वहीं पे हमें इसको अलग अलग करना चाहिए। जो नए नियम है उसमें चार तरह से हमें सेग्रीगेट करना चाहिए, जिसमें कि एक तो हमारा ड्राई वेस्ट है, ड्राई वेस्ट में हमारा जो भी उसको रिसाइकल कर पाए, जैसे प्लास्टिक है, रबड़ है, मेटल्स वगैरह है, उसको हम ड्राई वेस्ट में लेते हैं। और उसके बाद है वेट वेस्ट में हमारे जो हमारी रसोई में जो भी फल सब्जियां वगैरह यूज होती हैं, किचन वेस्ट को हम वेट वेस्ट की तरह अलग करेंगे। फिर एक होता है हमारा डोमेस्टिक हजार्ड, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं, पेंट्स हैं, केमिकल्स वगैरह है, उसको हम डोमेस्टिक हजार्ड में सेग्रीगेट करेंगे। और उसके बाद फिर जो हमारे सैनिटरी वेस्ट होते हैं उसको हम एक जो अलग कैटेगरी है सैनिटरी वेस्ट की, उसमें हमें ऐसे अलग अलग सेग्रीगेट करके प्रबंधन करवाना चाहिए। इसके लिए जो हमारा बीन का जो कलर कोड है वो भी चेंज हो गया। जो हमारा ड्राई वेस्ट होता है उसको हम ब्लू कलर के बीन में डालते हैं और जो किचन का जो वेट वेस्ट होता है उसको हम ग्रीन कलर के डस्टबिन में डालेंगे। और उसी तरह जो हमारा रेड कलर का जो डोमेस्टिक हजार्ड था, जिसमें CFL वगैरह इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं, पेंट वगैरह, उनको हम रेड बीन में डालेंगे और सैनिटरी वेस्ट के लिए ब्लैक कलर है।
2: श्री अनिल कुमार ने बताया कि जींद में इन नियमों को लागू किया जा रहा है।
3: अब इसमें डोर टू डोर कलेक्शन करना कचरे की, वो एक कंपलसरी प्रोसेस है और जींद में हम ये रेगुलर उस पे कर रहे हैं। तो लोगों से मेरी यही अपील है कि आप एक तो जो भी हमारा कचरा घरों में पैदा होता है उसको हम इधर उधर ना फेंके, और जो भी म्यूनिसिपैलिटी का व्हीकल आपके पास आता है आप उसी में इसको डिस्पोज करें। और उसके बाद भी आप इसको, जैसे हमने डिस्कस करा, चार अलग अलग कैटेगरी में इसको सेग्रीगेट करके और फिर जो म्यूनिसिपैलिटी का व्हीकल आता है उसी में इसको डालें। स्वच्छता के लिए बहुत एक अच्छा योगदान होगा हर सिटीजन का। इसके अलावा जो ठोस कचरा प्रबंधन में जो हमारी बड़ी बड़ी सोसाइटियां होती हैं शहरों में, या फिर जो बड़े होटल्स वगैरह हैं, जो भी ऐसे इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े कमर्शियल इंस्टीट्यूट हैं जहां की उनका कचरा ज्यादा मात्रा में पैदा होता है, तो अब ये उनकी खुद की जिम्मेवारी है, जिसको हम बोलते हैं BWG, यानी कि बल्क वेस्ट जनरेट। इनको जहां भी जो भी ऐसे संस्थान जहां 40,000 लीटर पर डे से ज्यादा पानी खर्च होता हो, या फिर जिनका एरिया 20,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा हो, या फिर जिस उसमें 100 किलो से ज्यादा प्रतिदिन कचरे की उत्पत्ति होती हो, इनको हम बल्क वेस्ट जनरेटर बोलते हैं। इसमें भी इनकी जिम्मेवारी खुद की है कि खुद ही इसको सेग्रीगेट करेंगे और खुद इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, जो भी हमारे 2026 के नियम। तब लोगों से अपील भी की जाती है कि हम अपने आसपास के वातावरण का ख्याल रखें, उसको स्वच्छ और शुद्ध बनाएं।
2: कुरुक्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत काम कर रहे टीम लीडर अजय कुमार ने थानेसर नगर परिषद में इन नियमों के तहत हो रहे काम पर बातचीत की।
4: नगर परिषद थानेसर द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 एवं स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अनुरूप लगातार जन जागरूकता एवं IC गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। 4 Bin 1 Habit के अंतर्गत घर घर जाकर व्यवसायिक एवं बाजार क्षेत्रों तथा सार्वजनिक स्थलों पर नागरिकों को स्रोत स्तर पर कचरा पृथकीकरण और उचित कचरा निस्तारण के लिए जागरूक किया जा रहा है। स्थानेसर के प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों जैसे ब्रह्म सरोवर, साइंस म्यूजियम, कृष्ण संग्रहालय, भद्रकाली मंदिर एवं

0: शेख चिल्ली मकबरा पर आने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को भी स्वच्छता के बारे में बताया जाता है कि कैसे कचरा निर्धारित स्थान पर डालें। इसके साथ साथ ही विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, छोटे इंस्टीट्यूशन में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को कचरा पृथकीकरण, पुनर्चक्रण और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध नुक्कड़ नाटक एवं विशेष जागरूकता अभियान भी लगातार नगर परिषद थानेसर द्वारा चलाए जाते हैं।
1: श्री अजय कुमार ने बताया कि कचरे से लैंडफिल का काम किया जा रहा है।
0: क्षमता निर्माण प्रशिक्षण के अंतर्गत बल्क वेस्ट जनरेटर एवं अन्य संबंधित हितधारकों को रोकथाम, कमी, पुनः उपयोग, पुनःकरण, पुनः प्राप्ति तथा लैंडफिल, इसका उद्देश्य है कि कचरे को कम से कम उत्पन्न किया जाए, अधिकतम पुनः उपयोग एवं पुनर्चक्रण किया जाए और केवल अवशिष्ट कचरे को लैंडफिल तक भेजा जाए। इस प्रकार से नगर परिषद द्वारा जन जागरूकता, स्रोत पृथकीकरण, क्षमता निर्माण एवं वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन के माध्यम से स्वच्छ एवं कचरा मुक्त थानेसर की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।
1: अम्बाला सदर से नगर परिषद में स्वच्छ भारत मिशन की संयोजक ऋतु शर्मा ने बताया कि ठोस कचरा प्रबंधन के नए नियमों के तहत गीले और हर प्रकार के सूखे कचरे का इस तरह प्रबंधन किया जा रहा है कि उन्हें पुनः इस्तेमाल में लाया जा सके।
2: शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में नगर परिषद अम्बाला सदर की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे घरों, दुकानों, बाजारों से प्रतिदिन अलग अलग प्रकार का कचरा निकलता है। इस कचरे का सही प्रबंधन करना पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत जरूरी है। नगर परिषद अम्बाला सदर द्वारा गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करने पर जोर दिया जाता है। सूखे कचरे जैसे प्लास्टिक, कागज, गत्ता, कांच, धातु आदि को एमआरएफ प्लांट यानी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में ले जाकर अलग अलग किया जाता है। यहाँ उपयोगी और रिसाइकल होने वाली सामग्री को अलग अलग करके उसका दोबारा उपयोग या रिसाइकलिंग किया जा सकता है। इससे कचरे की मात्रा कम होती है और संसाधनों की बचत होती है। वहीं दूसरी ओर गीले कचरे जैसे सब्जियों और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन और अन्य जैविक कचरे से खाद बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में कचरे का उपयोगी रूप से परिवर्तन होता है और प्राकृतिक खाद प्राप्त होती है।
1: सुश्री ऋतु शर्मा ने कहा कि नए नियमों पर पूर्ण अमल में नागरिकों की सहभागिता जरूरी है।
2: इस पूरी व्यवस्था को सफल बनाने में हम नागरिकों को भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने घर से गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके दें तो कचरे का प्रबंधन और भी प्रयास और आसान और प्रभावी हो सकता है। इससे हमें प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना चाहिए, कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करना चाहिए।
1: कैथल में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलजार मलिक ने बताया कि नए नियमों के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है।
3: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 की अनुपालना में जिला कैथल के सभी गांवों के अंदर विभिन्न एक्टिविटीज संपूर्ण कर ली गई है। इसमें अभी तक लगभग 180 के करीब जो काम है वो हो पाए हैं, चाहे उसके अंदर गीला और सूखा जो कचरा अलग करने के लिए डस्टबिन बनाने हैं गाँवों के अंदर, या फिर विभिन्न गाँवों के अंदर जो ठोस कचरा प्रबंधन के शेड बनाने हैं वो हमने संपूर्ण कर लिए हैं।
1: श्री गुलजार मलिक ने बताया कि शहरों ही नहीं गाँवों में भी ठोस कचरा प्रबंधन के नए नियम लागू किए जा रहे हैं।
3: सभी BDPO को निर्देशित किया है कि वो अपने स्तर पर गांवों का निरीक्षण करके वहां पर ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको तुरंत उनका समाधान करने की कोशिश करें और जो भी उनके स्तर पर जो कार्रवाई की जाती है उसको रिटर्न में हमारे पास भेजें। इस तरीके से कैथल शहरी क्षेत्र के अंदर ठोस कचरा प्रबंधन के प्रयास किए जा रहे हैं, उसी तर्ज पर गांवों के अंदर ठोस कचरा प्रबंधन के जो प्रयास हम कर रहे हैं और निकट भविष्य में हम कोशिश ये करेंगे कि पूरे जिले को इसमें कवर करके हर एक गांव के अंदर ठोस कचरा प्रबंधन के शेड बनाए जाएं और वहां पर ठोस कचरा प्रबंधन के निर्देशानुसार जो भी कार्रवाई करनी है वो संपूर्ण हो।
1: पंचकुला नगर निगम के आयुक्त विनय कुमार ने कहा कि नए नियमों में कचरे के स्रोत और पृथककरण का महत्व और बढ़ गया है।
4: पंचकुला नगर निगम द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। हमारा मुख्य फोकस है कचरे पर का स्रोत पर पृथककरण, डोर टू डोर कलेक्शन, कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण और उचित निस्तारण सुनिश्चित करना। इसके साथ खुले में कचरा फेंकने, अवैध डंपिंग और कचरा जलाने जैसी गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। बल्क वेस्ट जनरेटरों को भी नियमों के अनुरूप अपने स्तर पर कचरे के प्रबंधन के लिए प्रेरित और निर्देशित किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा डिजिटल मॉनिटरिंग, जन जागरूकता और फील्ड स्तर पर नियमित निरीक्षण के माध्यम से पूरी व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य केवल कचरा उठाना नहीं बल्कि कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन, संसाधनों का बेहतर

0: उपयोग सुनिश्चित करना है।
1: हमने फरीदाबाद के पंकज ग्रोवर से ठोस कचरा प्रबंधन के नए नियमों पर प्रतिक्रिया ली।
2: सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 को सही तरीके से फॉलो किया जाए तो ना तो बंदवाड़ी जैसे कूड़े के पहाड़ खड़े होंगे और ना ही शहरों में कीचड़ का अंबार लगेगा। होगा तो साफ सुथरा शहर और एक स्वच्छ भारत का निर्माण होगा।
1: इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ FM 107.2 MHz ਤੇ।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: श्रोतियों, बस हुन तो कुछ ही देर बाद तुसी सुनोगे विविध

जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी साथियों को सलमा की ओर से सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। फौजी साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए दलेर मेहंदी, चित्रा और साथियों की आवाजों में। गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने, संगीत है AR रहमान का और फिल्म का नाम है रंग दे बसंती।

फौजी साथियों, मुस्कान इस फिल्म का गीत सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है निखिल विनय का और फिल्म का नाम हमने आपको बताया मुस्कान।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: संग्राम। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक की आवाज में। गीतकार है समीर, संगीतकार है नदीम श्रावण और फिल्म का नाम था है संग्राम।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: संघर्ष, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं सोनू निगम की आवाज में। गीतकार है समीर, संगीत है जतिन ललित का।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: फौजी साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हर लम्हा हर पल देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
3: कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती,

0: वो मिलते हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
1: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
2: अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। फौजी साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है विनोद राठौड़, अलका याग्निक की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, तर्ज है नदीम श्रावण के। फिल्म का नाम है दीवाना।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाजों में। इस गीत को लिखा है समीर ने, धुन है आनंद मिलिंद की और फिल्म का नाम है सुहाग।

हुण पेश ने मुख प्रदेशक खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्गी आगा खान चौथे अते विकास कार्जा विच उन्हां दे अमिट योगदान नूं याद कीता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वख-वख भलाई योजनावां दे लाभपात्रियां दे खात्यां विच डीबीटी राहीं 1,890,16,00,000 रुपए दी रकम ट्रांसफर कीती। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यवस्था बदलन दा काम कीता, हुण लाभपात्रियां नूं लोक भलाई योजनावां दे लाभ सिद्धे उन्हां दे खात्यां विच मिल रहे ने। खेतीबाड़ी विभाग दे वधीक निर्देशक डॉ. राम प्रताप सिहाग ने जैविक अते कुदरती खेती नूं उत्साहित करन ते जोर दिता। उन्हां कहा कि जैविक अते कुदरती खेती करन वाले अते खेतीबाड़ी अते प्रोसैसड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथार्टी नाल रजिस्टर्ड किसानां नूं प्रति एकड़ 10,000 दी सबसिडी मिलेगी। अज हिसार खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी विखे आयोजित वर्कशाप विच हाड़ी दियां फसलां लई 21 नवीं सिफारशां नूं मंजूरी दित्ती गई। हरियाणा

0: श्रोताओं, हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं गुरमीत रामलमी द्वारा लिखित और निर्देशित झलकी मुबारकबाद।
1: श्रीधरन, अरे ओ श्रीधरन, श्रीधरन तुम भी अजीब आदमी हो। पुकारते पुकारते मेरा गला भी खुश्क हो गया। तुम हो कि अपनी धुन में ही चले जा रहे हो।
2: बंधु तुम, सॉरी यार, मैंने ध्यान नहीं दिया।
1: श्रीधरन, तुम्हारे साथ ये कोई नई बात तो है नहीं।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: श्रीधरन, होना क्या है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है।
2: बंधु, हम तो ये जानते

0: हैं कि वही होता है जो मंजूरे बंधु होता है।
1: क्यों हम बेकार में फूंक दे रहे हो यार? तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
0: बंधु, पहले तुम्हारा इनसे परिचय तो।
1: अरे इतनी जल्दी भी क्या है?
0: क्यों,
1: परिचय तो वहां किया जाता है जहां इंसान की कोई जानकारी ना हो।
0: कैसी जानकारी?
1: श्रीधरन के शौक के बारे में किसको पता नहीं?
0: शौक? कैसा शौक?
1: वैसे ऐसा शौक पालना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं, क्योंकि तुम्हारी तरह हर कोई ट्रिकबाज नहीं हो सकता।
2: आप किन बातों में उलझ गए? आगे क्यों नहीं चलते?
1: मैडम, मिस्टर श्रीधरन जी हमारे भी घनिष्ठ मित्र हैं। अगर अब नहीं है तो क्या हुआ? पहले तो थे ही। प्लीज हमें भी दो बातें करने दो।
2: आपके घनिष्ठ मित्र जरूर होंगे, लेकिन इस वक्त तो बोर मत कीजिए।
1: श्रीधरन जी, ये नई चिड़िया कहां से?
0: बंधु, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो?
1: जी कहना क्या है, मैं वही तो कह रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ।
0: क्या देख रहे हो?
1: नई चिड़िया।
0: क्यों बार बार बेसिर पैर की हाँक रहे हो? तभी तो मैंने शुरू में ही कहा था कि तुम्हारा इनसे परिचय करा दूं।
2: ये आपके कैसे मित्र हैं जी? मुंह में जो आता है बोले जा रहे हैं।
0: रेखा, डोंट माइंड, इन्हें दिल लगी करने का शौक है।
1: मैंने सोचा था कि किसी दिन श्रीधरन के हाथ में कुमुदनी का हाथ होगा और मैं दोनों को मुबारकबाद दूंगा, पर तुम तो अभी अपना शौक ही पूरा कर रहे हो।
0: बंधु भाई, मजाक छोड़ो भी, इस वक्त भी मुबारकबाद देने का ही शुभ अवसर है। मैं कब से कह रहा हूं कि रेखा मेरी पत्नी ही तो है, 2 हफ्ते पहले ही तो हमारी शादी हुई है।
1: अच्छा, रियली? आप दोनों की शादी हो चुकी है?
0: जी हाँ, बिल्कुल हो चुकी है। पर तुम मेरी कोई बात सुनो तब ना।
1: इसका मतलब यह हुआ कि बेचारी कुमुदनी के साथ सिर्फ शौक का ही इश्क चल रहा था।
0: कुछ कहने से मैं तुम्हें रोक तो सकता नहीं, पर अब रेस्टोरेंट में चलते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे और तसल्ली से बातचीत करें।
1: डियर, अब नहीं, मैं भी मिसेस के इंतजार में हूं, हमें कहीं जरूरी पहुंचना है, उसने पहले ही देर कर दी है। ओके, शादी की मुबारकबाद, अब चलता हूं, फिर मिलेंगे।
2: अब खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? क्या आगे नहीं जाना है?
0: इस बंधु के बच्चे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है।
2: लेकिन एक बात तो पक्की है कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता।
0: उस बंधु के कहने मात्र से ही तुम्हें आग नजर आने लगी है?
2: ज्यादा बहाने मत बनाओ।
0: भला मैं क्यों बहाने बनाने लगा?
2: अपराधी आदमी के पास बहाने बनाने के अलावा और कुछ नहीं होता।
0: देखा, सच मानू कुमंदनी नाम की किसी लड़की को मैं जानता तक नहीं। मैं यही सोच रहा था कि बंधु ने उसका नाम कैसे लिया।
2: जब आपका शौक ही ऐसा रहा है तो किस किस का नाम याद रखोगे?
0: तुम्हारे वहम का इलाज मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि तुमसे शादी से पहले और ना ही अब मेरा किसी से कोई सरोकार नहीं है।
2: झूठ बोलने के लिए किसी तरह का प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं होती, जरा सी जुबान ही तो हिलानी होती है। मैं साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने ये एक्स्ट्रा शौक पालने हैं तो हमारा साथ साथ रहना नामुमकिन है। मैं जा रही हूँ।
0: रेखा प्लीज, गुस्से को थूक दो, मैं जो बता रहा हूँ उस पर यकीन करो।
2: पीछे हट जाओ, मुझे मत छुओ, मेरा रास्ता छोड़ दो।
0: आखिर चाहती क्या हो? क्या 2 हफ्ते में ही आपसी विश्वास, पारिवारिक आस्था और दाम्पत्य श्रद्धा धूल की तरह उड़ गई?
2: अच्छा हुआ जो 2 हफ्ते में ही आपकी कलाई खुल गई, नहीं तो बाद में न जाने कितना पछताना पड़ता।
3: श्रीधरन जी, क्या बात है, ये नवविवाहित जोड़ा सड़क पर क्यों दो दो हाथ कर रहा है?
0: चंदन आओ, इधर कहाँ जा रहे हो?
2: नमस्ते जी।
3: नमस्ते नमस्ते, क्या बात है, सब ठीक तो है ना?
0: चंदन भाई, तुम उस बंधु को तो जानते हो, वो किसी का सुखमय जीवन देखकर कभी खुश हो सकता है?
3: हाँ, लगता है वो चलता चलता तुम दोनों में भी झगड़े की चिंगारी सुलगा गया है।
0: तुम्हें कैसे पता लगा?
3: अरे उसका काम ही ये है, दूसरों के घर में आग लगाकर उसे हाथ सेकने का बड़ा ही शौक है।
0: क्या तुम्हारे साथ भी कुछ?
3: हाँ, पिछले दिनों वो हमारे घर आया, कहने लगा, चंदन जी वो सब तस्वीरें कहाँ गई जिन लड़कियों के साथ तुम घुमा फिरा करते थे? बस उसका इतना कहना था कि निशा के मन में मेरे प्रति भयंकर शंका पैदा हुई।
0: फिर तो घर लड़ाई का अखाड़ा बन गया होगा।
2: तो इसका मतलब उसने आपके घर में भी झूठी बातें कही थी?
3: अरे झूठ ही नहीं, बिल्कुल सफेद रूप में झूठी। जब बंधु सत्यार्थी ने खुद अपने मुख से निशा को बताया कि वो तो सिर्फ दिल लगी के लिए ही तस्वीरों की बातें कर रहा था, तो तब जाकर निशा के दिल से शंका की भावना मिटी।
2: मुबारक।

0: बात देता देता उन्हें जाने क्या क्या कह गया। भाई साहब, मैं तो वास्तव में उसकी सब बातों का विश्वास कर गई।
1: और आग बबूला होकर मुझसे सड़क पर ही लड़ने लगी।
2: अरे श्रीधरन के बारे में तो मैं खुद प्रमाण पत्र जारी कर सकता हूँ। इसके समान कोई भी व्यक्ति आदर्श पति नहीं हो सकता। जीवन भर आंखें मूंद कर श्रीधरन के पीछे चलती रहोगी तब भी सुख ही सुख मिलेगा।
0: देखो जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने एक मिनट में न जाने क्या क्या नहीं कह डाला, मुझे माफ कर दो।
2: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी तो जिंदगी की शुरुआत ही हुई है, आगे न जाने जिंदगी में कितने बंधु सत्यार्थी मिलेंगे।
1: अब बंधु एक बार मिल जाए तो?
2: वो तो अपनी पत्नी के साथ रेस्टोरेंट में बैठा ठाट से कॉफी पी रहा है और चीज पकौड़े खा रहा है।
0: अच्छा, ये बात है।
1: हम दोनों के बीच में लड़ाई करा के खुद रेस्टोरेंट में बैठा पत्नी के साथ पकौड़े खा रहा है।
0: भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। अब हम भी रेस्टोरेंट ही जा रहे हैं, बंधु सत्यार्थी से वही मुलाकात होगी।
1: चंदन जी, तुम भी चलो ना, दो मिनट गप्पाजी हो जाएगी।
2: मैं कहीं जरूरी काम से जा रहा हूँ, फिर कभी सही। अच्छा जी, नमस्ते।
1: नमस्ते जी।
3: आपने क्या सोचकर ये कह दिया कि मैं आप पर शक कर सकती हूँ? मैं इतनी कमजोर नहीं कि लोगों की बातें सुनकर आप पर ताने कसने लगूं।
4: ओहो, तुम तो एकदम भावुक हो उठी। मैं तो बस नारी मानसिकता की बात कर रहा था, तुम पर कहां शक कर रहा हूँ।
3: मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं।
4: ममता, तुम्हारी यही तो खासियत है।
3: हाँ, क्योंकि मैं कोई ईर्ष्यालु किस्म की महिला नहीं।
4: तुम तो जानती हो ना, एक बार मैंने चंदन और निशा को खूब बेवकूफ बनाया था।
3: हाँ, मैं जानती हूँ, वो लड़कियों की तस्वीरों वाली गप मार के आपने उन्हें खूब बेवकूफ बनाया था। उनके घर में तो महाभारत छिड़ गया था।
4: और अब उसके दोस्त श्रीधरत और उसकी पत्नी रेखा सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हुए एक दूसरे के बाल लोच रहे हैं।
3: इसका मतलब उनके हनीमून को भी ग्रहण लगाए।
0: हेलो सत्यार्थी जी, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई।
4: क्या मुझसे कहा आपने?
0: और किससे कुछ कह सकती हूँ। आई एम टॉकिंग टू माई लवली फ्रेंड मिस्टर बंधु सत्यार्थी।
3: ये कौन है जी जो इस तरह बेशर्मी से आपके मुंह लग रही है?
0: बंधु जी, ये कौन है जिसे हंस हंस कर बातें कर रहे हो?
4: ममता, मेरा ख्याल है कि ये मिसेज श्रीधरन है। हेलो मिसेज श्रीधरन।
0: कौन मिसेज श्रीधरन? मैं? मिस्टर बंधु, इस नई चिड़िया के सामने बनने की कोशिश मत करो। 10 मिनट लेट क्या हो गई? लगे इस मैडम के साथ रोमांस करने?
4: मैं
0: क्या 10 मिनट में मेरा वेट नहीं कर सकते थे?
3: आप इसके सामने मेमने की तरह मिमिया क्यों रहे हो? देखो देखो कितनी बेशर्म है, कैसे सटकर आपके पास बैठ गई है।
0: बंधु, इस बड़बड़ाती मैम को जाने के लिए तुम कहोगे या फिर मुझे ही?
4: तुम ये क्या कह रही हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, जबकि ममता मेरी पत्नी है जिसके लिए तुम ये सब कह रही हो।
0: लेकिन तुमने तो मुझे कभी बताया ही नहीं कि तुम मैरिड हो।
3: अच्छा, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, ना जाने क्यों गले पड़ती जा रही है, इतनी हिम्मत?
0: मैडम, गले मैं नहीं तुम पड़ रही हो। मिस्टर बंधु सत्यार्थी तो मेरे बहुत फास्ट फ्रेंड है। चलो जी, हम कहीं और चलते हैं। यहाँ रहेंगे तो ये बिना मतलब के कवा में हड्डी बनती रहेंगी।
4: तुम मुझे कहाँ खींचे जा रही हो, प्लीज प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। कहा ना, मैं तुम्हें पहचानता भी नहीं।
0: लगता है इस वक्त तुम्हारा मूड नहीं है मुझसे बात करने का। ओके, मैं अभी चलती हूँ, थोड़ी देर के बाद आऊंगी। ओके, बाय बाय।
4: अजीब बात है, ना जाने ये पागल कहाँ से आ टपकी।
3: वहाँ से ही टपकी होगी जहाँ आप उसे रोज मिलते होंगे।
4: क्या मतलब?
3: वही जो तुम जानते हो।
4: क्या जानता हूँ?
3: कि वो कौन है।
4: कौन है?
3: वही होगी जिससे रोज मुलाकातें करते हो।
4: कौन मुलाकात करता है, मैं तो उसकी शक्ल तक नहीं पहचानता।
3: मेरे सामने भोले बनने से वस्तु स्थिति में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं।
4: ममता, यकीन करो वो कोई पागल थी।
3: हाँ, जब पोल खुलने लगी तो वो पागल हो गई। भला ऐसी कौन शरीफ औरत होगी जो सबके सामने पराए पुरुष के गले में हाथ डाल देगी।
4: ऐसी बेवकूफी करने से भला मैं कैसे रोक सकता था।
3: जब सब कुछ मेरे सामने हुआ है तो और आप कह भी क्या सकते हैं? कितने आत्मविश्वास से वो आपको अपना फास्ट फ्रेंड कह रही थी, आपको हाथ पकड़कर खींच रही थी। ऐसी औरतों के साथ घूमते हुए आपको शर्म नहीं आती है क्या?
4: ममता,
3: दूसरों की तो नुक्ताचीनी करते हो जबकि खुद दिल से काले हो। बाल बच्चों वालों को ऐसी गिरी हरकतें करना शोभा देता है क्या? सच्ची और ईमानदार दिखाने के लिए अपने नाम के आगे क्यों सत्यार्थी लगा रखा है?

0: धीरे बोलो, सब सुन रहे हैं, फिर बेमतलब की बातें तो मत करो। बेहतर है अब घर चलते हैं।
1: मेरा कोई घरबार नहीं है, अब उसी नखरे वाली को ले जाओ, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगे।
0: अब कहाँ जा रही हो?
1: जहाँ मेरा दिल करेगा, तुम उस परी को अपने साथ ले जाओ।
2: अब भाभी जी क्या हुआ, क्यों भाई साहब से बिगड़ रही हैं?
1: मुझसे क्या पूछते हो, पूछो पूछो अपने धोखेबाज 420 दोस्त से।
0: श्रीधरन, मैं आप लोगों से मिलकर यहाँ आ गया। यहाँ से हम दोनों को बाजार जाना था, चलते चलते चाय पीने बैठ गए तो ना जाने एक मॉडल टाइप की कौन सी लड़की थी, वो मेरे पास आकर बैठ गई और लगी इधर उधर की बेतुकी बातें हाँकने। मैं उसे जानता तक नहीं, पहचानता भी नहीं, बस उसी बात को लेकर ममता बिगड़ रही है।
2: रेखा, अब आ भी जाओ ना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि 10 वर्षों के वैवाहिक संबंधों में दरार आ जाए।
3: भाई, बंधु जी ने सोचा शायद यही मुबारकबाद कहना जानते हैं।
0: ममता ममता, देखा मैंने कहा था ना कि ये मुझे मिसेस श्रीधरन ही लगती हैं। बदले हुए कपड़ों में मैं पूरी तरह से पहचान नहीं पाया था।
2: तुम भी तो सड़क पर चलते चलते हम दोनों के बीच में संदेह के बीज बो आए थे।
3: और अगर चंद्रन भाई ना आते तो हमारा वही युद्ध छिड़ जाता, इसलिए बंधु भाई को सबक सिखाना जरूरी था।
2: मेरा ख्याल बंधु जी आइंदा के लिए तुम शंका के बीज बोने की हरकत नहीं करोगे।
0: अरे बाबा कभी नहीं, ममता का गुस्सा देखकर तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैं बखूबी अंदाजा लगा सकता हूँ कि निष्ठावान से निष्ठावान नारी भी आशंका की कितनी जल्दी शिकार हो सकती है।
3: तो आप लाइन पे आ गए
0: हमेशा के लिए।
4: हवा महल में अभी आप सुन रहे थे झलकी मुबारकबाद। इसके लेखक और निर्देशक थे गुरमीत रामल मीत। आकाशवाणी शिमला की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन, हर लम्हा हर पल आपके साथ। कार्यक्रम चित्रलोक बस थोड़ी ही देर में।

पेश है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए कमाल खान, सुजैन, सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। गीतकार हैं समीर, संगीत है साजिद वाजिद का और फिल्म का नाम है वांटेड।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: दोस्तों लीजिए सुनिए अगला गीत बेनी दयाल, सुनिधि चौहान और नाजिया हसन और साथियों की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है अनवर खालिद ने, संगीत है बिद्दू का और फिल्म का नाम है स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

0: चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर, पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश सुनिए यो यो हनी सिंह और जैस्मिन की आवाजों में। गीतकार संगीतकार है यो यो हनी सिंह और फिल्म का नाम है किक।

0: सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है पुनीत शर्मा ने, संगीत है रोशन का रोहन रोहन का, और फिल्म का नाम है संजू।
1: प्राण प्रिय

0: इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक समाप्त होता है। सुनिए सुनाइए और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम चित्रलोक। असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं FM 107.2 MHz ते। हुन तो कुछ ही पहलां च असी आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तो समाचार रिले करांगे। तुसी सुनोगे समाचार संध्या 8:45 ते।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत और रूस ने यात्री विमानों के संयुक्त उत्पादन और भारतीय ऑपरेटरों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की डिलीवरी की दिशा में कदम बढ़ाया। केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेरफेर पर नियमों को सख्त करने के लिए ई कॉमर्स नियमों में संशोधन किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष

0: द्विपक्षीय संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुम्बकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
1: India's approach is rooted in Vasudhaiv Kutumbakam, that is one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट सिद्धांत है कि अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभ संपूर्ण मानवता तक पहुंचने चाहिए।
1: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity.
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफ्रॉन स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध भी शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेकमी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत इस शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के महत्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता का संदेश देंगे। उनका कहना है कि इन संस्थाओं में आज की वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्रिक्स

0: सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं।
1: राष्ट्रीय राजधानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आने वाले शीर्ष नेताओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने विदेशी मेहमानों के अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम जनता को कम से कम असुविधा हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली में करीब 15,000 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि विदेशी गणमान्य अतिथियों के गुजरने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं।
2: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेकर ट्रैफिक से लेकर लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
1: भारत की अध्यक्षता चार प्रमुख स्तंभों लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद से अब तक 350 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलिखानोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर विचार विमर्श किया। प्रस्तावित समझौतों में पिनकल एयर, एयर केरल और स्लीक एविएशन सहित भारतीय विमानन कंपनियों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति और इससे जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं। दो दिन का इनोप्रोम इंडिया कार्यक्रम कल नई दिल्ली में शुरू हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक रूस और भारत की कंपनियाँ हिस्सा ले रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है और अब किसी के हताहत ना होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार तीन प्रमुख स्तंभों पर ध्यान दे रही है, जोखिम में कमी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और किसी के हताहत ना होने देना। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आपदा रोधी गांव और शहर तैयार करना है। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता, प्रायोजित उत्पादों की सूची, खोज परिणामों में हेरफेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है। संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत

0: के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। नए नियमों से ई कॉमर्स क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता केंद्रित व्यवस्था सुनिश्चित होगी। ये नियम अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा, मिली शाह की टीम ने महिलाओं की R2 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग महिला SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने R1 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। उधर दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। 0 हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਕੇ ਲੀਏ।
3: ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਆਪ ਕੇ ਲੀਏ ਮੈਂ ਸਭੀ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਸਲਮਾ ਕਾ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਾਥੀਓ, ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਹਮ ਲਾਏ ਹੈ ਆਪ ਕੇ ਲੀਏ। अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज़ों में इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रावण का और फिल्म का नाम है दिल है के मानता नहीं।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में वो गीत जिसे लिखा है सूरज सनीम ने, संगीत है राम लक्ष्मण का और फिल्म का नाम है सातवां आसमान।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल।

0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। गीतकार है इंदिवर, संगीत है राजेश रोशन का और फिल्म का नाम है किंग अंकल।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत है अनु मलिक का और फिल्म का नाम है गंगा जमुना सरस्वती।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं साधना सरगम की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत है राजेश रोशन का और फिल्म का नाम है खून भरी मांग।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
3: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
3: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती हैं।
1: मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
0: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहाँ वहां भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा, मुंबई की तरफ जाने के लिए इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने जमकर कुटुम्बस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान महबूब खान की।

महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थीं और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाएं, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा। पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया। हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहां जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहां बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकालकर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे मुंबई।

मुंबई में महबूब खान उस जमाने के वीटी स्टेशन के पास ज्योति स्टूडियोज के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे, महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते, तरह तरह की परेशानियां होती। वो हौसला नहीं हारते, हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इम्प्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्दशीर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे।

यहां से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि अर्दशीर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में यह फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर अर्दशीर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दांव नहीं खेलना चाहिए क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दांव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहां से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलेन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता। सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म औरत।

इसके बाद महबूब खान सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म अनमोल घड़ी।

अनमोल घड़ी के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946 को रिलीज की गई ये फिल्म काफी काम

1949 महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौशाद का था।

एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने। उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

0: भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।
1: पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना

मदर इंडिया जैसी बड़ी लकीर खींचने के बाद महबूब खान ने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई। सन 1962 में आई उनकी निर्देशित फिल्म सन ऑफ इंडिया।

आर संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोस। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को हमारा विनम्र

एक फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्मकार महबूब खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा छाया गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रतंती भारत का गम एक्सपर्ट।

पेश खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। कोई डर है न कोई रोजन है न कोई रोशनदान है, जिंदगी की ये इमारत कितनी आलीशान है। एक छोटा सा दिल इसमें रहता है, ये प्यार का नगीना है, तस्वीर उनकी जिसमें झिलमिलाती है। बात क्या कहूँ, कल रात दिल ने जो कही, आ जा के देख लूँ तुझे जी भर के एक बार, उठे हुए हैं दिल में वो तूफान तेरे बगैर।

ये आंखों की हया दिल मेरा चुरा लेती है, एक दिल एक निगाह कहाँ कहाँ छुपाऊं तुम्हें, सांसों की धड़कनों में कहाँ कहाँ बसाऊं तुम्हें। जिस तरह चांद सितारों में एक है, चांदनी फूल शरारों में एक है, रात खामोशी के तरानों में एक है, तू महजबी हजारों में एक है।

छाया गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम के कुछ और नगमे पेश करेंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। ये उल्फत आपकी है, मेहरबानी आपकी। वो दिल का नशेमन जब ठिठक गई थी घटाएं, भीगी भीगी थी बादलों की चुनर, बरस रही थी फजाएं, हया का पर्दा उठा दिल ही दिल में रही, लब तक आई न बात।

कुतरात ठहरती नहीं, जुबान से तो कुछ ना कहा, हुई नजरों से नजरों की बात। अजब अपना हाल होता जो विसाल यार होता, कभी जान सदके होती कभी दिल निसार होता।

चांद की खुली पलकों पर सितारों ने ख्वाब सजाए हैं। जरा सी देर हो जाए तो क्या होगा, दिल से दिल की बात कुछ और होने दो, शम्माए मोहब्बत कुछ और देर जलने दो, जुल्म ढाने का वरना डर होगा, ये इल्जाम भी हमारे सर होगा।

छाया गीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

0: पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: विविध भारती मुंबई तो हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम छाया गीत। असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।
2: कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
3: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
2: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
3: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
2: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करें,
3: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
2: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
4: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
2: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
5: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
2: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
5: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
2: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
5: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
5: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
2: आकाशवाणी चंडीगढ़।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ तो हुन पेश ने मुख्य प्रदेशक खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय आगा खान चौथे अते विकास कारजां विच उन्हां दे अमिट योगदान नूं याद कीता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वख-वख भलाई योजनावां दे लाभपात्रियां दे खात्यां विच DBT राहीं 1,890,16,00,000 रुपए दी रकम ट्रांसफर कीती। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यवस्था बदलन दा काम कीता, हुण लाभपात्रियां नूं लोक भलाई योजनावां दे लाभ सीधे उन्हां दे खात्यां विच मिल रहे ने। खेतीबाड़ी विभाग के वधीक निर्देशक डॉ. राम प्रताप सिहाग ने जैविक अते कुदरती खेती नूं उत्साहित करन ते जोर दिता। उन्हां कहा कि जैविक अते कुदरती खेती करन वाले अते खेतीबाड़ी अते प्रोसैसड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी नाल रजिस्टर्ड किसानां नूं प्रति एकड़ 10,000 रुपए की सबसिडी मिलेगी। अज हिसार खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी विखे आयोजित वर्कशॉप विच हाड़ी दियां फसलां लई 21 नवियां सिफारशां नूं मंजूरी दित्ती गई। हरियाणा दे वख-वख जिलियां विच मेरा युवा भारत ने नौजवानां नूं विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 मुकाबले विच उत्साह नाल हिस्सा लैण दी अपील कीती। हरियाणा दे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार विच हवाई अड्डे दे नेड़े एकीकृत निर्माण कलस्टर दे काम नूं तेज करन दे निर्देश दित्ते। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वाटर सैंड विकास कंपोनेंट दे तहत हरियाणा विच 2,00,000 एकड़ तों वध जमीन दे टीचे दे नाल इक प्रस्ताव तैयार करन दे निर्देश दित्ते। हरियाणा दे उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने पृथला खेतर दे उद्योगिक खेतरां विच खस्ता हालत सड़कां दी जल्दी मुरम्मत दे आदेश दित्ते। एसन हुन तक दियां मुख प्रदेशक खबरां। असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते। श्रोते, हुन वेला है तुहाडे सारयां दे मनपसंद प्रोग्राम सुर सांझ दा। सुरा नाल सजी शाम प्रोग्राम सुर सांझ लेके हाजिर है तुहाडी रेडियो साथन बबीता कपूर। ते प्रोग्राम दा आगाज कर रहे हैं निमरत खैरा अते अर्जन टिल्लों दियां आवाज़ां विच।

0: अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि हमारे भट्टे पर जो नया मजदूर आया है उसके हाथ पैरों पर बहुत से दाग हैं। उसे इन पर चोट लगने से भी दर्द नहीं होता।
1: अरे ये तो कुष्ठ रोग का लक्षण है, तुम उसे अभी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाओ।
2: यदि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में कुष्ठ रोग का कोई भी लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं। यदि संदिग्ध व्यक्ति में कुष्ठ रोग पाया गया तो सरकार द्वारा सूचित करने वाले व्यक्ति को 250 रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, इस गीत की आवाज है रणजीत बावा दी।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार, वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है, HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: आकाशवाणी चंडीगढ़ तो इस वेले तुसी सुन रहे हो सुरा नाल सजी शाम प्रोग्राम सुर सांझ ते प्रोग्राम दा अगला गीत पेश कर रहे हैं सब्बा ते गुरलेज अख्तर दियां आवाज़ां 'च।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे It saves life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इनमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेक मी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2 दिन के सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और भारत सहित 11 सदस्य देश शामिल होंगे। ब्रिक्स के साझेदार देशों के रूप में बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम भी सम्मेलन में भाग लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस और ब्राजील के राष्ट्रपति आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे, जबकि कई अन्य नेता कल राजधानी पहुंचेंगे। शिखर सम्मेलन के

0: आज शनिवार को समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने विषय पर चर्चा के साथ होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में कल दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। यात्रियों को ताजा जानकारी के लिए DMRC की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप देखने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इन तीन विषयों की दोबारा परीक्षा प्रश्न पत्रों में कई गलतियों की शिकायतों के बाद आयोजित की गई थी। अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा आज हुई। क्रिकेट में दुबई में खेले जा रहे महिला एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 150 रन का लक्ष्य रखा है। इससे पहले बांग्लादेश की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। इस वेले रात दे 11:05 ते 11 सेकंड होए ने। साडी अज दी सभा हुण खत्म हुंदी है। कल सवेरे 5:55 ते तुहाडे नाल फेर मुलाकात होवेगी। तद तक लई सानू दवो इजाजत। जय हिंद।